0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: राजेश जी, वेस्ट बंगाल, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूजा पाठ नाम जप करने के बाद भी अगर मन में शांति ना मिले और हमें लगे कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो रही, तो महाराज जी हमें क्या?
2: पाप, स्पष्ट शब्द सुनो, पूर्व का किया हुआ पाप आज जप करोगे, पूजा पाठ करोगे तो भी शांति नहीं मिलेगी जब तक वो नष्ट नहीं हो जाएगा। पूर्व का पाप नष्ट होते ही हृदय शीतल हो जाएगा, और जब तक वो नष्ट नहीं होगा तब तक वो ताप देता रहेगा, जलाता रहेगा। ये पाप है पूर्व के, इसलिए भजन करते रहो, शांति मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी। वो पाप नष्ट होंगे, भजन छोड़ दोगे तब तो बहुत काल तक चलना पड़ेगा। दवाई चल रही है तो विश्वास है रोग का नाश हो जाएगा, दवाई छोड़ दिया तो रोग तो तांडो मचा देगा। तो भव रोग की दवा, पाप को नष्ट करने का उपाय भगवान का नाम जप है। नाम जप चल रहा है, हृदय जल रहा है, अशांति है, पर परिणाम में शांति मिलेगी, मंगल होगा। अगर नाम जप ही छूट गया तो फिर दवा छूट जाने पर रोग तो प्रबल हो ही जाएगा। तो इसलिए ये पाप का फल है, वो हमारे हृदय को जलाएंगे, उसी जलन से पाप नष्ट होंगे। इसलिए खूब नाम जप करते रहना चाहिए, और अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे संत हो चाहे गृहस्थ हो। अगर पाप बन गया है तो बेइज्जती, अपमान, तिरस्कार, रोग, ये सब मिलता है, वो जलन होगी, वो नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं आएंगी, उसी से तो हमारा पाप नष्ट होगा। दुख में पाप नष्ट होता है ना, जब हम अशांत होते हैं, दुखी होते हैं, तो पाप का दंड जो हमें भोगने को मिल रहा है वो हो जाता है। इसलिए नाम जप करो, खूब नाम जप करो, जरूर शांति मिलेगी।
1: मोहन राज अवस्थी जी, नेपाल से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या मन में विकार आने पर और गलत आचरण होने पर भजन और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं?
2: भजन नष्ट तो नहीं होता, रोक दिया जाता है। भजन कभी नष्ट नहीं होता। जैसे हमने 100 बार राधा राधा कहा और हमसे कोई पाप बन गया तो हमारे हृदय में भजन नहीं होगा, लेकिन वो 100 बार राधा नाम भागवतिक बैंक में जमा हो गया, उसका तुम्हें फल अलग मिलेगा, और जो पाप किया उसका फल अलग मिलेगा। पर पाप करने के कारण भजन में रुचि नहीं होगी, भजन की इच्छा नहीं होगी, और शांति भंग हो जाएगी, हृदय जलेगा, ऐसा होता है। भजन तो नष्ट नहीं होता, भजन एक अलग डिपार्टमेंट है और पाप एक अलग डिपार्टमेंट है। पाप का दंड अलग भोगना पड़ता है, भजन का आनंद अलग प्राप्त होता है। भजन कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि भगवान अविनाशी, तो भगवान का नाम अविनाशी। तो हमने जो राम कृष्ण हरि जपा, जो राधा राधा जपा, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो मंगल करके ही रहता है। समझ

0: बुद्धि तो अधर्म को भी धर्म बनाने की चेष्टा करते है, अपवित्र बुद्धि तो एक धर्म का मतलब यही चलेगा, ऐसा भी चलेगा। लेकिन जब पवित्र बुद्धि होती तो ठीक निर्णय करती, गलत है नहीं करना, सही है उत्साह आ जाएगा करो ऐसा। तो पवित्र बुद्धि करने के लिए दो बात है, साधन को हरि भजन है, कह सत्संग सहाय। साधना मुख्य बात तो हरि भजन है और उसकी सहायता सत्संग है। तो 30 मिनट 40 मिनट सत्संग सुने, और अगर एकदम आपका मन सत्संग में नहीं लगता तो एक क्लिप देख ले 5 मिनट की 10 मिनट की, तो कुछ शब्द तो सत्संग के जाएंगे तो अपना प्रभाव दिखाई देंगे। तो सत्संग और नाम जप, भगवान नाम जप, इससे मंगल हो जाएगा, बुद्धि पवित्र रहेगी, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये हमारी बुद्धि ठीक निर्णय कर पाएगी।
1: अंकित जैन जी, जी आपकी कृपा से आध्यात्मिक रुचि जागृत हुई है, नित्य कांतिक सुनता हूँ, नाम जप करता हूँ, ठाकुर जी की सेवा भी करता हूँ, परंतु कभी कभी प्रमाद कर लेता हूँ।
0: किस बात में प्रमाद?
2: आलस आ जाता है कभी-कभी।
0: सो गए फिर शुरू कर दिया, 24 घंटे थोड़ी सो दो सर भाई, आज हमारा 8 बजे से 9 बजे का नियम है जप करने का, हमारा मन नहीं लगा हम सो गए, लेकिन 10 बजे से 11 बजे तक जब हमारा नींद खुली, जब हमारा मन आया, फिर हम अपने नियम को पूरा करना है। समय बदल सकता है, सुबह की जगह हम शाम कर सकते हैं, दिन की जगह रात में कर सकते हैं, पर अपना नियम पूरा करें, ऐसा बांधना चाहिए नियम। अगर आज नियम बिल्कुल नहीं हुआ तो कल डबल करेंगे, आज की जगह यहाँ कल हो सकता है पर डबल करेंगे, ऐसे रखना चाहिए तो ठीक हो जाएगा प्रमाद, फिर ठीक हो जाएगा जी।
1: राजगोपाल जी,
3: राधे
1: राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं तमिल और देवनागरी में लिखता हूँ, दोनों भाषाओं में मन से लिखा जा सकता है? मतलब किसी दूसरी भाषा में अगर जैसे आप कहते हैं चिंतन करो राधा, तो राधा एक तो हम हिंदी में लिख रहे हैं, तो अपनी भाषा में राधा लिखेंगे तो चले?
0: चले, भगवान की सब भाषा है, भगवान के सब लोग हैं तो सब भाषा भी तो होगा। भगवान से अंग्रेजी में बात करोगे तो नहीं समझ पाएगा क्या? तमिल से करोगे तो समझ जाए, क्योंकि सारी भाषाएं उन्हीं से प्रकट है ना, वो तो जगत गुरु है, वेद भाषा उन्हीं से प्रकट है, सब भाषा उन्हीं से प्रकट है, सब उन्हीं से। तो जो जिस भाषा वाला है हम तुम नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान समझ सकते हैं। भगवान तो उसकी भी समझते हैं जो कोई भाषा नहीं बोल सकता, जो कोई भाषा नहीं बोल सकता भगवान उसकी भी भाषा समझते हैं। सर्वज्ञ है भगवान का एक नाम, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ माने सब ज्ञान, उन्हीं से सब ज्ञान प्रकट होता है। तो लिखिए आप तमिल भाषा में लिखिए, भगवान उसको देख रहे हैं।
1: अमित कुमार जी, गुजरात से।
4: राधे राधे महाराज।
1: राधे राधे महाराज जी। महाराज जी एक एकांतिक वार्तालाप में आपने मन को भगवान कहा था, और एक एकांतिक वार्तालाप में उसको आपने दुश्मन मानने को बोला, तो महाराज जी इस बात में महाराज जी अंदर का जो स्वरूप है वही मन है जिसको हम जैसा बनाना चाहें वैसा बन जाता है, यानी कि मन आत्मा सूक्ष्म शरीर ये सब एक ही है?
0: वैसे तो एक के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, पर जब विस्तार हो जाता है तो उसी को अलग अलग वर्णन करते हैं। कंस में भी वही भगवान है, एक परम महाभागवत देवर्षि नारद जी में भी वही भगवान है। तो देवर्षि नारद जी जाते हैं तो भगवान उनकी पूजा करते हैं और कंस का मर्दन करते हैं, इसे लीला कहते हैं भगवान की। गीता में भगवान ने मन को कहा इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, और यही मन जब गलत मार्ग में चला जाता है तो बोले बड़ा दुष्ट है, इसका मन बड़ा दुष्ट है, देखो कैसे कैसे आचरण कराता है। तो सही पूछो तो जो सत्ता है वो अच्छे में भी है और बुरे में भी है, लेकिन जब अच्छाई की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमें सुख और शांति मिलती है, और जब बुराई की तरफ बढ़ते हैं तो दुख और अशांति मिलती है। तत्व वही है, उसी से स्वर्ग बना है, उसी से नरक बना है, उसी से पापी बना है, उसी से महात्मा बना है, उसी से अच्छा बुरा सब कुछ वही बना हुआ है। जब ये ज्ञान हो जाता है तो जीवन मुक्त हो जाता है मनुष्य, पर ये ज्ञान करने के लिए ही ये चर्चा की जाती है कि वही मन भगवान है और वही मन

0: पापी है, जब पाप के आचरण में चला गया तो पापी हो गया, और भगवान के मार्ग में चला गया तो भगवान हो गया, ऐसा है। समझ पा रहे हैं आप?
1: रेखा जी जोधपुर से, श्री हरिवंश महाराज जी, पर जी भजन और चिंतन में क्या अंतर है?
0: वैसे भजन का तात्पर्य सेवा होता है, भजन का तात्पर्य माला चलाना नहीं होता, उसे जप कहते हैं। जो माला चलाना है या काउंटर से, उसे जप कहते हैं। जो बैठ करके ऐसे को, उसे चिंतन कहते हैं। जैसे नाम का चिंतन, राधा राधा राधा, रूप का चिंतन, धाम का चिंतन, लीला का चिंतन, भगवान के गुणों का चिंतन, वो चिंतन अंदर की वस्तु है। और जो भजन है वो सेवा है। वो दो प्रकार की होती, प्रगट सेवा और मानसिक सेवा। प्रगट सेवा में ठाकुर जी विराजमान करके उनकी सेवा परिचर्या, और मानसिक सेवा में मन में ठाकुर जी विराजमान करके मानसिक वस्तुओं से सेवा। तो भज धातु सेवायाम, भजन का मतलब सेवा होता है, माला चलाने का जप कहते हैं, जो ऐसे है उसे सुमिरन और चिंतन कहते हैं। तो इसीलिए हनुमान जी महाराज दो बातें कही, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होए। सुमिरन और भजन दो कहा ना, तो सुमिरन अलग हुआ और भजन अलग हुआ। भज धातु सेवायाम, भजन का मतलब सेवा, सेवा और सुमिरन ही जीवन की सार्थकता है। ठाकुर सेवा करें, समाज सेवा करें, परिवार सेवा करें, देश सेवा करें, जो हमसे बन जाए भगवत सेवा करें, और भगवान का चिंतन करें, सुमिरन करें, नाम गुण रूप लीला धाम।
1: रूपम जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ये सत्य है कि गुरु साक्षात परब्रह्म स्वरूप है, फिर भी हम गुरु की पूर्ण रूप से वैसी कदर नहीं करते और समर्पित नहीं होते, ऐसा क्या करें कि गुरु के वचनों की हमारा जीवन हो जाए? और
0: जब हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा तब गुरु को परब्रह्म मान सकते हैं, नहीं तो हमारी दृष्टि मानुषिक बुद्धि में रहती है। मनुष्य है, साधक है, संत है, ब्रह्म है, ऐसा अगर अनुभव हो जाए तो फिर मोक्ष ना हो जाए। भाई अब किस भगवान के दर्शन करने, मैंने तो भगवान के दर्शन पा लिए। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात, तो मैंने परब्रह्म के दर्शन पा लिए। अब किसके लिए साधना? अब तो नाम जप करके आनंदित है, मेरे परब्रह्म मुझे मिल गए, लेकिन ऐसा भाव नहीं रहता। गुरु को एक गाइड मान करके उनके द्वारा दिए हुए साधन से फिर परब्रह्म की प्राप्ति रहता है ना, पहले सबके दिमाग में ही रहता है। गुरु एक रास्ता बताने वाला है, और जो रास्ता चल करके प्राप्त किया जाता है वो परब्रह्म होता है। लेकिन ये पता नहीं कि जो चल कर प्राप्त होता है वही गुरु रूप में रास्ता बता सकता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। वही परब्रह्म ही गुरु रूप में आया है। बन्नो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करनिकर। जिनके वचन सूर्य की तरह प्रकाश फैला कर हम माया का नाश करके ब्रह्म का साक्षात्कार कराते हैं, वो गुरुदेव भगवान है, साक्षात हरि ही गुरुदेव रूप में आके। पर ये भावना बहुत ऊंची है। गुरु को अगर हम संत ही मान लें अच्छा तो बड़ी बात है, नहीं हमारी दृष्टि मनुष्य दृष्टि रहती है, नहीं रहती। ईमानदारी से पूछो तो मनुष्य दृष्टि रहती है, जैसे सब मनुष्यों में तो थोड़ा श्रेष्ठ है पर मनुष्य बुद्धि रहती है। गुरु में मनुष्य बुद्धि हट जाए और भगवत बुद्धि हो जाए तब जाने के हमारी साधना ठीक हो रही है। तो इसके लिए खूब नाम जप करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे, पवित्र आचरण करे, तो जब हृदय पवित्र होगा तो गुरु साक्षात परब्रह्म ये अनुभव आएगा, नहीं तो ऐसे मनुष्य दिखाई देंगे, परब्रह्म का अनुभव होना मुश्किल है।
1: जी तनिष्क जी मध्य श्री हरिवंश महाराज जी। गुरु जी मेरा प्रश्न है कि क्या संसार में जहाँ भी हमें सुख या दुख दिखाई देता है, क्या ये केवल हमारे मन की उपस्थित संस्कारों के कारण ही दिखाई दे रहा है? क्या वास्तव में संसार में या कोई अस्तित्व नहीं है, संसार का अस्तित्व ही नहीं है?
0: हाँ नहीं, संसार का अस्तित्व ही नहीं है। जैसे स्वप्न का कोई अस्तित्व होता है क्या? पर एक कब पता चला, जगने पर। सोने वाले पुरुष को थोड़ी समझ में आएगा कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, उसको तो यथावत सत्य लगेगा। जो जगा हुआ पुरुष है उसे लगेगा स्वप्न झूठा है। तो देखो भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन
2: जगत सब
0: सब सपना का लेगा। तो अभी हम स्वप्न देख रहे हैं, जब जगे हुए पुरुष होंगे तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब जगह परमात्मा का दर्शन होगा। अभी हमें स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य पापी पुण्यात्मा का दर्शन होता है, तो अभी हम स्वप्न देख रहे हैं। हमें ज्ञान में जगना होगा, अभी हम सो रहे हैं, अपने को स्त्री पुरुष मान रहे हैं, जबकि हम परमात्मा स्वरूप हैं, परमात्मा के अंश स्वरूप हैं। तो हमें भजन करना चाहिए, अच्छे आचरण करने चाहिए, नशा गंदा आहार इसका त्याग करना चाहिए, तो हम जग जाएंगे। अभी हम अज्ञान की नींद में सो रहे हैं और ये संसार रूपी स्वप्न देख रहे हैं, थोड़ा जगे तब हमें समझ में आएगा।
3: पर गुरु जी, जब इंद्रिया किसी भोग को देखती है तो स्टार्टिंग में तो मतलब इच्छा करता है, जैसे भजन के माध्यम से ऐसा ज्ञान हुआ तो सिहा जब मतलब वो मतलब एक तरीके से अंदर मतलब मसल नहीं देता, अंदर इतनी मतलब व्यथा व्यथा करता है और फिर मतलब इच्छा ही खत्म हो जाती है। फिर ऐसा फिर उसके बाद हाई क्वालिटी का उससे अच्छा कोई आएगा वो, तो फिर उसमें फिर यही प्रक्रिया दोहरा है। फिर
0: ऐसे ऐसे जब भजन बढ़ाते चले जाओगे तो सब भोगों से वैराग्य हो जाएगा। खूब भजन बढ़ाओ, भजन से ही होगा ये, न प्रवचन सुनने से होगा न प्रवचन करने से होगा। डट के भजन करे सो ही वैराग्य होगा, खूब भजन करे तो भोगों से रति हट जाएगी।
4: मानसिक में भी वही स्थिति रहती है, उपांशु तक तो ठीक चलता है, मानसिक में भी एक दो टाइम के बाद
0: इसीलिए जब तक मन पवित्र न हो तब तक उपांशु में ही जप करना चाहिए। जी नाम जी है जपी जागे जोगी, नाम जी माने जिभ्या से, तो उपांशु जिभ्या
4: पर उसमें आपने जो नाम का बताया ना कि वो नाम देखो आप, उससे बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो गया। वो अभी तक बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, पर जैसे ही आपका सुना वो वाला उससे महाराज जी बहुत
0: मतलब। और जब ये मानसिक में पहुंच जाएगा तो सिद्ध पुरुष हो गए, फिर क्या। जब मन में निरंतर भगवान का सुमिरन चल रहा तो आनंद की फिर लहर जो आएगी उसी में डूब जाएगा साधक। हाँ बस चुपचाप चलते रहो, बस चलने में फिसलना बहुत है इसमें, इस मार्ग में चलने में फिसलना बहुत है। जैसे आप अच्छे से चल रहे हो तो विश्वास ना करो कि अच्छे से चल रहे हो, काई का मार्ग है। जब तक मंजिल पार ना हो जाए, जिसने कहते कि अब 10 हाथ रह गए तो 10 हाथ में भी मुंह भरा गिर सकते हो, बहुत चढ़ाई चढ़ाए 10 हाथ रह गए फिसल के फिर गिर सकते हो, बस कदम मजबूत जमाता चला जाए। पर स्त्री संबंध त्याग, पर धन का किसी तरह से भी अपहरण नहीं, कोई भी पराए हक का भोजन नहीं, नाम जप दूसरों का हित गंदा व्यवहार नहीं, तो कदम मजबूत बढ़ाते चले जाओ तो भगवान के नजदीक। नहीं भैया ऐसी फिसलन है कि पता ही नहीं चलता फिसल जाता है, ये ऐसी फिसलन है कि इसमें फिसलते समय पता नहीं चलता, बड़ा अच्छा लगता है फिसलते समय, अच्छा लगता है। और जब फिसल चुका तो यार गिर गए, यार कैसे हो गया, अब कैसे हो गया, अब तो फिसल चुके। इसलिए नाम जप और सावधान।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
9: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
8: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
10: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
11: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
12: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
13: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
14: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
15: श्रोता लोग, ई प्रातःकालीन बेला में आ गइल बाड़ी राउ रेडियो दोस्त दीपाली, आ करतारी रउआ सभी के प्रणाम, सुप्रभात। रउआ पता चल ही गई होई कि ये कार्यक्रम हो आपन दे आपन देखभाल, जिमे हमने के अपना देह के देखभाल खातिर जाने निसन कुछ असरकारी और अचूक नुस्खा। तो चली आज के नुस्खा जाने खातिर शुरू कर जाओ अपना प्रोग्राम के। आज हम बताएं सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर के घरेलू उपचार। हाई ब्लड प्रेशर में चक्कर आवे लागेला, सिर घूमे लागेला, रोगी के कोनो काम में मन ना लागेला। उनमें शारीरिक काम करे के क्षमता ना रहेला और ये रोगी अनिद्रा के शिकार रहेला। ये रोग के घरेलू उपचार भी संभव है, जरूरत है संयम पूर्वक नियम पालन कइल। मेथी दाना पाउडर सुबह शाम पानी के साथ ली, एके 15 दिन तक लेवे से लाभ मालूम हुई, ये डायबिटीज में भी लाभकारी है। गेहूं व चना के आटा के बराबर मात्रा में लेके बनावल गई रोटी खूब चबा चबा के खाई, आटा से चोकर ना निकाली। तरबूज के बीज के गिरी और खसखस अलग अलग पीस के बराबर मात्रा में मिला के रख ली, आ एक चम्मच मात्रा में प्रतिदिन खाली पेट पानी के साथ ली। नियमित रूप से छाछ दिन में भोजन के बाद जरूर ली। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज खातिर पपीता भी बहुत लाभ करेला। प्रतिदिन खाली पेट चबा चबा के खाई, 21 तुलसी के पत्ता और सिलबट्टा के पीस के एक ग्लास दही में मिला के सेवन करे से हाई ब्लड प्रेशर में लाभ होला। पांच तुलसी के पत्ता और 2 नीम के पत्ती के पीस के 20 ग्राम पानी में घोल के खाली पेट सुबह पी, आ इस सेवन से 15 दिन में लाभ नजर आवे लगी। तुलसी के रस 1 या 2 चम्मच पानी में मिला के खाली पेट सेवन करी, एक घंटा बाद तक कुछ भी ना खाई। ठंडा पानी से नहाए के वजह गुनगुना पानी से नहाई, साथ ही अधिक नमक व अधिक चीनी के इस्तेमाल हानिकारक है। तो दोस्तों ई रहल है हाई ब्लड प्रेशर के घरेलू उपचार। चलिए आप जानल जाओ जुकाम खांसी और फ्लू से बचे खातिर कुछ घरेलू नुस्खा। काफी उपचारी गुण समाइल होला जौन जुकाम और फ्लू आदि से बचाव में कारगर है। तुलसी के पत्ती चबावे से कोल्ड और फ्लू दूर रहेला। यही तरह तुलसी और बांसा के पत्ती प्रत्येक 5-5 ग्राम पीस के पानी में मिलाई और काढ़ा तैयार कर ली। इसे खांसी दमा में भी काफी फायदा मिलेला। अलसी के बीज भी खांसी के इलाज में काफी कारगर होला, काहे कि ई बलगम बाहर निकाले में मदद करेला। एक एक काढ़ा बना के पी ली या फिर बीज के पीस के चाट ली। इसे जल्द राहत खातिर 10 ग्राम अलसी के पीसल बीज के मुलेठी के चूर्ण में मिलाई। और 200 मिलीलीटर पानी में एके पानी आधा रह जाए तक उबाली। इमे 20 ग्राम शुद्ध शहद मिलाई और गरम गरम पी। इसे शरीर के बलगम बाहर निकलेला और खांसी में राहत मिलेला। तो दोस्तों अब हम बतावे जात बानी बेल के उपयोगी घरेलू नुस्खा। औषधीय विशेषता के कारण खाई जाला। इमे पेक्टिन टैनिन और म्यूसिलेजिनस पदार्थ होला जौन की डायरिया में लाभदायक होला। अधपका फल ना खाई। एके उपयोग ई प्रकार करी कि बेल पेट से संबंधित सब विकार और पीलिया डायबिटीज दांत व आँख से संबंधित बीमारी में फायदा पहुँचावेला। लोग आप जानल जाओ साइट्रस फल के फायदा। ई वर्ग में नींबू मौसमी नारंगी आदि आवेला। ई सबसे प्रमुख रूप से विटामिन सी और कुछ मात्रा में कैरोटीन होला। ई सब में प्रमुख रूप से विटामिन सी और कुछ मात्रा में कैरोटीन होला। विशेषकर बुखार और कमजोर लीवर के रोगी खातिर एके रस बहुत लाभदायक है। सर्दी खांसी जुकाम में नींबू के सीधा प्रयोग ना करे के चाहिए। अधिक मूत्र उत्सर्जन और दस्त की स्थिति में मौसमी ना खाए के चाहिए। अधिक चूसे से दांत खराब होला। सुबह उठते ही और सोते समय संतरा की उपयोग ना करी। पित्त फोड़ा फुंसी दमा श्वास दस्त हैजा पेचिश मिर्गी कब्ज पीलिया मोटापा जैसन रोग में ई लाभदायक है। चलिए दोस्त लोग आप जानल जाओ सुहागा के असरकारी औषधि के गुण के बारे में। मुंह में छाला होके पर सुहागा के पानी से कुल्ला करे के चाहिए। इसे तुरंत असर हुई। मुंह और गला के सूजन में इके पानी में औटा के गरारा करे के चाहिए। तत्काल इसे फायदा हुई। घाव में काली मिर्च के साथ पीस के लगावे से घाव शीघ्र भर जाला। भूख ना लगे पर 1-2 माशा फूला सुहागा 1 कप गुनगुना जल में दिन में 2-3 बार लीहल फायदेमंद होला। त्वचा त्वचा के खुजली पर सुहागा के पानी लगावे के चाही। नींबू के रस में मिला के सुहागा लगावे से एक्जिमा समाप्त होला। लगभग 3 तोला फूला सुहागा 4 तोला शहद में मिला के प्रतिदिन लेवे से दमा रोग मिटेला। तो दोस्त लोग, अब हम बताएं मीठा शक्कर के गुणकारी नुस्खा। बादाम के खराब होके से बचावे खातिर कंटेनर में रखे से पहले उसमें 3-4 चम्मच शक्कर डाल दी, ऐसे सालों साल बादाम खराब ना हुई। चाहतनी की फूलदान और गमला के पानी जल्दी ना बदले के पड़े तो लगभग 10 से 12 लीटर पानी में 1 औंस हाइड्रोजन सल्फेट मिला के थोड़ा सा चीनी डाल दी। ई घोल से फूल 15-20 दिन तक ताजा बनल रह सकेला। सर्दी में फाटल हाथ पैर के इलाज खातिर चीनी के शरबत से ओके धोए के चाही। कई बीमारी के वाहक है, वैसे बचे खातिर 10 ग्राम बोरिक एसिड पाउडर, 1 बड़ा चम्मच चीनी, 1 बड़ा चम्मच दही, 1 बड़ा चम्मच गेहूं के आटा के मिला के गोली बनाई। अब ये गोली के अलमारी या फ्रिज में रखी, ऐसे कॉकरोच ना आई। तो दोस्त लोग, अब उस समय आ गई बा जेमे दीपाली लिए रउआ से जाए के विदा। तो एगो प्यारा सा मुस्कान के साथ आपन दोस्त दीपाली के दी जाए के इजाजत। आ सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4। नमस्कार।
16: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
17: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
18: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
19: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
20: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
18: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
17: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
18: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
21: कॉल करे 87-894-18744।
22: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
18: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
21: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
18: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
21: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
18: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
21: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
18: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
21: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
18: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
21: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
23: What do you want यार?
24: क्या मतलब है इस बात का कि तुम कुछ समझ नहीं पा रहे हो? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम मुझे खुश रख ही नहीं सकते।
23: पर मैंने ऐसा किया क्या है?
24: क्या किया? सच सच बताओ, क्या तुम्हें उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था?
23: अरे कौन सी लड़की?
24: वो जो फ्लाइट में मिली थी।
23: रिया, वो मेरी एक्स है। तुमसे मिलने से पहले था जो भी था, हम क्यों बार बार एक ही बात पर लड़ रहे हैं?
24: यू नो वॉट, तुमसे प्यार करना, शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी अनुराग। मैं जा रही हूँ।
23: ठीक है रिया, अगर तुम यहाँ से गई ना तो मैं यहाँ इस सुसाइड पॉइंट से कूद जाऊंगा और शायद तब तुम्हें यकीन होगा कि मैं सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूँ।
24: जो करना है करो।
23: सीरियसली आई कांट टेक इट एनीमोर। इस बार रिया को पता चली जाए मैं कूद ही जाता हूँ यहाँ से।
0: अरे अरे रुको, ये क्या कर रहे हो?
23: अपना काम करो तुम, मुझे मेरा काम करने दो।
0: सुसाइड कर रहे हो?
23: हाँ, कोई दिक्कत?
0: अरे भाई सुनो, अगर बच गए तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, पुलिस अंदर कर देगी और रिया भी हाथ से चली जाएगी।
23: रिया, हाउ डेयर यू, तुम हमारी बातें सुन रहे थे?
0: रिलैक्स ब्रदर, सुन नहीं रहा था, तुम इतने लाउड थे कि। अच्छा अब सुनो, वो गई ना, तुम यहाँ, तुम्हें देख के कुछ याद आ गया, तुम्हें बताता हूँ, शायद तुम्हें भी अच्छा लगे।
23: क्या?
0: प्यार करते हो ना अपनी बीवी से बहुत, तो सुसाइड क्यों कर रहे थे?
23: उसे मेरे प्यार पर यकीन नहीं, मैं क्या करूं?
0: क्या तुम्हें जरा भी एहसास है इस बात का कि अगर तुम आज सच में वहां से कूद जाते तो रिया का क्या होता? जाने अनजाने में लोग प्यार के लिए कुछ ऐसी हदें पार कर जाते हैं कि उसका इस संसार के नियमों पर या लोगों पर क्या असर पड़ता है, उसके मायने ही खत्म हो जाते हैं। अगर सीख लेनी ही है तो शिव और सती की कहानी से ले लो। सुनो,
1: हे ईश्वर, स्वयं शिव हमारी सती के स्वामी होंगे। मैं ये शुभ सूचना तुरंत दक्षराज को देता हूँ। पुत्र दक्ष
2: जी। पिताश्री।
1: पुत्र, हमारी सती की वर्षों की साधना रंग लाई, उसने अपनी घोर साधना से शिव जी को प्रसन्न कर दिया है और शिव जी ने उसे अपनी अर्धांगिनी बनाने का निर्णय भी ले लिया है। धन्य हो गए हम पुत्र, विवाह की तैयारियां आरंभ करो।
2: नहीं पिताश्री, ये विवाह नहीं हो सकता।
1: नहीं हो सकता? ये क्या कह रहे हो पुत्र? साक्षात महादेव तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं और तुम उन्हें मना कर रहे हो?
2: मैं नहीं मानता कि वो भगवान है। वो सन्यासी जो शमशान में घूमता रहता है वो मेरी पुत्री से विवाह करेगा? ये मुझे स्वीकार नहीं। सती एक राजकुमारी है, प्रजापति दक्ष की पुत्री, तो सन्यासी उसके लिए सही वर नहीं है।
1: दक्ष, अपने अहंकार में तुम ये भूल रहे हो कि देवों के देव महादेव है वो, और सती का जन्म इसी कारण हुआ है। दक्ष, सती इस पूरे संसार की मां कहलाएगी, ईश्वर से योग्य वर उसे नहीं मिलेगा।
2: मुझे इस झांसे में न डालें पिताश्री, मेरा निर्णय निश्चित है। यदि इसके बाद भी आप सती का विवाह उस सन्यासी से करा देना चाहते हैं तो ठीक है पिताश्री, वो आपका निर्णय है, मैं उस संबंध को स्वीकार नहीं कर सकता।
0: तो इस तरह दक्ष के ना चाहते हुए भी शिव जी और सती की शादी हो गई, और पता है शिव जी ने खुद योगी होकर भी सती से बेहद प्यार किया, उनके लिए एक राजमहल बनाया और उन्हें रानी की तरह रखा। वो दोनों सालों तक खुशी खुशी साथ थे, पर एक दिन दक्षराज ने एक बड़ा सा यज्ञ किया और उन्होंने सारे देव मित्र महर्षियों को बुलाया, लेकिन शिव जी और सती को नहीं।
3: स्वामी, मुझे अभी पता चला है कि मेरे पिताश्री एक बड़ा यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, हमें भी वहां चलना चाहिए महादेव।
4: किंतु सती, हमें कोई निमंत्रण नहीं आया है।
3: मैं उनकी पुत्री हूँ स्वामी, अपने ही माता पिता से मिलने के लिए कैसा निमंत्रण?
4: सती, परंतु निमंत्रण के बिना वहाँ जाना अनुचित है।
3: ईश्वर, मैं अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ, इसमें अनुचित क्या है? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे उस यज्ञ में जाना ही है।
4: तुम जाना चाहती हो तो जाओ प्रिय, किंतु मैं जानता हूँ तुम्हारे पिताश्री तुम्हें वहाँ देख कर भी प्रसन्न नहीं होंगे।
3: प्रणाम पिताश्री।
2: सती, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तो तुम्हें कोई निमंत्रण नहीं दिया।
24: ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? मैं आपकी पुत्री हूँ, मुझे आपसे मिलने के लिए, इस यज्ञ में भाग लेने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता है?
2: तुम अब उस सन्यासी की अर्धांगिनी हो सती, भूलो मत। जिस दिन तुम उस सन्यासी की पत्नी बनी, उस दिन से तुम मेरी पुत्री नहीं हो।
24: पिताश्री, वो मेरे पति हैं, आप उनका अपमान ना करें, वो महादेव हैं।
2: तेरा पति वो भिखारी जिसके पास पहनने के लिए न वस्त्र है और न रहने के लिए घर, शमशान में घूमने वाला तेरा सन्यासी पति एक देव? उसे निमंत्रण देकर मैं स्वयं का अपमान नहीं करना चाहता, इसीलिए तुम भी जाओ यहाँ से।
24: बस कीजिए पिताश्री, इस पूरे संसार की सृष्टि करता है वो, कोई भी यज्ञ उनके आवाहन के बिना अधूरा है।
2: अगर ऐसा है तो फिर रह जाइए यज्ञ अधूरा, उस भिखारी को तो मैं आमंत्रित नहीं करूंगा।
24: दक्षराज, बस बहुत हो गया, अब एक और शब्द नहीं। दुर्भाग्य है मेरा कि मैंने आपकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, सालों साल जिन्हें पति के रूप में पाने के लिए घोर साधना की, उन्हें पा भी लिया तो क्या? अपने पति का अपमान, वो भी मेरे ही पिता द्वारा। स्वामी है वो मेरे, ये सब जो कुछ भी आज हुआ, इस सब के लिए धिक्कार है आपको पिताश्री, धिक्कार है ऋषि मुनि अज्ञानी ज्ञानी देव असुरों का, जो चुपचाप खड़े होकर आज महादेव का अपमान सह रहे हैं। किंतु मैं स्वीकार नहीं कर सकती, ये सब सुनने के बाद अब मैं जीवित नहीं रह सकती, इसी अग्नि में दहन होकर अपने प्राण त्याग कर रही हूँ, और कोई मुझे रोक नहीं सकता, मुझे क्षमा करना स्वामी।
5: सती, मेरी पुत्री।
6: ये सही नहीं हुआ दक्षराज, तुमने क्या कर दिया, अपनी ही पुत्री को प्राण त्यागने पर मजबूर कर दिया तुमने, ये कैसे पिता हो तुम? अब तुम्हें, हमें और इस संसार को शिव के आक्रोश से कोई नहीं बचा सकता, अब शिव तांडव करेंगे।
7: नहीं हो सकता, मेरे केशों से जन्मे वीर भद्र और भद्रकाली, जाओ और उस यज्ञ के सारे अतिथियों का विनाश कर दो, मुझे उस दक्ष का शीश चाहिए।
8: नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरे पास बताओ ना?
6: हे ईश्वर, तेरे पुत्र के कारण इतने सारे लोगों के प्राण गए, और मेरे ही पुत्र के कारण आपकी ये दशा हो गई, मुझे क्षमा करे महादेव, मुझे क्षमा करे महादेव, क्षमा करे मुझे, क्षमा करे मुझे।
4: अब इस जीवन का क्या अर्थ रह गया है ब्रह्मदेव, क्या रह गया है? अपनी सखा, अपनी अर्धांगिनी की रक्षा ही नहीं कर सका मैं ईश्वर नहीं हूं, रक्षा नहीं कर सका मैं अपनी सती की।
0: और उसके बाद शिवजी सती का मृत शरीर लेकर पूरा संसार घूमे, वो अपने दुख से उबर नहीं पा रहे थे, शिव ने अपनी सती को खो दिया था और साथ ही खुद को भी।
23: मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या कहूं।
0: अनुराग, किसी अपने को खो देने का दुख क्या होता है वो मैं समझता हूं। शिव ईश्वर है, सांसारिक बंधनों से कई ऊपर, पर जब उन्होंने अपनी प्रिय सती को खोया, उन्होंने तक अपना आपा खो दिया। वो उस दुख में ऐसे डूब गए कि बाकी सब कुछ भूल गए।
23: मैं रिया के साथ।
0: देखो अनुराग, एक बात बताता हूं, तुम्हें शायद अभी इसकी जरूरत है। सुसाइड करना, बस अपना प्यार प्रूफ करने के लिए कुछ ऐसा कर जाना, इज नेवर अ सॉल्यूशन। जाने वाला चला जाता है और अगर कुछ रह जाता है तो वो बस प्यार, लावारिस। उससे इतना प्यार करते हो तो प्यार करो, ये प्रूफ प्रूफ क्यों खेल रहे हो?
23: आई थिंक यू आर राइट, मुझे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, आज नहीं तो कल कभी तो समझेगी।
0: बिल्कुल, जब कुछ दिखाई ही ना दे तो आंखें बंद करके शिव को याद करना, एक उम्मीद की किरण वो तुम्हें हमेशा देंगे, और भाई उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है।
24: अनुराग,
23: रिया,
24: आई एम सॉरी, आई ओवर रिएक्टेड।
23: अच्छा वो तुम आ गई, वरना आज तो मुझे ऑलमोस्ट लगा था कि हम कभी नहीं मिल पाएंगे आफ्टर दिस।
0: हाँ भाभी, ये तो यहाँ से कूदने वाला था।
24: What? You stupid! मेरे बारे में सोचा या नहीं कुछ पहले? मेरा क्या होता?
23: क्या होता? वही होता जो मंजूरे नील होता।
24: क्या?
23: कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम्हारे बारे में तो सोच के रुक गया मेरी जान। चलो इससे मिलो।
0: हाय भाभी, I'm नील, बहुत ही प्यार में है ये तो, ऐसा क्या कर दिया आपने इसके साथ?
24: अच्छा
0: चलिए मैं चलता हूँ।
24: अरे कहाँ जा रहे हो?
0: अरे मैं तो यूं ही रुक गया था, वो मुझे आगे का सफर तय करना है।
23: यहाँ से कहाँ ब्रो?
0: मैं वही अपने भोलेनाथ के धाम अमरनाथ।
23: इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस राइट?
0: बहुत ज्यादा। चलो चलता हूँ।
23: अरे अरे अपना नंबर तो देते जाओ, अगली बार सुसाइड का सोचा तो।
0: अरे भाई वो मत करना, और मुझसे मिलना हो तो आओ ना तुम लोग भी कभी अमरनाथ, मैं वही मिलूंगा एक नई कहानी के साथ।
23: मैं जरूर आऊंगा।
24: हम जरूर आएंगे, यू फूल।
23: अरे यार भूल गया।
0: ठीक है चलता हूँ, हर हर महादेव।
9: खुद खुशी में किसी को खुशी नहीं मिलती बिड़ू, जो तू छोड़ के जा रहा है। और फिर तेरी जान किधर है बिड़ू? वो तो उधार की है, उस पे तेरे माँ बाप का हक है, तेरी धर्म पत्नी का हक है, तेरा भाई बहन अपने जैसे भिड़ू लोग सबका हक है रे बाबा। जो तेरा नहीं तो फिर तू कैसे उसे खत्म कर सकता है? देख भिड़ू, कभी लाइफ में टेंशन ज्यादा हो जाए ना तो किसी से बात कर लेना। भिड़ू याद कर, जब हम छोटे थे तब अपने माँ बाप अपने को जब स्कूल छोड़ने जाते थे हम लोग कितना रोते थे, चंद घंटों के लिए पर कितना रोते थे। अब तो हमेशा के लिए चला जाएगा तो सोच उन लोग कितना रोएगा। अपना कुछ नहीं मगर घर पे सब है यार, बच्चा भी, समझ गया ना बड़ू? शिव जीने की प्रेरणा देता है, शिव जीवन जीना सिखाता है। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा।
10: ठक ठक।
11: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
12: अच्छा मिला ही नहीं
11: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
12: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
11: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
12: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
21: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
13: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
14: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
21: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
14: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
21: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
14: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
21: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
14: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
21: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ।

0: बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
1: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। श्रावणी मेला की तैयारी का डीएम और एसपी ने लिया जायजा। नहर से मिला एक वृद्ध महिला का शव, पुलिस जांच में जुटी। एसपी ने माधोपुर थाने का किया वार्षिक निरीक्षण। 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर की गई खास बैठक। सांसद के बेटा और बहू का हुआ शादी का निबंधन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। श्रावणी मेला 2026 को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी समीर सौरभ और पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने बैकुंठपुर प्रखंड के सिंहासनी ग्राम स्थित प्रसिद्ध बाबा दानेश्वर नाथ मंदिर परिसर एवं मेला क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने श्रद्धालुओं के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर, श्रद्धालुओं के प्रवेश एवं निकास विकास मार्ग, बैरिकेटिंग, साफ सफाई, पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, पार्किंग, नियंत्रण कक्ष एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने भी मेला में तैनात पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने माधोपुर थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान लंबित कांडों के जल्द निष्पादन, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी और शराबबंदी को लेकर दिए गए सख्त निर्देशों का पालन करने की चेतावनी दी। थाना के अभिलेख, हाजत, वारंट निष्पादन, वाहन जांच और साफ सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। अपराध नियंत्रण और अवैध कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई करने के उन्होंने पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। नगर थाना क्षेत्र के सुंदर पट्टी टीओपी के पास गंडक नहर से एक वृद्ध महिला का शव मिला। सुबह जैसे ही लोगों ने शव को देखा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर नगर थाना की पुलिस ने एफएसएल की टीम के साथ पहुंचकर आवश्यक जांच पड़ताल किया। बताया जा रहा है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस मामले में शव की पहचान स्थानीय लोगों के माध्यम से की गई। मृत महिला नगर थाना क्षेत्र के सुकुलवा खुर्द निवासी स्वर्गीय नूर आलम की पत्नी मानी बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार महिला पिछले दो दिनों से लापता थी और वह मानसिक रूप से भी अस्वस्थ थी। इस घटना को लेकर परिजन भी स्तब्ध हैं। महिला आखिर यहां कैसे पहुंची, उसकी हत्या हुई या आत्महत्या है, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है और एफएसएल की टीम भी घटना स्थल से आवश्यक साक्ष्य बरामद करते हुए मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आने वाले 15 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाले 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर समाहरणालय के सभा कक्ष में जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की गई। इसमें समारोह के सफल, भव्य एवं गरिमामय आयोजन के लिए विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई तथा सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस देश का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। इस अवसर पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह की पूरी गरिमा अनुशासन एवं राष्ट्रीय सम्मान के अनुरूप संपन्न होना चाहिए। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। जिलाधिकारी ने समारोह स्थल की साफ सफाई, मंच निर्माण, ध्वजारोहण की व्यवस्था, परेड की तैयारी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अतिथियों के बैठने की समुचित व्यवस्था, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, चिकित्सा सुविधा, अग्निशमन व्यवस्था, सुरक्षा एवं अन्य विधि व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, पार्किंग तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाओं पर बिंदुवार समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देशित किया। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के बड़े पुत्र अभीक सुमन और उनकी पुत्र वधु डॉक्टर सगोल सेम सिंडी को उनके विवाह के उपरांत आज सांसद ने मैरिज सर्टिफिकेट के लिए निबंधन पदाधिकारी के पास पहुंचकर उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाया। इसके बाद दोनों दंपति को मैरिज सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इस अवसर पर परिवारजनों और शुभचिंतकों ने नव विवाहित दंपति को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने भी देश और प्रदेशवासियों से अपील किया कि सभी लोग शादी का निबंधन अवश्य कराएं और शादी निबंधन कराने के कई फायदे भी हैं। उन्होंने कहा कि शादी का निबंधन कराने से निबंधन प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कानूनी प्रमाण के रूप में भी होता है, महिलाओं की सुरक्षा होती है, पासपोर्ट, वीजा और विदेश यात्रा में भी इसका जरूरत पड़ता है, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, बच्चों के लिए भी जरूरी होता है, बैंक और बीमा पॉलिसी इत्यादि में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सभी लोग निश्चित रूप से अपने शादी का रजिस्ट्रेशन करवाएं। नगर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त झुन्ना कुमार को गिरफ्तार कर लिया। यह कररिया का रहने वाला है और इस पर 2019 में मुकदमा दर्ज किया गया था, तभी से पुलिस इसे ढूंढ रही थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बरौली थाना की पुलिस ने अपहरण कांड के दो अप्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी शहाबुद्दीन पिता स्वर्गीय मोहम्मद उस्मान, जो रामपुर बघेजी थाना बरौली का निवासी है, इसके साथ एक महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों पर अपहरण का मामला दर्ज था, पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी, अभी इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भोरे थाना की पुलिस ने भी 79 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब के साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। 2 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी भी जब्त की गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बखरिया मोड़ के पास गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 2 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी से 66 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब को पकड़ा। इस दौरान पिंटू चौहान पिता रामदेव चौहान साकिन नदवा, मुन्ना कुमार पिता प्रकाश राम साकिन लक्षीचक, करण कुमार पिता राजेश राम साकिन लक्षीचक, कुणाल कुमार पिता रामेश्वर उपाध्याय साकिन सिसई एवं शंभु शाही पिता स्वर्गीय विष्णुदेव शाही साकिन सिसई टोला सिसवा, ये सभी थाना भोरे के रहने वाले हैं। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनके शराब और गाड़ी को जब्त करते हुए पुलिस ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नगर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में भी फरार चल रहे 2 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें एक आरोपी सिंटू महतो है और दूसरा शिव भोला बताया जा रहा है। ये दोनों हरपुर रजोखर के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर भोरे पुलिस ने शराब कांड के मामले में फरार चल रहे एक और प्राथमिकी अभियुक्त को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया प्राथमिकी अभियुक्त आदित्य कुमार उर्फ छबीला पंडित है, जो रानीपुर थाना विजयपुर का निवासी है। इस पर 2022 में शराब का मामला दर्ज किया गया था, तभी से यह फरार था। पुलिस ने अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास समन्वय समिति की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास योजनाओं और मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान स्वीकृत योजनाओं की प्रगतिवार विभागवार समीक्षा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने और लंबित योजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों से योजनाओं के वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी ने खेल मैदान निर्माण की समीक्षा की। अंचल अधिकारियों को शेष पंचायतों में भूमि उपलब्ध कराकर खेल निर्माण शुरू कराने का निर्देश दिया। आपदा प्रबंधन में मामलों की समीक्षा की गई। प्राकृतिक आपदा मृत्यु अनुदान एवं अन्य राहत मामलों में लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान ऑनलाइन दाखिल खारिज अभियान बसेरा 2, भूमि विवादों और लंबित मामलों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सभी अंचल अधिकारियों को लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन करने, भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। वहीं बाईपास बरौली सरिया मोड़ सड़क, बैरिया बाईपास, मीरगंज बाईपास, हथुआ खजूरिया पथ सहित विभिन्न भू अर्जन परियोजनाओं की भी समीक्षा हुई और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने, लंबित तकनीकी एवं प्रशासनिक बाधाओं का शीघ्र समाधान करने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए गए। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के निर्देश पर गोपालगंज जदयू के जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल ने संगठन के चुनाव संपन्न होने के उपरांत जिला कार्य समिति की सूची के साथ प्रखंड कमेटी, नगर पंचायत कमेटी के साथ पंचायत एवं वार्ड अध्यक्षों की भी सूची उन्हें सौंपी। कमेटी में पार्टी के पुराने और नए समर्पित कार्यकर्ताओं को जगह दी गई है। कुछ को हटाया गया है तो कुछ नए लोगों को भी जगह दी गई है। सभी क्षेत्रों का सामंजस्य करते हुए जातीय करण को भी ध्यान में रखा गया है। वहीं बताया जा रहा है कि सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, मंत्री सह विधायक सुनील कुमार, पूर्व मंत्री सह राष्ट्रीय महासचिव रामसेवक सिंह, विधायक सह विधानसभा के प्रश्न एवं ध्यान आकर्षण समिति के सभापति अमरेंद्र पांडे, विधायक सह उप मुख्य सचेतक मंजीत सिंह, विधान परिषद सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव और पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू तथा पूर्व विधायक मोहम्मद नेमतुल्लाह सहित सभी पूर्व जिला अध्यक्षों एवं राज्य परिषद के सदस्यों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया गया है। कटिया के सिधवनिया गांव के शेख गयासुद्दीन के पुत्र फैजल की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि मृतक नहाने गया था, इसी दौरान गहरे पानी में चला गया जिससे डूबकर इसकी मौत हो गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पटना का अपर सचिव डेयर एवं वित्तीय सलाहकार संदीप सरकार ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अनुसंधान गतिविधियों, प्रौद्योगिकी विकास एवं वित्तीय प्रबंधन कार्यों की समीक्षा की। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने श्री सरकार को संस्थान की उपलब्धियों और संचालित अनुसंधान गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने किसान केंद्रित, जलवायु अनुकूल और संसाधन कुशल कृषि प्रौद्योगिकियों पर प्रकाश डालते हुए संस्थान के प्रमुख कार्यक्रम धान प्रति भूमि प्रबंधन के साथ साथ सामेकित कृषि प्रणाली, स्मार्ट जल प्रबंधन पद्धतियां, पशुधन एवं मत्स्य आधारित मॉड्यूल, बागवानी आधारित भू उपयोग मॉडल तथा धान गेहूं प्रणाली के सतत सघनीकरण के माध्यम से पूर्वी भारत में भूमि एवं जल उत्पादकता बढ़ाने और लघु एवं सीमांत किसानों की आजीविका में सुधार लाने की दिशा में चल रहे कार्यों की जानकारी दी। जादोपुर के मसान थाना में एक युवक 80 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह घटना शुक्रवार की देर शाम की बताई जा रही है। पुलिस ने पूरी रात मशक्कत के बाद लगभग 12-1 बजे रात को इस युवक को टावर से नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि युवक शराब के नशे में टावर पर चढ़ गया था और लगातार अपने पत्नी और बच्चों को बुलाने की बात कह रहा था। कुछ दिन पहले उसके पारिवारिक विवाद से नाराज होकर पत्नी मायके चली गई थी। इसके बाद यह युवक शराब के नशे में टावर पर चढ़ गया, लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था और पत्नी तथा बच्चों को बुलाने की जिद कर रहा था। देर रात पुलिस ने इसके पत्नी और बच्चों को बुलाया और किसी तरह मशक्कत के बाद इसे नीचे उतारा गया, जिसके बाद पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह युवक मसान थाना गांव का ही बिक्की कुमार है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। श्रावणी मेला की तैयारी का डीएम और एसपी ने लिया जायजा। नहर से मिला एक वृद्ध महिला का शव, पुलिस जांच में जुटी। एसपी ने माधोपुर थाने का किया वार्षिक निरीक्षण। 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर की गई खास बैठक। सांसद के बेटा और बहू का हुआ शादी का निबंधन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
10: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
11: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
12: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
13: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
14: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097-06-575। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861 64।
15: दोस्तों ये है मेरा शो जिसका नाम है टाइम मशीन, माइथोलॉजिकल कहानियों का सफर। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अब कहानी अम्बा। प्राचीन भारत की बात है। ऊंचे बर्फीले पहाड़ियों पर उस घने जंगल में सदियों पुराने पेड़ों का झुंड था। ऊंचे ऊंचे आकाश को छूते हुए इन पेड़ों में से कुछ पेड़ों ने एक जगह पर अपना रुख बदल कर एक छतरी बना ली थी, जैसे किसी को धूप और बारिश से बचाना चाहते थे। मैंने पास जाकर देखा तो उस बयाबान जंगल में एक लड़की आंखें बंद किए समाधि लगाए शिव के नाम का जाप

सफेद साड़ी में उसकी आभा निर्मल चांदनी जैसी दिख रही थी। चेहरे पर राजसी तेज था और लंबे घने बालों की जटाएं कमर पे खुली हुई थीं। उसकी उम्र छोटी थी पर चेहरे पे दुख की रेखाएं गहरी थीं। पेड़ों पर बैठे हुए पंछियों को उसकी आदत हो गई थी। पिछले कई सालों से वो उसे ऐसे ही देख रहे थे। छोटे छोटे खरगोश और गिलहरी उसे पास आकर देखते, फिर उसके ऊपर से कूदते हुए चले जाते। एक सांप वहीं उसके बिल्कुल पास अपना फन खोले बैठा था, जैसे उसका अंगरक्षक हो। मैं उसे देख रहा था और सोच रहा था कि ये विधि का कैसा विधान है जिसने महलों में पली एक राजकुमारी को एक तपस्विनी बना दिया था। जानते हैं ये कौन है? ये राजकुमारी अंबा है, शिव की नगरी काशी के नरेश की सबसे बड़ी बेटी अंबा। काशी नरेश की दो और बेटियां भी हैं, अंबिका और अंबालिका। मैंने देखा था इनको जब महल में दासियां इनका श्रृंगार कर रही होती थीं। रेशम के रंगीन कपड़े, महंगे आभूषण और फूलों की वेणी के साथ श्रृंगार के बाद जब तीनों राजकुमारियां तैयार होकर निकलती थीं, तो सिर्फ उनके माता पिता ही नहीं बल्कि पूरी काशी नगरी उनकी बलाएं उतारती थी। राजा अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते थे। उनकी पसंद का हर सामान उनके कहने से पहले ही आ जाता था, पर इसके साथ ही उनकी शिक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जाता था और राजकुमारियों के धर्म ज्ञान के लिए बहुत विद्वान पुरोहित और शास्त्री नियुक्त किए गए थे। ऐसे प्यार करने वाले पिता की बेटी और इतने बड़े राज्य की राजकुमारी को इस घने जंगल में बिल्कुल अकेले बिना दास दासियों के इतनी कड़ी तपस्या करने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई? कुछ साल पहले की तो बात है, काशी के नरेश अपनी रानी और मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी देखा रानी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। तीनों राजकुमारियां जवान हो गई हैं महाराज, मुझे इनके ब्याह की चिंता हो रही है। महाराज कुछ बोलते इससे पहले ही महामंत्री बोले, इसमें चिंता कैसी महारानी, काशी की राजकुमारियां तो हमेशा से ही हस्तिनापुर के राजकुमारों के साथ ब्याही जाती रही हैं और अब तो राजकुमार भीष्म की देखरेख में हस्तिनापुर का गौरव और भी बढ़ गया है। महाराज चुप रहे। इस बात को लेकर उनके मन में काफी उथल पुथल चल रही थी। क्या सोच रहे महाराज, महारानी ने पूछा तो महाराज बोले, आपकी बात ठीक है मंत्री जी, पिछले कुछ वर्षों में भीष्म ने हस्तिनापुर का गौरव और महिमा दोनों को बढ़ाया है। उनके जैसा शूरवीर और धर्मपरायण राजा पूरे भारतवर्ष में नहीं आए, लेकिन ब्याह भीष्म नहीं करेंगे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का प्रण लिया है। हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने वाला राजा भीष्म का सौतेला भाई विचित्र वीर है। जब भीष्म युवा कुमार थे तब उनके पिता राजा शांतनु को एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से प्यार हो गया था, लेकिन उसने राजा से विवाह करने से इसलिए इनकार कर दिया था कि उनके बाद राजगद्दी उसके बेटों को नहीं भीष्म और उनके बेटों को मिलेगी। सत्यवती को उसके पिता से विवाह करने को राजी कराने के लिए भीष्म ने दो प्रतिज्ञा ली थी। एक ये कि वे हस्तिनापुर के राजा नहीं संरक्षक बनकर रहेंगे और दूसरी ये कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। रानी ने पूछा, तो उसमें क्या संकोच है महाराज? महारानी, उसकी माता सत्यवती एक मछुआरे की बेटी है। मैं एक मछुआरिन के बेटे से अपनी बेटियों की हरगिज शादी नहीं करूंगा। उनकी ये बात सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। काशी और हस्तिनापुर के आपस के वैवाहिक संबंधों की प्रथा सदियों पुरानी थी। काशी का राज्य स्वाधीन था, लेकिन हस्तिनापुर जितना बड़ा और शक्तिशाली नहीं था। मंत्री बोले, आप पुत्री मोह में भूल रहे हैं महाराज, इतने बड़े अपमान को वो चुपचाप नहीं सहेंगे। ये सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। मैं उनकी ताकत के डर से अपने गौरवशाली कुल की गरिमा नहीं भूल सकता, और ये परंपरा तब तक ही थी जब तक उनका वंश भी ऊंचे कुल में चल रहा था। नहीं महामंत्री, मुझे अपनी बेटियों के लिए यह मंजूर नहीं है। अगले माह का कोई भी शुभ दिन देखकर राजकुमारियों का स्वयंवर तय कर दो और भारतवर्ष के हर बड़े राजघराने में आमंत्रण भेज दो। याद रहे,
हस्तिनापुर में निमंत्रण नहीं जाना चाहिए। क्या विडंबना थी ये भी, जिस राजा ने अपनी नाज नखरों से पली हुई बेटियों को नीचे कुल के राजकुमार से ब्याहने के लिए मना कर दिया था। वो ये नहीं जानता था कि उसके इसी निर्णय की वजह से उसकी लाडली बेटी अंबा कभी महलों का सुख नहीं देख पाएगी। वो ये नहीं जानता था कि उसकी इसी एक बात ने अगर अंबा के आगे का जीवन तय कर दिया था तो भीष्म की मृत्यु भी। पर ये सब तो भविष्य में होना था। अभी तो अंबा पर्दे के पीछे से अपने पिता की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। अंबा अपने पिता की सबसे लाडली बेटी होने के अलावा एक स्वाभिमानी और आत्मविश्वासी राजकन्या थी। बचपन में जब उसने वेदों और धर्म की शिक्षा के साथ युद्ध विद्या सीखने की भी जिद की तो राजा उसकी बात सुनकर मुस्कुराए थे। फिर बोले, ये लड़कियों का काम नहीं है, आपकी रक्षा का दायित्व आपके विवाह से पहले आपके पिता और उसके बाद आपके पति का है। पर अंबा ने भी ठान लिया था। राजा को आखिर उसकी जिद के सामने सर झुकाना पड़ा। यही नहीं, वे अंबा की हर जिद मानने लगे थे। रानी मना करती तो कहते, महारानी, अंबा अगर लड़का होती तो उसके हठ को दृढ़ निश्चय माना जाता ना, और पुत्री अगर पिता से भी अपनी मर्जी पूरी नहीं करवाएगी तो किससे करवाएगी। उस दिन राज्यसभा में अपनी पुत्रियों के विवाह की बात करते समय राजा को नहीं पता था कि अब अंबा के मन में एक और जिद पल रही थी। उसने किसी को बताया नहीं था, लेकिन वो शाल्व राज्य के राजा को अपना दिल दे बैठी थी और उनसे शादी करना चाहती थी। शाल्व नरेश हर तरह से उसके काबिल थे और उनको भी अंबा से प्यार था, लेकिन वो ये जानते थे कि हस्तिनापुर के राजा के होते हुए काशी की राजकुमारी को किसी और से ब्याह करने की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर किस्मत का यह निर्णय मंजूर कर लिया था कि जिस राजकुमारी को वो प्यार करते हैं वो उससे कभी शादी नहीं कर सकेंगे। अंबा ने जब आज अपने पिता की बात सुनी तो उसने फौरन दूत भेजकर शाल्व नरेश को संदेशा भेजा। भोले शंकर ने हमारी सुन ली, हमारी मनोकामना पूरी होगी, अब हम आप ही की रानी बनेंगे। ये सुनकर शाल्व नरेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब राजा का दूत उनका विधिवत आमंत्रण लेकर पहुंचा तो उन्होंने दूत को कई तोहफे लेकर विदा किया और खुद स्वयंवर में जाने की तैयारी में लग गए। स्वयंवर वाले दिन काशी नगरी दुल्हन की तरह फूलों और दियों से सजी हुई थी। घाटों पर पंडित मंत्रोच्चार कर रहे थे। शंखनाद और मंदिर की घंटियों से काशी की हवा महक रही थी। भारतवर्ष के सारे बड़े राज्यों के राजा अपनी पूरी शान में आए थे। हाथियों पे सवार राजा एक एक करके काशी में प्रवेश कर रहे थे। पीछे घोड़ों पर उनके सिपाही थे, पैदल दास और दासियों के हाथ में उपहार और भेंट के सजे हुए थाल। सड़क के दोनों तरफ काशी की जनता इन महारथियों का फूलों की वर्षा से स्वागत कर रही थी। ढोल और नगाड़ों के शोर के साथ हर्षोल्लास का माहौल बन गया था, पर वो सब आने वाले तूफान से अनजान थे। भीष्म काशी नरेश के मन की बात समझ गए थे और महामंत्री का डर सच साबित हुआ। इस अपमान का सबक सिखाने के लिए भीष्म अपनी सेना के साथ कूच कर चुके थे। राजा और रानी महल के द्वार पर अपने अतिथियों के स्वागत के लिए खड़े थे, लेकिन राजपुरोहित के चेहरे पर खुशी नहीं, चिंता दिख रही थी। पास में खड़े महामंत्री ने पूछा, क्या हुआ राजपुरोहित, आप खुश नहीं दिख रहे? राजपुरोहित बोले, महामंत्री, आज का तो पूरा दिन शुभ मुहूर्त में है, पर सुबह से कुछ अच्छे शगुन नहीं हो रहे हैं। कल से चीले और कौए महल के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं। हवन कुंड की अग्नि बार बार बुझ रही है। महामंत्री के माथे पर भी परेशानी की लकीरें आ गईं। बोले, बस आज का दिन ठीक निकल जाए राजपुरोहित, और तीनों राजकुमारियां सकुशल अपने अपने घर पहुंच जाएं, बस। राजपुरोहित बोले, मैंने घाट पर 1100 पंडितों से महाहवन कराना शुरू कर दिया है, शिव शंभु भली करेंगे। अतिथि राजा एक एक करके अपने हाथियों से उतरकर सीढ़ियां चढ़कर महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहे थे। वहां उनके स्वागत के लिए राज परिवार खड़ा था। औरतों ने गीत गाने शुरू कर दिए।
दास मेहमानों पर इत्र छिड़क रहे थे और दासियां फूलों की वर्षा कर रही थीं। रानी ने इशारा करके उस दासी को आगे बुलाया जिसके हाथ में आरती का थाल था। तभी एक हाथी जोर से चिंघाड़ा और दासी के हाथ से घबराहट में पूजा का थाल गिर गया। राजपुरोहित और महामंत्री ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक और अपशगुन। उनके चेहरे पर अब चिंता नहीं, डर था। पर राजा और रानी दोनों उनके डर से अनजान थे। रानी ने डर से कांपती हुई दासी को कहा, घबराओ नहीं, गलती थी पर हो गई, जाओ जल्दी से दूसरा आरती का थाल लगा के लाओ। राजा अपनी रानी की तरफ देखकर मुस्कुराए। इतने सारे शूरवीर क्षत्रिय आपने एक साथ देखे हैं महारानी, आज हमारी बेटियां अपनी पसंद के वर चुनेंगी। इनमें से तीन शक्तिशाली राजघरानों के साथ हमारे संबंध जुड़ेंगे और हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। अब तक हमारी तीन बेटियां थीं, आज हमको तीन बेटे मिलेंगे। महारानी ये सुनकर मुस्कुराईं। जब स्वयंवर शुरू हुआ तो सब राजा अपने दिल में यही उम्मीद लेकर बैठे थे कि आज कोई एक राजकुमारी तो उनके गले में माला जरूर पहनाएगी। सबसे बड़ी राजकुमारी अम्बा हाथ में माला लिए अपनी दासी के साथ नजरें झुकाए एक एक करके सारे राजाओं के सामने से निकल रही थी। रीत थी इसलिए उसे रुककर उस राजा का नाम और परिचय दोनों ही को सुनना पड़ता था। पर उसने तो तय कर रखा था कि उसे जयमाल किसे पहनानी है। और जब उसने शाल्व नरेश के सामने खड़े होकर उनका परिचय सुनकर आंखें उठाकर उनको मुस्कुराते हुए देखा तो वो भी मुस्कुरा दी। हाथ उठाकर जयमाला उनके गले में पहनाने ही वाली थी कि राज्यसभा में जोर से शोर उठा। उसके हाथ वहीं रुक गए। भीष्म अपने घोड़े पर सवार, हथियारों से लैस अपने सिपाहियों के साथ राज्यसभा में आ चुके थे। उनकी आंखों में क्रोध साफ दिख रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ कहता या करता, भीष्म ने तीनों राजकुमारियों को घोड़े पर बिठाया और जिस तूफानी तेजी से वो आए थे उसी तेजी से राज्यसभा के बाहर निकल गए। स्वयंवर सभा में सन्नाटा था। शूरवीर क्षत्रियों से भरी राज्यसभा भीष्म के सामने लाचार खड़ी रह गई। काशी नरेश के चेहरे पर क्रोध था, पर उनके मंत्रियों और सेनापति ने भीष्म से युद्ध न करने की सलाह दी। आखिर अब काशी की बेटियां जो भीष्म के पास थीं, काशी नरेश क्रोध और अपमान का घूंट पीकर रह गए। शाल्व नरेश ने नीचे गिरी हुई जयमाला देखी, उसके फूलों के साथ मुरझाते हुए अपने स्वाभिमान को देखा और मन में कचोटते हुए कुछ सवाल, क्यों वो सिर्फ असहाय खड़े रहे? क्यों उन्होंने तलवार खींचकर राजकुमारी अम्बा की रक्षा नहीं की? क्यों वो एक क्षत्रिय होते हुए भी दुश्मन की ताकत देखकर डर गए थे? जहां काशी में उदासी और निराशा का माहौल था, वहीं हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। भीष्म ने अपने अपमान का करारा जवाब दिया था और उनके प्यारे राजकुमार के लिए एक नहीं तीन गुणी राजकुमारियां आई थीं, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। भीष्म ने विवाह समारोह की घोषणा कर दी थी। सारी प्रजा राजभोग के लिए आमंत्रित थी। रानी सत्यवती, विचित्र वीर और सारे राज परिवार में बेहद खुशी का माहौल था। अंबिका और अम्बालिका पहले तो डरी हुई थीं, लेकिन फिर महारानी का प्यार और प्रजा की खुशी देखकर संभल गई थीं। राजकक्ष में अंबिका और अम्बालिका आपस में बात कर रही थीं। अगर यही हमारी नियति है तो हमें इसे मान लेना चाहिए, पिताजी के लिए भी यही ठीक रहेगा। अम्बा खिड़की से बाहर देख रही थी। ये बात सुनकर गुस्से में मुड़ी और बोली, मेरी ये नियति नहीं है। उसकी दोनों छोटी बहनें उसकी बात सुनकर घबरा गईं। वो अम्बा का गुस्सा और जिद जानती थीं। अम्बा ने राजकक्ष के बाहर खड़े अंगरक्षक से भीष्म को बुलाने का आग्रह किया। जब भीष्म आए तो अम्बा बोली, मैं अपने मन में शाल्व नरेश को अपना पति मान चुकी हूँ, ऐसे में किसी और की पत्नी बनना धर्म के विरुद्ध होगा। भीष्म ने राजकुमारी अम्बा के राजसी चेहरे पर दृढ़ता और आत्मविश्वास का तेज देखा। वो नियति मानने वाली नहीं, नियति बदलने वाली लड़की थी। भीष्म बोले, ऐसी बात है राजकुमारी तो फिर एक पल का भी विलंब उचित नहीं है। मेरे सिपाही आपको अभी ही पूरी इज्जत के साथ शाल्व राज्य लेकर जाएंगे। ये सुनकर अम्बा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। भीष्म का धन्यवाद करके वो बहनों के गले लगी और शाल्व जाने के लिए रथ पर निकल गई। उसके मन में एक बार फिर अपना प्यार पाने के सपने सजने लगे। पर जब वो शाल्व पहुंची तो शाल्व नरेश उसे देखकर खुश नहीं हुए। उसे देखते ही उन्हें वो जयमाला याद आ गई
उनके अपने अहम की तरह कुचली हुई। अंबा से शादी करके वो रोज इस हीनता के साथ नहीं जी सकते थे कि जब आवश्यकता थी तो वो अपने अस्त्र उठाकर अपने प्यार की रक्षा तक नहीं कर पाए थे। अपने पर गुस्सा उन्होंने अंबा पर निकाला। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। सबके सामने भीष्म आपको उठाकर ले गए थे। धर्म के नियमों के अनुसार आप अब उनकी हैं। उनसे कहिए कि वही अब आपसे ब्याह करें। अंबा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, पर फिर भी वो कोशिश करती रही, अपनी पवित्रता और प्यार की दुहाई देती रही, पर शाल्व नरेश ने अपना निर्णय नहीं बदला। अंबा जानती थी कि उनकी बात गलत नहीं है। अब उस पर सिर्फ भीष्म का अधिकार था। अब वो अपने पिता के घर भी वापस नहीं जा सकती थी, चाहे आज के मापदंड के हिसाब से गलत ही लगे, पर ऐसी ही थी उस वक्त की परंपराएं। वापस हस्तिनापुर पहुंचकर उसने भीष्म से विनती की, आपने मेरा हरण किया था, अब मुझ पर सिर्फ आपका अधिकार है, मुझे और कोई नहीं अपनाएगा, अब आपको मुझसे विवाह करना होगा। पूरे राज्य में राजा के विवाह का उत्सव चल रहा था। ऐसे में रानियों की बहन की ऐसी हालत देखकर सबको बुरा लग रहा था। राज्यसभा में सन्नाटा छा गया। विचित्रवीर और सभी सभासद भीष्म की तरफ देखने लगे। भीष्म ने उसका आंसुओं से भरा चेहरा देखा और हाथ जोड़कर बोले, देवी, मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ है, मैं विवाह नहीं कर सकता। अंबा को उनकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। अगर आप विवाह नहीं कर सकते थे तो आपने मेरा हरण क्यों किया? क्या ये क्षत्रिय धर्म है? मैं कहां जाऊं? भीष्म ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर अंबा के क्रोध का बांध टूट चुका था। उसने गरजते हुए कहा, शूरवीर भीष्म, तुमने मेरा जीवन तबाह किया है। मैं अकेली हूं, स्त्री हूं, पर अबला नहीं हूं। मैं आज प्रण लेती हूं कि मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी, चाहे इसके लिए मुझको कितने ही जीवन क्यों न लेने पड़े। ये कहकर वो तेजी से मुड़ी और राज्यसभा के बाहर चली गई। बिना रुके, बिना खाए पिए वो कई दिनों तक चलती रही। पैरों में छाले पड़ गए, रेशमी वस्त्र झाड़ियों में अटक के फट गए। एक साध्वी ने उसे अपनी साड़ी दी और अपने आश्रम में कुछ दिन रुकने का निमंत्रण भी, पर अंबा ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। उसके जीवन का बस एक लक्ष्य था, उसे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी। भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो अपनी मृत्यु की घड़ी खुद निश्चित कर सकते थे। ऐसे में अंबा उनकी मृत्यु का कारण कैसे बन सकती थी? उनकी प्रतिज्ञा असाध्य थी, पर हठ में अगर प्रतिशोध की चिंगारी सुलग जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो जानती थी कि शिव के वरदान से यह हो सकता था, पर अभी ये नहीं जानती थी कि शिव का वरदान मिलने पर भी उसे एक जन्म और लेना पड़ेगा। भीष्म को मारने के लिए उसे शिखंडी बनकर राजा द्रुपद के घर में जन्म लेना पड़ेगा, महाभारत के युद्ध का एक जरूरी मोहरा बनना पड़ेगा, तब जाकर उसकी प्रतिज्ञा पूरी होगी। पर यह सब तो भविष्य में होना था, अभी तो बस उसे शिव से वरदान चाहिए था और उसके लिए वो कड़ी तपस्या करने को तैयार थी। मैं उसे उस जंगल के सबसे घने हिस्से में जाते हुए देख रहा था। वहां पहुंचकर राजकुमारी अंबा ने आंखें बंद करके समाधि लगाकर अपने आराध्य देव शिव की तपस्या शुरू कर दी।

0: दोस्तों आज की कहानी बस इतनी ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप जब चाहेंगे, जितनी बार चाहेंगे, मैं यहीं मिलूंगा आपको, एक और सफर पर चलने को तैयार, एक और माइथोलॉजिकल कहानी सुनाने के लिए, क्योंकि ये है टाइम मशीन।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सजा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आएं नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
5: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99 399 66 999।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास जादवपुर में, कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97

0: 144।
1: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: ओम नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
3: बोलबम हर हर

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
6: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
4: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 AMZ पर।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।

0: मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। राज्य के सभी जिलों में भी होगा आयोजन। केंद्र सरकार ने कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में बिहार को 10,845 करोड़ रुपए जारी किए। पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का मास्टर प्लान जारी। टाउनशिप क्षेत्र में भूमि की खरीद बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक भी हटाई गई। और मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, मधुबनी और सुपौल जिले में तेज हवा के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा जुड़ेंगे।
1: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इधर प्रदेश के सभी जिलों में अभियान के तहत युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया जाएगा और विकसित भारत के निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अनुसार इस कार्यक्रम में संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। यह परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजीगत और विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी राज्यवार विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 19,208 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके बाद बिहार को 10,845 करोड़ और मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अग्रिम भुगतान का उद्देश्य राज्यों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है। नगर विकास और आवास विभाग ने पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का मास्टर प्लान जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने बिहार में कुल 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना बनाई है। विकास योजना 2047 के प्रारूप पर आम लोगों से 60 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार के बाद योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके साथ ही टाउनशिप क्षेत्र में भूमि की खरीद बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटा ली गई है। अब इस क्षेत्र में जमीन का क्रय विक्रय और हस्तांतरण किया जा सकेगा। पटना जिले के 9 नगर निकायों और 9 प्रखंडों के 273 गांव टाउनशिप में शामिल हैं। प्रदेश के सभी पंचायतों में पानी की गुणवत्ता जांच के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने एक फिटनेट किट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। विभाग की ओर से हर पंचायत में एक किट उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 2000 से अधिक पंचायतों को फिटनेट किट उपलब्ध कराया जा चुका है। इस किट से पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, कठोरता, गंदापन और मैलापन की जांच की जा सकेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार संबंधित क्षेत्र में पेयजल की गुणवत्ता में सुधार करने को लेकर आवश्यक कार्रवाई

0: करेगी। विभाग के अनुसार प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक परिवारों तक शुद्ध जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश के नगर निकायों में सफाई कर्मियों और चालकों की हड़ताल के कारण साफ सफाई प्रभावित है। हड़ताल के चौथे दिन आज भी विभिन्न स्थानों पर कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार जारी है। राजधानी पटना में नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल से कूड़ा उठाव और उसका निस्तारण का काम ठप पड़ा है। गली मोहल्लों में कचरे का अंबार लग गया है, इससे संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। हालांकि साफ सफाई की वैकल्पिक व्यवस्था का दावा किया जा रहा है। पटना नगर निगम के आयुक्त यशपाल मीणा ने हड़ताली कर्मियों से काम पर लौटने की अपील की है।
1: बेसिकली जो अभी का जो स्ट्राइक है उसमें जो 3 मांगे हैं, इसके आलोक में विभाग के जो सचिव सर हैं उनके साथ जो यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव है पूरे बिहार भर के, उनके साथ भी विभाग स्तर पे भी बैठक की गई है। विभाग के स्तर पे भी जो उच्च पदाधिकारी हैं वो लोग भी उसमें मौजूद रहे। उसके बाद माननीय मंत्री जी के द्वारा भी सभी जो यूनियन को जो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे बिहार को, उन लोगों के साथ भी उनकी समस्याओं को सुना गया, क्योंकि ये नीतिगत निर्णय है। किसी भी यूएलबी के स्तर से ये नहीं होना है, ये बेसिकली एक नीतिगत निर्णय लेने की इसमें बात आती।
0: मुंगेर से हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि कर्मियों ने मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का संकल्प दोहराया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल होगी। पटना के एएन कॉलेज में सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। मतगणना केंद्र और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि मतगणना केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी राजनीतिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। वहीं इस दौरान बोरिंग रोड चौराहे से एएन कॉलेज की ओर वाहनों के परिचालन पर भी रोक रहेगी। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया। इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जनसुराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। आज सुबह राजधानी पटना समेत आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज अररिया, किशनगंज, मधुबनी और सुपौल जिले में तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना है।
1: राज्य के अररिया, किशनगंज, मधुबनी एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों दरभंगा, कटिहार, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी एवं वैशाली जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर राज्य में मॉनसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से 43% कम बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में छिटपुट बारिश हुई। इस अवधि में किशनगंज जिले के तैयबपुर में सबसे अधिक 74.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नेपाल के सुनसरी समेत तराई क्षेत्र के विभिन्न भागों में तनाव के हालात के मद्देनजर बिहार के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मधुबनी जिला पुलिस ने भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि जयनगर, लौकहा, हल्लाखी, मधवापुर सहित जिले के सभी प्रमुख और वैकल्पिक सीमा मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीमा क्षेत्र में सघन वाहन जांच, गश्त और निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी ने सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना निकटतम थाना या डायल 112 पर तुरंत दें। राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम ने नाइजीरियाई मूल की एक विदेशी महिला को पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन से 3 किलो नशीले पदार्थ मेथाक्वालोन के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जब्त मादक पदार्थ की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 29 लाख रुपए बताई जाती है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। मुक्केबाजी में सबसे अधिक 10 पदक मिले हैं। बिहार के 2 खिलाड़ियों ने ग्लासगो में तिरंगे की शान बढ़ाई है। एक रिपोर्ट।
2: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में बिहार के खिलाड़ियों का देश के लिए पदक जीतने का सिलसिला जारी है। गयाजी के रहने वाले भारतीय सेना के सूबेदार सुमन राणा ने पैराशूट शॉर्ट पुट इवेंट की F57 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। राणा ने बेस्ट थ्रो के साथ गोल्ड अपने नाम किया है। सुमन राणा साल 2006 में जम्मू कश्मीर के पूंछ इलाके में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों द्वारा बिछाए गए लैंडमाइंस ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे में अपना दाहिना पैर गंवाने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और सेना के सहयोग से खेल में कदम रखकर यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले नालंदा के झंडू कुमार ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के लिए पहला पदक जीता। समाचार कक्ष से अमरनाथ प्रसाद।
0: मधुबनी की मानसी ने राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रांची में खेले गए सीबीएसई क्लस्टर 3 टेबल टेनिस टूर्नामेंट के अंडर 19 बालिका वर्ग में मानसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उप विजेता का खिताब जीता। दरभंगा में आयोजित राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता में पटना, वैशाली और भागलपुर की टीमों ने जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में संपन्न राष्ट्रीय मास्टर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पटना की सुधा कुमारी ने 63 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। सुधा ने बेंच प्रेस स्पर्धा में 117.5 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। रेलवे ने श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आज से गया मधुपुर श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन गया से मानपुर, तिलैया, नवादा, वारिसलीगंज, शेखपुरा, क्यूल, जमुई, झाझा और जैसीडी होते हुए मधुपुर जाएगी। अररिया जिले के बैरगाछी और आरएस थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मौके से एक टेम्पो और एक टोटो भी जब्त किया गया। मधुबनी जिले के नरहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चत्रापट्टी में छापेमारी कर पुलिस ने आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से एक देसी पिस्तौल बरामद किया गया है। सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने सोनपुर श्रावणी मेला संचालन स्थल, पहलेजा घाट, हरिहरनाथ मंदिर, आमी मंदिर और आमी घाट का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने मेला स्थल समेत कांवड़िया पथ पर सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, आर्म्स एक्ट मामले में पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति को 7-7 वर्ष की सजा। दैनिक जागरण लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, घर खरीदारों के हितों को मिले सर्वोच्च प्राथमिकता। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, मॉडल स्कूलों में होगा शिक्षकों का ट्रांसफर। अखबार लिखता है, म्यूचुअल पोस्टिंग। प्रभात खबर ने कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी खबर को अपनी पहली लीड बनाते हुए लिखा है, स्वर्णिम शनिवार, 8 गोल्ड से दम का भारत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। राज्य के सभी जिलों में भी होगा आयोजन। केंद्र सरकार ने कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में बिहार को 10,845 करोड़ रूपए जारी किए। पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का मास्टर प्लान जारी। टाउनशिप क्षेत्र में भूमि की खरीद बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक भी हटाई गई। और मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, मधुबनी और सुपौल जिले में तेज हवा के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
9: स्पेस में कोई आपकी चीख नहीं सुन पाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा वायलेंस है और वो इतना स्केरी है कि आप सोच भी नहीं सकते। सुपर डेंस न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराते हैं, न्यूबॉर्न प्लैनेट्स एक दूसरे को कुचलने की कोशिश करते हैं और सुपर मैसिव ब्लैक होल से निकलती है डेडली कॉस्मिक रेज।
10: यहाँ स्टार्स एक्सप्लोड करते हैं, गैलेक्सीज कोलाइड करती हैं। यहाँ नेब्यूले हैं, रेडिएशन है, शॉक वेव्स हैं।
9: आज आप यूनिवर्स की कुछ सबसे डरावनी जगह
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
9: मान लीजिए आपको एडवेंचर पसंद है, आप रिस्क लेते रहते हैं, डेंजर और डेथ आपको डरा नहीं पाते, और यूनिवर्स की सबसे बड़ी चैलेंजेस से आप टक्कर लेना चाहते हैं, तो जरा दोबारा सोचिए, क्योंकि कॉस्मोस में ऐसा सब कुछ है, लाइफ के लिए हेवंस भी और जानलेवा होस भी।
12: हमारा यूनिवर्स फायदेमंद भी है और वायलेंट भी है। इसके कुछ हिस्सों में सिचुएशंस लाइफ के लिए बहुत अच्छी भी हैं, जैसे कि अर्थ पर, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां सिचुएशंस बहुत ही वायलेंट और रफ होती हैं।
9: लेकिन जरूरी नहीं कि आप यूनिवर्स की सबसे डरावनी लोकेशंस पर जाकर ही ऐसी सिचुएशंस का सामना करें। ऐसी कुछ जगहें तो हमारे पास ही मौजूद है, जैसे कि बीटलजूस, जो खूबसूरत ओरायन कॉन्स्टेलेशन के बीच में छुपा हुआ है। ये रेड स्टार अर्थ से 640 लाइट ईयर्स दूर है और ये खत्म होने वाला है।
13: बीटलजूस एक बहुत बड़ा रेड सुपर जायंट स्टार है। ये तो दिखने में ही बहुत नाराज सा दिखता है। ये इतना बड़ा है कि अगर हम इसे अपने सोलर सिस्टम में रखते हैं तो ये फैल कर प्लैनेट जुपिटर तक पहुँच जाएगा। ये ह्यूज है।
9: जब बीटलजूस जैसे बड़े स्टार्स खत्म होते हैं तो जोरदार ब्लास्ट होता है।
13: ये स्टार अब सुपरनोवा बनने ही वाला है और जब ऐसा होगा तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा।
9: बीटलजूस का फ्यूल खत्म हो रहा है। इसके अंदर मौजूद न्यूक्लियर फायर लगातार इसके जबरदस्त मास की कुचल देने वाली ग्रेविटी से जूझती रहती है और जब ये फ्यूल खत्म होगा तो जोरदार ब्लास्ट होगा। ये तो नहीं कह सकते कि ऐसा कब होगा, लेकिन ये स्टार जल्दी ही कोलैप्स होने लगेगा।
14: इस स्टार के खत्म होने से पहले, इसके सुपरनोवा बनने से पहले, इसके सरफेस के बारे में इमेजिन कीजिए। इस स्टार का सरफेस बहुत तेजी से पीछे हटेगा, कुछ ऐसे ही जैसे आप बीच पर हो और आपको ओशन का पानी बहुत तेजी से पीछे हटता नजर आए। आप समझ जाएंगे कुछ बुरा होने वाला है।
9: कोलैप्स करती बाहरी लेयर्स कोर को पंप करती है, जिससे वो और ज्यादा डेंस होता जाता है। कोर कंप्रेस होता जाता है और स्टार अंदर की तरफ धंसता जाता है। अब गैस को कहीं तो जाना होता है, तो ये इतनी जोरदार फोर्स से बाउंस करती है कि हम सोच भी नहीं सकते।
15: जब बीटलजूस सुपरनोवा बनेगा तो बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। तब एक स्टार एक्सप्लोड हो रहा होगा। ये बताना मुश्किल है कि इसकी एनर्जी कितनी होगी। जरा सोचिए, सन में हर सेकंड कितनी एनर्जी निकलती है, इसे एक साल में 31 मिलियन सेकंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसे सन के लाइफ टाइम में 10 बिलियन ईयर्स से मल्टीप्लाई करें। किसी सुपरनोवा से इतनी ही एनर्जी निकलती है।
9: इस तरह निकलने वाली एनर्जी लाइट, हीट और सुपर हीटेड गैस की एक शॉक वेव होती है। ये एक सेकंड में थाउजेंड्स ऑफ माइल्स की स्पीड से आगे बढ़ते हुए अपने आसपास की हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देती है।
12: ऐसे किसी फटे स्टार का चक्कर लगा रहे किसी प्लैनेट पर लाइफ पूरी तरह खत्म हो जाएगी।
9: हमारा सन इतना बड़ा नहीं है कि सुपरनोवा बन जाए, वरना हम मारे जाते। अगर कोई सुपरनोवा हमसे 30 लाइट ईयर्स दूर भी फटता है तो भी हम मुश्किल में होंगे। ये दूरी 100 ट्रिलियन माइल्स से भी ज्यादा है। अर्थ की तरह बढ़ती शॉक वेव से शायद एटमॉस्फेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और मास एक्सटिंक्शंस भी होंगे।

0: आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप बीटल जूस के आसपास भी जाएं, या फिर इसके सुपरनोवा बन जाने के बाद भी, क्योंकि इसके मरने के बाद शायद ये एक डरावना सरप्राइज छोड़कर जाए। ये यूनिवर्स में मौजूद एक बहुत ही एक्सट्रीम चीज होगी, यानी एक न्यूट्रॉन स्टार।
1: न्यूट्रॉन स्टार्स को आप कह सकते हैं वैम्पायर ज़ॉम्बीज। ये दरअसल दम तोड़ चुके मैसिव स्टार्स के कोर्स होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार्स की भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ होती है और आप इनके नजदीक बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे।
0: इनमें ट्रिलियंस ऑफ टन्स ऑफ मैटर मैनहट्टन जितनी छोटी सी जगह में कंप्रेस्ड होता है।
2: कोई न्यूट्रॉन स्टार किसी ब्लैक होल के अलावा एस्ट्रोफिजिक्स में सबसे डेंस बॉडी होती है। तो अगर न्यूट्रॉन स्टार के एक छोटे पत्थर जितने मैटर की बात करें तो उसका वजन 100 मिलियन मेट्रिक टन्स जितना होगा और ये फौरन आपके हाथ के आर पार हो जाएगा।
0: न्यूट्रॉन स्टार क्योंकि बहुत डेंस होता है, इसलिए ये एक इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करता है।
3: ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि कोई न्यूट्रॉन स्टार कितना ड्रामेटिक और डेंजरस होता है। इसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि ये लाइट को भी मोड़ देती है। आपको इसमें बहुत ही अजीब से शिमरिंग इफेक्ट्स नजर आएंगे।
0: ये चमकदार मगर डेडली होता है। कोई भी एस्ट्रोनॉट किसी भी न्यूट्रॉन स्टार के नजदीक नहीं पहुँच सकता। लेकिन अगर आप कोई आर्म चेयर ट्रैवलर हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो चलिए एक गैलेक्टिक क्रैश टेस्ट डमी को वहाँ भेजते हैं। हम इसका नाम रखेंगे चक।
1: क्रैश टेस्ट डमीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जो पूरी तरह ह्यूमन सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए ही बनी होती हैं, और वो खुद को इसके लिए सैक्रिफाइस करती हैं।
4: ये डमी जिस भी सिचुएशंस का सामना करेगा वो काफी मुश्किल होंगी।
0: चक जैसे जैसे न्यूट्रॉन स्टार के पास पहुंचता है, इसकी ग्रेविटेशनल ग्रिप चक की हालत खराब करने लगती है।
4: ग्रेविटी इसे इतनी तेजी से खींच रही है कि ये बहुत स्पीड पर सरफेस की तरफ जा रहा है। ये लाइट की स्पीड के हाफ या 2/3 स्पीड पर मूव कर रहा होगा।
0: न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले 200 बिलियन टाइम्स ज्यादा है। सरफेस से करीब 150 माइल्स ऊपर ये चक के लिम्स पर बहुत ही खराब ढंग से असर दिखाने लगती है।
3: हमसे कहा गया था कि आप जैसे जैसे किसी न्यूट्रॉन स्टार के नजदीक पहुंचते जाएंगे, आपका साइज स्पेगेटी के किसी टुकड़े की तरह लंबा और लंबा होता जाएगा, पर असलियत में आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।
1: जरा सोचिए कि आपको क्या एक्सपीरियंस होगा। सबसे पहले तो आपकी बॉडी के जॉइंट्स डिसलोकेट हो जाएंगे, आपकी स्किन आपकी बॉडी पर से उतरने लगेगी, आपकी बोन्स अलग हो जाएंगी, आपके ऑर्गन्स खींचकर टूट जाएंगे।
0: पलक झपकते ही चक एटम्स की एक पतली सी स्ट्रीम की तरह स्टार की तरफ खींचने लगेगा।
3: ये एटम्स आखिरकार न्यूट्रॉन स्टार पर बरस जाएंगे और अनफॉर्चुनेटली ये वायलेंस यहीं पर रुकेगा नहीं।
0: चक के टुकड़े सरफेस से टकराएंगे जिससे जबरदस्त एनर्जी निकलेगी।
4: चक के टुकड़े 1,00,000 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से सरफेस से टकराएंगे। ये इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होगा कि इससे निकलने वाली एनर्जी बहुत ह्यूज होगी। ये एनर्जी अर्थ पर मौजूद सारे न्यूक्लियर वेपन से कहीं ज्यादा होगी।
3: किसी न्यूट्रॉन स्टार की वजह से मरना बहुत ही ब्रूटल होगा। मैं तो किसी न्यूट्रॉन स्टार के आसपास भी नहीं जाना चाहूंगी।
4: अच्छी खबर ये है कि गैलेक्सी में न्यूट्रॉन स्टार्स ज्यादा नहीं हैं, बेशक ये मिलियंस में हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़े स्पेस में फैले हुए हैं।
1: कुछ लोग काफी बेवकूफ होते हैं, तो हो सकता है कि फ्यूचर में कोई स्पेस ट्रैवलर किसी न्यूट्रॉन स्टार के बहुत करीब आ जाए, फॉरेन रेडिएशन का शिकार बने और टुकड़े टुकड़े होकर सरफेस से टकराए और फिर न्यूट्रॉन स्टार का ही हिस्सा बन जाए।
0: कोई भी चीज और कोई भी इंसान अगर किसी न्यूट्रॉन स्टार के ज्यादा पास आएगा तो उसका अंत ऐसा ही बुरा होगा।
2: कोई न्यूट्रॉन स्टार अपनी लाइफ के किसी भी फेज में बहुत खतरनाक होता है। अगर आपका सामना किसी पैदा होते न्यूट्रॉन स्टार से हो जाए तो समझिए कि आप किसी सुपरनोवा के बहुत करीब हैं और आप मारे जाएंगे। अगर आपकी किसी न्यूट्रॉन स्टार से मुलाकात सुपरनोवा के फटने के बाद होती है तो भी मौत तय समझिए, और अगर आप फिर भी बचकर किसी न्यूट्रॉन स्टार पर गिरते हैं तो भी बहुत जल्दी आपका खात्मा हो जाएगा।
4: अगर फ्यूचर स्पेस ट्रैवलर मुझसे सलाह मांगे तो मैं कहूंगा कि न्यूट्रॉन स्टार्स से बस दूर ही रहे, वही बेहतर रहेगा।
0: यानी आपको किसी न्यूट्रॉन स्टार के आसपास बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। लेकिन टू न्यूट्रॉन स्टार्स तो और भी जानलेवा हो सकते हैं। ये इतनी अजीब और डेडली सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि इससे पूरा यूनिवर्स ही ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वो बन सकता है एक ज़ॉम्बी। जून 2013, नासा के स्विफ्ट सैटेलाइट को पास की ही एक गैलेक्सी पर एनर्जी का एक शॉर्ट बर्स्ट नजर आया। इसका मतलब था कि कोई बहुत ही एनर्जेटिक और वायलेंट इवेंट यहाँ हुआ है। ये कोलिजन था दो न्यूट्रॉन स्टार्स के बीच। लेकिन दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में कोलाइड कैसे करते हैं?
4: बाइनरी स्टार्स का गैलेक्सी में होना बहुत कॉमन है। इसमें दो स्टार्स एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, बशर्ते ये दोनों स्टार्स इतने बड़े हों कि सुपरनोवा बन सके। हो सकता है कि दो न्यूट्रॉन स्टार्स एक दूसरे का ही चक्कर काटते रहें।
0: दो सुपर डेंस स्टार्स एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, फिर वो एक दूसरे के और नजदीक आते हैं और आखिरकार कोलाइड कर जाते हैं। इससे जबरदस्त एनर्जी पैदा होती है जो पूरे स्पेस में फैल जाती है।
4: जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में मर्ज करते हैं तो इस एक्सप्लोजन की एनर्जी जबरदस्त होती है। इसे वर्ड्स में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है।
0: इस एक्सप्लोजन से इतनी एनर्जी रिलीज हुई जितनी सन अपने पूरे लाइफ टाइम में भी रिलीज नहीं कर सकता।
4: ये बिग बैंग के बाद से यूनिवर्स के सबसे बड़े एक्सप्लोजन हैं।
0: लेकिन एक्सप्लोजन में सिर्फ एनर्जी ही रिलीज नहीं होती है, ये भी हो सकता है कि न्यूट्रॉन स्टार के टक्करों से कुछ बहुत ही अजीब चीज रिलीज हो जाए। ये है एक नया थियोरेटिकल पार्टिकल जिसे कहते हैं स्ट्रेंजलेट।
1: स्ट्रेंजलेट्स नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जिस मैटर से बनते हैं वैसा हमारे आसपास कुछ है ही नहीं। हमारे आसपास मौजूद सारी चीजें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से बनती हैं, और ये बनते हैं दो तरह के क्वार्क्स से। एक को हम कहते हैं अप और दूसरे को कहते हैं डाउन। स्ट्रेंजलेट्स में एक अलग तरह का क्वार्क होता है जिसे कहा जाता है स्ट्रेंज क्वार्क।
4: स्ट्रेंज क्वार्क्स के एक साथ आने से बड़े पार्टिकल्स बन सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल मैटर जैसा नहीं होता। ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन जैसा ही होता है जिनसे हम बनते हैं। इससे बनती है एक अजीब सी चीज जिसे कहते हैं स्ट्रेंजलेट।
0: स्ट्रेंजलेट्स को समझने के लिए साइंटिस्ट्स जिस थ्योरी को यूज करते हैं उसका नाम है स्ट्रेंज मैटर हाइपोथेसिस। इसके मुताबिक स्ट्रेंजलेट्स मैटर की एक स्टेबल फॉर्म हो सकते हैं और ये कुछ खास एक्सट्रीम कंडीशंस में ही बनते हैं।
2: स्ट्रेंज मैटर को किसी न्यूट्रॉन स्टार के अंदरूनी हिस्से में ढूंढा जा सकता है। अगर स्ट्रेंजलेट्स वाकई मौजूद हैं तो वो यहाँ हो सकते हैं।
0: किसी न्यूट्रॉन स्टार के कोर में मौजूद प्रेशर्स बेहिसाब होते हैं, इनकी वजह से स्ट्रेंजलेट्स बन सकते हैं। ये स्ट्रेंजलेट्स दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिव स्ट्रेंजलेट्स तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव स्ट्रेंजलेट्स से बचकर रहना ही ठीक होता है।
1: आप स्ट्रेंजलेट्स को सब एटॉमिक ज़ॉम्बीज जैसा समझिए। इन्होंने आपको काटा तो आप भी बन जाएंगे स्ट्रेंजलेट। इससे होगा ये कि किसी नॉर्मल मैटर में मौजूद न्यूक्लिया भी स्ट्रेंज मैटर में बदल जाएगा।
0: अगर न्यूट्रॉन स्टार के टक्करों के दौरान नेगेटिवली चार्ज्ड स्ट्रेंजलेट्स रिलीज होते हैं तो उनसे एक चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है और ये जिस नॉर्मल मैटर को छुएंगे वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा।
1: तो इस चेन रिएक्शन के दौरान नॉर्मल मैटर बन जाता है स्ट्रेंज मैटर और इस दौरान ये एनर्जी को छोड़ता है।
4: ये कुछ कुछ पुरानी साईफाई मूवी द ब्लॉब जैसा ही है। ब्लॉब जिस भी चीज को छूता है वो भी ब्लॉब बन जाती है। स्ट्रेंजलेट्स अपने आसपास के मैटर को कंज्यूम करते जाते हैं और इसके नतीजे में ऐसा कैस्केड इफेक्ट पैदा होता है जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता।
0: जब कोई स्ट्रेंजलेट चक से टकराता है तो ये उसे एक टिकिंग टाइम बॉम्ब में बदल देता है।
5: तो चक में अभी तक जो नॉर्मल मैटर था वो जल्दी ही स्ट्रेंज मैटर में बदलने वाला था, जिससे न सिर्फ चक की आइडेंटिटी बदलती बल्कि इस दौरान जबरदस्त एनर्जी भी रिलीज होती।
0: जैसे ही उसकी उंगली के नाखून जितना एरिया स्ट्रेंज मैटर में कन्वर्ट होता है, चक में धमाका होता है और स्ट्रेंजलेट पार्टिकल्स स्पेस में फैल जाते हैं।
5: जब नॉर्मल मैटर की थोड़ी सी क्वांटिटी स्ट्रेंज मैटर में बदलती है तो रिलीज होने वाली एनर्जी और ज्यादा स्ट्रेंज पार्टिकल्स को आगे बढ़ाती है ताकि वो और ऐसा मैटर ढूंढ सके। इस तरह ये प्रोसेस खराब और खराब होता जाता है।
0: अगर स्ट्रेंजलेट पार्टिकल्स अर्थ जैसे किसी प्लेनेट से टकरा जाए तो नतीजे बहुत बुरे होंगे।
1: मान लीजिए कि ये स्ट्रेंजलेट हमारे एटमॉस्फेयर से टकराता है तो जब ये उन एटम से टकराएगा तो वो स्ट्रेंज मैटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर उस स्ट्रेंज मैटर से और स्ट्रेंज मैटर बनेगा, फिर उस लोकेशन से एक अजीब सा बबल पैदा होगा और साथ ही और ज्यादा एनर्जी बनेगी जिससे और स्ट्रेंजलेट्स क्रिएट होंगे। ऐसा तब तक होगा जब तक स्ट्रेंजलेट एक्सप्लोजन पूरे प्लैनेट को खत्म नहीं कर देता।
0: बची हुई डेब्री स्पेस में फैल जाती है, इससे और कई नए स्ट्रेंजलेट ज़ॉम्बीज बन जाते हैं जो किसी भी चीज को छूने पर उसे डिस्ट्रॉय करने को तैयार है।
1: एक प्लैनेट स्ट्रेंज मैटर में बदलता है, उसके बाद अगला प्लैनेट, फिर एक स्टार, फिर अगला स्टार, तो इस तरह पूरी की पूरी गैलेक्सीज स्ट्रेंज बन जाती हैं।
0: और इस तरह स्ट्रेंजलेट्स पूरे यूनिवर्स को ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हम अभी तक कैसे बचे हुए हैं?
6: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
11: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
12: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
11: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
12: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
11: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
12: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
13: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
14: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
15: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
13: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
15: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
13: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
15: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
13: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
15: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27। 27 गोपालगंज।
13: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
15: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
13: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
15: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
13: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
15: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
13: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
15: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
13: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
15: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
13: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
15: बोलबम हर हर महादेव।
16: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
17: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
0: हम न्यूट्रॉन स्टार्स कोलिजन को देख चुके हैं, तो आखिरकार स्ट्रेंजलेट्स हैं कहाँ?
1: एक तरफ तो हम स्ट्रेंज स्टफ से नहीं बने हैं, हो सकता है कि ऐसी कोई चीज मौजूद ही ना हो, लेकिन दूसरी तरफ स्पेस वाकई बहुत बड़ा है। किसी पास ही मौजूद सबसे बड़ी गैलेक्सी से किसी स्ट्रेंज मैटर पार्टिकल को हम तक पहुंचने में लाखों साल लग सकते हैं। अगर ये लाइट की स्पीड से मूव कर रही हो तो हो सकता है ये हो, पर अभी तक हम तक पहुंची ना हो।
0: हो सकता है पूरे कॉस्मोस में आपस में टकराने वाले न्यूट्रॉन स्टार्स मौजूद हों और स्ट्रेंजलेट्स को रिलीज कर रहे हों, पर ये तो फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन न्यूट्रॉन स्टार्स ही यूनिवर्स में जानलेवा पार्टिकल्स का इकलौता सोर्स नहीं है, ऐसे तो बिलियंस स्टार्स वहां हैं, और ऐसा एक तो हमारी गैलेक्सी में भी है। यानी हमारी होम गैलेक्सी मिल्की वे में। इसकी चौड़ाई 100,000 लाइट ईयर्स से भी ज्यादा है और इसमें बड़े कमाल के नेबुलास और बिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद हैं। ये स्टार्स गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाते हैं। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल के चारों तरफ घूमते हैं, जिसे कहते हैं सजिटेरियस ए स्टार। दिखने में ये अच्छे लगते हैं, इनका ग्लो बहुत लीथल है। इसी वजह से हमारी गैलेक्सी के बीच वाला हिस्सा हमारे यूनिवर्स की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है।
18: यूनिवर्स में सबसे ज्यादा रेडिएशन पैदा करते हैं स्टार्स। इनमें न्यूक्लियर रिएक्शंस होते रहते हैं और उसी की वजह से वो लाइट पैदा होती है जो हम देखते हैं। स्टार जितना ज्यादा बड़ा होगा, उसके जलने से उतनी ही ज्यादा गर्मी होगी और उतना ही रेडिएशन होगा।
0: गैलेक्टिक कोर में मौजूद है सबसे ज्यादा एक्टिव स्टार्स, और अगर हम वहां जाएं तो हमें जबरदस्त रेडियो एक्टिविटी का सामना करना पड़ेगा।
18: रेडिएशन वर्ड बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बुरा मालूम होता है, लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ये हमारे चारों तरफ है। रेडिएशन का मतलब है किसी भी तरह की लाइट। इस वक्त मुझ में से हीट निकल रही है, मैं एक गर्म बॉडी हूँ, ये होता है रेडिएशन। बस रेडिएशन की कुछ फॉर्म्स बहुत मामूली और अच्छी होती हैं और कुछ अच्छी नहीं होती।
19: कुछ की एनर्जी कम होती है, कुछ की एनर्जी ज्यादा होती है, और ये एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो ज्यादा खतरनाक होती जाएगी, क्योंकि हमारे सेल्स इस एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है।
0: इस तरह के रेडिएशन को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और सबसे पावरफुल एक्सरेज और गामा रेज इतनी स्ट्रांग होती हैं कि उनकी वजह से रेडिएशन सिकनेस और कुछ केसेस में मौत भी हो सकती है। एक और तरह का रेडिएशन भी होता है, नाम है कॉस्मिक रेज। ये छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइट की स्पीड से मूव करते हैं। न्यू रिसर्च से पता चला है कि सबसे एनर्जेटिक कॉस्मिक रेज स्टार्स से नहीं आती, वो आती है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स से।
18: लोग जब ब्लैक होल्स के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि वो डार्क हैं और वो लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन शायद आप हैरान हो कि जब कोई चीज किसी ब्लैक होल में गिरती है तो वो बहुत गर्म होती जाती है, और शायद वो ब्लैक होल के ऊपर मौजूद हाई एनर्जी जेट्स की तरफ चली जाए।
19: जब ये मटेरियल ब्लैक होल में गिरता है तो इसकी ऐसी डिस्क बन जाती है, और इसके बहुत गर्म होने के कारण इससे हवा का जोरदार झोंका निकलता है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स को छोड़ती है।
18: तो ये मैटर ब्लैक होल के अंदर वाला नहीं होता, लेकिन जब ये इसमें गिरता है तो ये यूनिवर्स में मौजूद सबसे जबरदस्त रेडिएशन बन जाता है।
0: सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का बिहेवियर टर्बो चार्ज्ड पार्टिकल्स एक्सेलरेटर्स जैसा होता है। ये अपने पार्टिकल्स को अपने पोल्स से जेट्स की शक्ल में सुपर हीट करके ब्लास्ट करते हैं।
20: ये जेट्स बहुत ही पावरफुल होते हैं। ये इतने पावरफुल होते हैं कि पार्टिकल्स को लाइट की स्पीड के 99.99% तक एक्सेलरेट कर सकते हैं, और ये बहुत फास्ट स्पीड है। चीजें जिस लिमिट तक एक्सेलरेट हो सकती हैं, इस स्पीड को बस उसकी अपर लिमिट समझिए।
0: यही एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स होते हैं कॉस्मिक रेज।
18: कॉस्मिक रेज हमारे यूनिवर्स में मौजूद सबसे एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। हो सकता है ये सिर्फ एक प्रोटॉन हो, लेकिन इन्हें इतनी तेज स्पीड पर एक्सेलरेट किया जाता है कि ऐसे किसी प्रोटॉन की स्पीड 100 माइल्स पर आर वाली बॉल जैसी हो सकती है।
19: इन्हें छोटी कॉस्मिक बुलेट्स कहा जा सकता है। अगर ये आपसे टकरा जाए तो ये आपके सेल में मौजूद डीएनए को फाड़ देगी, या सेल को ही फाड़ कर रख देगी।
0: हमारे सन का हीलियोस्फीयर हमारी तरफ आने वाली ज्यादातर कॉस्मिक रेज को डिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन इस मैग्नेटिक प्रोटेक्टिव बबल के बाहर हमारे लिए खतरा होगा। तब शायद कोई स्पेसशिप भी हमारी जान न बचा पाए।
19: खुद को पार्टिकल रेडिएशन से बचाने के लिए केयरफुल रहना पड़ता है। आप सोचेंगे कि लेड की कोई बड़ी सी शीट यूज करके मैं बच जाऊंगा, लेकिन शायद इससे हालात और भी खराब हो सकते हैं।
0: प्लेनेटरी साइंटिस्ट डैन डर्डा एक्सप्लेन करते हैं, ये सेल्स को रिप्रेजेंट करने वाले बलून्स को इस बोर्ड पर लगा रहे हैं।
5: लग रहा है जैसे मैं फ्रैंकेनस्टाइन हूँ, मैं एक एक सेल जोड़कर एक बॉडी असेंबल कर रहा हूँ।
0: आधा इंच मोटी स्टील की प्लेट एक स्पेसक्राफ्ट के प्रोटेक्शन हल को रिप्रेजेंट कर रही है, और एक राइफल बुलेट है एक कॉस्मिक रे की तरह।
5: मैं इस गैलेक्टिक कॉस्मिक रे को हमारे सोलर सिस्टम की तरफ फायर करूंगा, देखते हैं ये हमारे स्पेसक्राफ्ट के साथ क्या करती है।
0: बुलेट जब मेटल से टकराती है तो इसमें से बहुत से श्रैपनल निकलकर बलून्स को लग जाते हैं। कॉस्मिक रेज के साथ भी ऐसा ही होता है।
19: ये छोटे पार्टिकल्स मेटल से टकराने पर उसमें मौजूद एटम से इलेक्ट्रॉन्स को आजाद कर देते हैं, और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स आप पर हमला करते हैं, तो ऐसे में आप एक पार्टिकल का शिकार बनने की बजाय बहुत सारे पार्टिकल्स का शिकार बनते हैं।
5: अगर ये बलून्स आपकी बॉडी के सेल्स होते तो आप भारी मुश्किल में पड़ जाते, क्योंकि जब ये गैलेक्टिक कॉस्मिक रे स्पेसक्राफ्ट को चीरते हुए निकली तो ये यहाँ से एक एटॉमिक लेवल पर बाहर निकली होगी। तो इस एक कॉस्मिक रे से सिर्फ एक सेल ही नहीं फटेगा, ये एटॉमिक श्रापनल आपके कई सेल्स को फाड़ देगा। तो हमने ह्यूमन सेल्स के तौर पर ये जो बलून्स लगाए थे, ये उस सीवियर चैलेंज को दर्शाते हैं जो फ्यूचर स्पेस ट्रैवलर्स को स्पेस में झेलने पड़ेंगे। ऐसे में आप खुद को इन हाई एनर्जी गैलेक्टिक कॉस्मिक रे से कैसे बचाएंगे? आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बॉडी के सेल्स के साथ ऐसा हो।
0: J गैलेक्सी के बीच वाले हिस्से तक पहुंचना नामुमकिन है। यहां कोई नहीं जा सकता। हम लकी हैं कि इसके बीच वाले हिस्से से बहुत दूर रहते हैं और हमें प्रोटेक्ट करता है हमारा सन।
20: शायद आपको ये बात अनफॉर्चुनेट लगे कि हम गैलेक्सी से काफी दूरी पर बसे हुए हैं। हम उसके सेंटर से करीब 30,000 लाइट ईयर्स दूर हैं, लेकिन लाइफ के लिए शायद यही सबसे अच्छी जगह हो।
0: यूनिवर्स के हमारे सफर में अब देखते हैं सबसे खराब जगहों को। ये है एक कॉस्मिक नर्सरी जहां स्टार्स और प्लैनेट्स पैदा होते हैं, लेकिन ये ऐसी जगह नहीं है जहां आपको लोरियां सुनाई देंगी। ये ऐसी जगह है जहां मौत हर वक्त मंडराती रहती है।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
21: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
22: हर घर सूर्य घर।
23: गुला एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
24: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
23: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
25: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
26: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
25: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
26: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
27: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
26: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
27: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
26: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
27: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
28: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
29: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
30: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
29: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
30: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
29: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
30: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
29: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
31: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
32: मैं बनूंगा।
33: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
31: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
33: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
31: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
0: हम स्टार्स को खत्म होते देख चुके हैं और अब हम देखेंगे एक प्लेनेटरी सिस्टम को जन्म लेते हुए। यह है प्लैनेट्स की एक ऐसी खूबसूरत फैमिली जो न जाने कैसे गैस और धूल से एक साथ बाहर आ गई है। भला कौन ऐसी चीज को पास से नहीं देखना चाहेगा? आप, क्योंकि आप यूनिवर्स की इस बेहद खतरनाक जगह में नहीं रहना चाहेंगे। कारण ये है कि किसी प्लैनेट का जन्म काफी खतरनाक इवेंट हो सकता है। प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, हमें इस सिलसिले में एक क्लू मिला जब एस्ट्रोनॉट डॉन पेटिट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपने एक स्टे के दौरान कॉफी और सॉल्ट के ग्रेन्स वाले बैग्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया। उन्हें पता चला कि जीरो ग्रेविटी में ग्रेन्स एक साथ जुड़कर क्लम्प्स बना लेते हैं। इस प्रोसेस के साइज को बढ़ाकर किसी सोलर सिस्टम जितना कर दीजिए और बस आपको क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस साफ साफ नजर आ जाएगा। ये है LKCA-15। ये स्टार 450 लाइट ईयर्स दूर है। इसका मास भी हमारे सन जितना ही है। इसके चारों तरफ धूल और गैस की एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क मौजूद है और इसके अंदर नए प्लैनेट्स बनते रहते हैं।
19: जब प्लैनेट्स के बनने की शुरुआत होती है तो इस यंग स्टार के आसपास काफी मटेरियल होता है और प्लैनेट्स इसी मलबे से बनते हैं। ये मलबा आपस में टकराकर जुड़ता जाता है और इसका साइज बड़ा होता जाता है और फिर इसकी ग्रेविटी मटेरियल को अपनी तरफ खींचती है। प्लैनेट का बनना कुछ कुछ किसी डेमोलिशन डर्बी जैसा है। इन दोनों में काफी बातें एक जैसी हैं। जैसे डर्बी में कार्स एक ट्रैक पर अलग अलग स्पीड पर चक्कर काटती हैं, प्लैनेट्स के साथ भी ऐसा ही होता है। मटेरियल सन का चक्कर लगाता है, ये घूमता रहता है। प्लैनेट्स की स्पीड अलग अलग होती है, एंगल्स अलग अलग होते हैं, ट्रैजेक्टरीज अलग होती हैं। इससे एक मटेरियल टकराता है और इससे एक ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसी तरह प्लैनेट्स का साइज बढ़ता है।
0: दूरी से ये सब खूबसूरत लगता है, लेकिन अगर इसके ज्यादा करीब जाएं, तो तेज रफ्तार वाला मटेरियल आपको घेर लेगा।
19: डस्ट, सैंड के ग्रेन्स, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी चट्टानें भी इस प्रोटोस्टार के चारों तरफ बड़ी तेजी से घूम रही होती है और इनकी रफ्तार होती है 10, 15 या 20 माइल्स पर सेकेंड।
0: आपको लगेगा कि सबसे बड़ी चट्टानें सबसे खतरनाक होती है, लेकिन स्पेस में ऐसा होना जरूरी नहीं।
2: बड़े रॉक्स को देखा जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है। इतने बड़े रॉक्स को स्पेस में ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी किसी चीज को स्पेस में ढूंढना मुश्किल होता है। इसके आने का पता नहीं चलता।
1: तो बेशक स्पेस में होने पर हमें बड़ी चट्टानों से डर लगता है, लेकिन हमें तेज रफ्तार पर चलने वाली किसी छोटी चट्टान से होशियार रहना चाहिए।
0: इस बारे में स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट से पूछिए। जून 2007 में उन्हें स्टेशन के प्रोटेक्टिव हल में करीब 2.5 इंच का एक सुराख मिला। नासा इंजीनियर्स ने बताया कि जिस चीज की वजह से यह सुराख हुआ है, उस स्पेस रॉक का साइज चावल के किसी दाने से ज्यादा बड़ा नहीं था। हजारों टन स्पेस डेब्रीज हर साल अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराती रहती है और इसमें से ज्यादातर जल जाती है। अगर आप अर्थ की प्रोटेक्टिव लेयर से बाहर निकलेंगे तो माइक्रोमीटियोराइट्स का खतरा वाकई बढ़ जाता है।
5: माइक्रोमीटियोराइट्स के इम्पैक्ट्स फ्यूचर स्पेस ट्रैवलर्स के लिए एक बड़ा खतरा है। स्पेस सूट्स को डिजाइन करने और स्पेस में जिंदा रहने के तरीके ढूंढने के सिलसिले में ये हमारी एक बड़ी चिंता है।
4: सैंड के ग्रेन जितनी कोई छोटी सी चीज भी किसी बुलेट की तरह टकराती है।
0: तो स्पेस डेब्रीज के छोटे छोटे टुकड़े भी कैसे डेडली प्रोजेक्टाइल्स बन जाते हैं? प्लेनेटरी साइंटिस्ट डैन डर्डा बताते हैं कि आखिर किसी छोटी सी स्पेस रॉक में भी इतनी पावर कहां से आ जाती है? ये आती है स्पीड से। अब अगर मार्बल साइज की कोई बॉल 40,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से हमारे क्रैश टेस्ट डमी से टकराती है तो वो उसके पार निकल जाएगी।
19: बेसबॉल में ये रूल्स होते हैं कि बैटर को हेलमेट पहनना पड़ता है, क्योंकि बेसबॉल उसकी तरफ 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से आती है और उसके सिर से टकराती है, जिससे वो मर सकता है। अब सोचिए कि ये बेसबॉल 1000 टाइम्स फास्टर स्पीड से आ रही हो, इससे तो बैटर के सिर में सुराख हो जाएगा, फिर भी बॉल स्लो नहीं होगी। ये चीजें इतनी डेंजरस होती हैं।
0: स्टार के आसपास के स्पेस में हर साइज की डिब्रीज होती है।
2: रॉक्स वहाँ स्पिन करते हैं, वो एक दूसरे से टकरा सकते हैं और आपस में चिपक भी सकते हैं। चक के लिए ये एनवायरनमेंट बहुत ही हॉस्टाइल होगा, उसे बार बार जोरदार चोटें लगेंगी।
1: वो तो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा।
19: चक को ऐसी किसी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में रखना ऐसा ही है जैसे उसे सामने से शॉटगन से गोली मार दी जाए। स्पेस में बहुत सारा मटेरियल बहुत तेज स्पीड पर मूव करता है जो उसे टकराकर टुकड़े टुकड़े कर देगा।
2: तो ऐसे में अगर आप यूनिवर्स की सबसे शांत जगहों में से एक में जाने का फैसला करें जहां डेंजरस डेब्रीज मौजूद ना हो तो यहां नजर का धोखा भी हो सकता है, क्योंकि कॉस्मोस की सबसे खाली दिखने वाली किसी जगह में जाना भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। वहां एटम से भी पतली और कई लाइट ईयर्स लंबी कोई चीज आपके टुकड़े टुकड़े कर सकती है।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?

0: वगैरह सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमलश्री में।
1: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
0: आप भी आए कमलश्री कमलश्री कमलश्री बाल मार्केट गोपालगंज।
1: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: अगर हम आसमान पर नजर डालें तो वहां हमें बिलियंस गैलेक्सीज और ट्रिलियंस स्टार्स नजर आएंगे। आपको लगेगा कि इनके बीच की स्पेस बराबर है, लेकिन 2015 में साइंटिस्ट्स ने कुछ बहुत ही स्ट्रेंज चीज देखी।
3: लेकिन हमें बार बार ऐसी चीजें मिलती रहती हैं जिनके बारे में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक ऐसा जायंट एरिया है जो कुछ ज्यादा ही कोल्ड और एम्प्टी है।
4: वहाँ ज्यादा मैटर नहीं है, ज्यादा गैलेक्सीज भी नहीं है, और न ही वहाँ ज्यादा एनर्जी है। हम इन्हें कहते हैं वॉइड्स, और इनमें से कुछ बहुत बड़े हैं। इन्हें कहा जाता है सुपर वॉइड्स।
2: ऐसे ही एक सुपर वॉइड की चौड़ाई है 1.8 बिलियन लाइट ईयर्स। ये आज तक आइडेंटिफाई किया गया सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है। इस वॉइड में 20% कम मैटर है। इसमें उम्मीद से 10,000 कम गैलेक्सीज हैं, यानी इसमें करीब 1,000 ट्रिलियन स्टार्स नहीं है। हम पूरी तरह श्योर नहीं है कि ये सुपर वॉइड कैसे बना। हाँ हम ये जानते हैं कि गैलेक्सीज का लेआउट यूनिवर्स की शुरुआत के टाइम बना था, इसलिए बिग बैंग पर नजर डालना बनता है। या यूं कहें कि यूनिवर्स के बचपन पर, जब इसकी उम्र सिर्फ 380,000 ईयर्स थी। ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की एक तस्वीर है। ये है बिग बैंग के बाद बची हीट का पैटर्न।
5: जब हम माइक्रोवेव बैकग्राउंड के मैप्स देखते हैं तो हमें अलग अलग कलर्स नजर आते हैं, रेड और ब्लू। ये रियल कलर्स नहीं है, ये आर्टिफिशियल कलर्स हैं जिन्हें हमने ये बताने के लिए यूज किया है कि कहाँ टेम्परेचर एवरेज से ज्यादा गर्म और उससे थोड़ा ठंडा है। ज्यादा नहीं, बस 10,000 का एक पार्ट।
2: जो हिस्से थोड़े ज्यादा वार्म लगते हैं उनमें थोड़ा ज्यादा मटेरियल था। इनसे गैलेक्सीज के अलावा आज हमें यूनिवर्स में दिखने वाले सारे स्ट्रक्चर्स बनने वाले थे। कोल्डर रीजन्स में मैटर कम था तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं बने। ऐसा माना जाता है कि ऐसे कुछ कम डेंस एरियाज से सुपर वॉइड्स बन गए। बेशक ये वॉइड्स क्वाइट है, लेकिन इनमें से कुछ बहुत ही अजीब फेनोमेना हो सकते हैं, किसी कॉस्मिक स्ट्रिंग जैसे।
4: लेकिन ये एक्सप्लेनेशन थियोरेटिकल है, हमें नहीं मालूम कि ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, लेकिन जब यूनिवर्स यंग था तो वॉइड्स बन भी सकते थे।
2: माना जाता है कि जब सुपर हॉट सुपर डेंस इन्फेंट यूनिवर्स ठंडा होने लगा तो इससे टाइम और स्पेस के फैब्रिक में क्रैक्स आ गए। ये क्रैक्स थिन और डेंस है।
6: ये कॉस्मिक स्ट्रिंग्स बहुत ही अजीब चीज है। ये वन डायमेंशनल है और बहुत ही भारी है।
2: माना जाता है कि ये प्रोटॉन से भी पतले हैं, मगर बहुत डेंस है। सिर्फ 10 माइल्स लंबी किसी कॉस्मिक स्ट्रिंग का वेट अर्थ से भी ज्यादा हो सकता है।
6: अब जरा सोचिए कि किसी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में कितना मास और एनर्जी होगी। इसे यूनिवर्स में मौजूद सबसे शार्प सबसे पावरफुल नाइफ कह सकते हैं।
2: तो अगर हमारे क्रैश टेस्ट डमी चक का सामना किसी कॉस्मिक स्ट्रिंग से हो जाए तो क्या होगा?
5: एक कॉस्मिक स्ट्रिंग किसी कॉस्मिक लाइट सेबर जैसी होती है। ये प्योर एनर्जी का एक वन डायमेंशनल पाथ है जो उसे दो हिस्सों में काट देगा।
2: कॉस्मिक स्ट्रिंग्स स्पेस पर बड़े अजीब असर डालती है। वो टाइम और स्पेस को ट्विस्ट और डिस्टॉर्ट कर देती है। चक को बीच से काटने के बाद ये स्ट्रिंग उसके सिर और पैरों को एक साथ ला देती है।
6: जब चक इस सुपर पावरफुल कॉस्मिक स्ट्रिंग का सामना करता है तो शायद उसे स्पेगेटिफिकेशन की ऑपोजिट फीलिंग होती है, बिल्कुल पैनकेक बनने जैसी।

0: सुपर वॉइड लार्ज और कोल्ड है और वहां मैटर भी कम है। हमारी फाइनल लोकेशन इससे बिल्कुल उल्टी है। ये कॉम्पैक्ट है, हॉट है, वायलेंट है और स्टफ से भरी है। ये वो जगह भी है जहां कॉस्मोस की हिस्ट्री में सबसे वायलेंट बैटल हुई है, यानी सब कुछ क्रिएट करने की बैटल।
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97070675।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: यूनिवर्स में जो जगह सबसे वर्स्ट है वो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम है। यहाँ जन्म हुआ टाइम और स्पेस का। ये है बिग बैंग। ये यूनिवर्स वंडर से भरा हुआ है और ये सब एक्टिव हुए थे इसके एग्जिस्टेंस के पहले सेकेंड के दौरान। लेकिन ये सब एक साथ नहीं हुआ। पहले मैटर को अपने सर्वाइवल की लड़ाई जीतनी थी।
6: जब यूनिवर्स का जन्म हुआ तो इसने उन जगहों को ऑक्यूपाई किया जिन्हें हम कहते हैं प्राइमोर्डियल फायरबॉल।
0: इस सीन का अंदाजा लगाइए। यहाँ इंटेंस हीट है, इंटेंस प्रेशर है। विजिट करने के हिसाब से ये जगह बहुत बुरी होगी। रेडिएशन आपको क्रश करके भून देगा। लेकिन सिचुएशन और बुरी होगी। मैटर के पार्टिकल्स के बीच होने वाली बैटल इस यूनिवर्स के फ्यूचर को तय करेगी। आइंस्टाइन की इक्वेशन E=MC² हमें बताती है कि एनर्जी मैटर बन सकती है और इस अर्ली यूनिवर्स में ऐसा ही हुआ होगा। मैटर के प्रिमिटिव पार्टिकल्स का जन्म हुआ होगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। यह मैटर दो रूपों में होता है, रेगुलर मैटर और एंटी मैटर। हम जानते हैं कि मैटर क्या होता है, ये हमारे चारों तरफ है, लेकिन ये एंटी मैटर क्या है?
7: एंटी मैटर उतना मिस्टीरियस नहीं है जितना लोग इसे मानते हैं। एंटी मैटर नॉर्मल मैटर है, बस इसका चार्ज ऑपोजिट है। इसमें प्रोटॉन्स हैं और एंटी प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है। एंटी प्रोटॉन को पाना पॉसिबल है और किसी एंटी प्रोटॉन में किसी प्रोटॉन का ऑपोजिट चार्ज होता है।
0: एंटी मैटर अपने आप में डेंजरस नहीं होता, लेकिन जब ये मैटर के कांटेक्ट में आता है तो सिचुएशन बदल जाती है।
8: आखिर में होता ये है कि अगर आपके पास मैटर और एंटी मैटर हो और आप उन्हें साथ में ले आएं, तो वो एक दूसरे को खत्म करके खुद को प्योर एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे।
7: ये परफेक्ट एग्जाम्पल है E=MC² का, आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन का। आप किसी एक पार्टिकल का मास लीजिए, दूसरे पार्टिकल का मास लीजिए, फिर इन्हें मिलाइए, और क्योंकि ये मैटर और एंटी मैटर है तो ये प्रोड्यूस करेंगे प्योर एनर्जी।
0: इन्फिनिट यूनिवर्स मैटर और एंटी मैटर का एक बैटलफील्ड था जिसमें इन दोनों ने एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश की। इससे एक सवाल पैदा होता है कि फिर यूनिवर्स मैटर से कैसे बन गया, हर चीज डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो गई?
9: अगर मैटर और एंटी मैटर दोनों की क्वांटिटीज एक सी ही थी तो वो अर्ली यूनिवर्स में ही खत्म हो गए होते, क्योंकि मैटर पार्टिकल्स और एंटी मैटर पार्टिकल्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसे में सिर्फ प्योर रेडिएशन बचा होता। कमाल की बात यह है कि जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं उसमें हमें हर कहीं मैटर के पार्टिकल्स ही नजर आते हैं।
0: यानी अर्ली यूनिवर्स में मैटर और एंटी मैटर के बीच एक इम्बैलेंस मौजूद रहा होगा।
6: यूनिवर्स के पैदा होते वक्त उसमें मैटर और एंटी मैटर की क्वांटिटी बराबर थी, लेकिन एंटी मैटर के हर बिलियन पार्टिकल्स के मुकाबले मैटर के पार्टिकल्स बिलियन प्लस वन थे।
0: पूरे कॉस्मोस को बनाने के लिए बस इतना छोटा सा डिफरेंस ही काफी था। हम जानते हैं कि एंटी मैटर ने मैटर का करीब करीब सफाया कर दिया था, तो अगर हमसे एंटी मैटर का कोई पार्टिकल टकराता है तो क्या हमारा भी सफाया हो जाएगा?
9: एंटी मैटर साइंस फिक्शन की चीज है क्योंकि ये मैटर को खत्म कर देता है। लोग अचानक ये सोचने लगते हैं कि अगर इस कमरे में एंटी मैटर का एक पार्टिकल आ जाए तो फिर ये मैटर के किसी पार्टिकल को फौरन खत्म कर देगा, लेकिन असल में ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। इससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत ही थोड़ी होगी,
0: तो हम सेफ हैं अगर एंटी मैटर थोड़ा सा हो। लेकिन अर्ली यूनिवर्स में सिचुएशन एकदम अलग थी, तब ये मैटर बहुत सारा था, और अगर चक एंटी मैटर के किसी क्लाउड में चला जाता तो उसका खेल खत्म था।
9: अगर चक को इतने ज्यादा एंटी मैटर वाले एनवायरनमेंट में डाल दिया जाता तो उस वक्त क्या होता? ऐसे में उसकी बॉडी का हर पार्टिकल किसी एंटी पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करके प्योर रेडिएशन में बदल जाता और चक एक मैसिव लाइट के साथ खत्म हो जाता। चक ट्रांसफॉर्म हो जाता एक लाइट बीम में।
0: आज हमने सफर किया सबसे खराब जगहों का, हमने देखी सबसे खराब चीजें जो मौजूद है यूनिवर्स।
10: हमारे यूनिवर्स में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो लगती तो हैं साइंस फिक्शन, लेकिन ये बेस्ड है रियल साइंस पर।
11: वहाँ मौजूद हर चीज आपकी जान ले सकती है। डस्ट आपको मार सकती है, स्टार्स एक्सप्लोड हो सकते हैं, स्टार्स की गर्मी आपकी जान ले सकती है, ब्लैक होल्स की ग्रेविटी, रेडिएशन, ये सब चीजें बहुत डेंजरस हैं। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या अर्थ पर रहना ज्यादा सेफ नहीं है? देखिए, शिप्स हार्बर में ज्यादा सेफ रहते हैं, लेकिन वो वहाँ खड़े रहने के लिए नहीं बने होते।
6: स्पेस में बहुत ज्यादा खतरे हैं, तो मैं यहाँ अर्थ पर ही रहकर खुश हूँ, लेकिन अगर एलियंस अपनी स्पेसशिप के साथ यहाँ आ गए तो मैं यहाँ से निकलना चाहूँगा।
0: पर अगर डेंजरस स्पेसेस ना होते तो हम भी यहाँ ना होते। हमारा यूनिवर्स सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि बिग बैंग की तबाही में मैटर ने एंटी मैटर को हरा दिया, और हम सिर्फ इसलिए जिंदा हैं क्योंकि एक सुपरनोवा एक्सप्लोड हुआ था जिससे फैले मटेरियल्स से प्लैनेट्स बने और हम बने। तो यूनिवर्स कुछ देता भी है और कुछ लेता भी है।
10: स्पेस एक बहुत स्केरी प्लेस लग सकती है, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि अगर सुपरनोवा ना होते तो हम भी यहाँ ना होते। तो बेशक हमने इन चीजों को एक्सपीरियंस नहीं किया है, दे रियली आर जस्ट हाउ द यूनिवर्स वर्क्स।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
13: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
14: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम हर

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
0: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
8: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
8: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87-894-18744।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ऑनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 अमर जेड पर।

0: लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। घर सूर्य घर।
3: अब बेटा बहु घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97 0 97 0 6 575।

0: करूं। अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
0: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99556-97644।

डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974-34468 पे।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 9779-714-86164।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: ये सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़ और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर,

0: नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 9289225567 या 9774186164।

0: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: कब भौजी? आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं भी बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में।
6: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 अमर जेड पर।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल की सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: ऑलराइट।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 अमरजैट पर।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 अमरजैट पर।
8: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
9: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
8: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
9: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
8: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
8: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
9: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
10: All right.

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिन 90.4 आमजेड पर।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493945651 या 9790065075।
0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिन 90.4 आमजेड पर।
11: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
12: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
11: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
12: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 9939966999।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
13: ऑलराइट।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 अमरजैट पर।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 अमरजैट पर।
5: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
6: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
7: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
6: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
10: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
10: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
10: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
12: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्वीन?

0: इस कॉन्टेस्ट का विनर
1: मैं बनूंगा,
2: मैं बनूंगा, मैं भी बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 029 94 921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 अमर जेड पर।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746164।
2: प्रसाद क्लिनिक।
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंड स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 91555485507 या 91629335388।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर हर महादेव।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की

0: खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,54 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
7: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9939365923।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
11: ऑलराइट।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714-86164।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
5: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8009294921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 AMZ पर।
2: नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
3: बोलबम हर हर महादेव।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
5: ऑलराइट।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
9: ऑलराइट।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए

0: लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
1: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87894 18744।
4: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
9: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
10: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
9: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
10: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
9: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान लिया।
10: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा।
11: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
12: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड गोपालगंज।
13: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमजेड पर।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
3: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 91629-33358।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम हर हर महादेव।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
7: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद
9: framework of a potential agreement had been reached. In badminton, Tanvi Sharma claims her maiden BWF World Tour title at Taipei Open, and in Commonwealth Games, India enters the final day with fourth place in medal tally. And with that, we end the midday news.
10: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath main Munish Sharma. मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइवे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
11: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
10: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
11: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए।
10: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
11: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
10: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाए नहीं।
11: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं। जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
10: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 8 अन्य लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरल केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
10: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
12: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 NDRF और 33 SDRF टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
10: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
13: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है, क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
10: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की 6वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में 3 भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इशरूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
14: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लंबूरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंघास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोमन राणा ने पुरुषों के F57 पैराशॉट पुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ 4थे स्थान पर है।
10: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्रध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ 4थे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
15: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
16: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
17: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
16: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
17: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
18: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
19: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
20: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
19: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
20: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
21: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
22: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
23: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
24: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

हेलो नमस्ते प्रणाम नमस्कार कैसन बानी रउआ सबे। उम्मीद करते नहीं रउआ सबे ठीक होके हम है रउआ सबके दोस्त भारती और रउआ सब सुनते नहीं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इस समय हो गई बार रउआ सबे के कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस के तर ट्रेन निकल चुकल बिया। यदि रउआ सबे सवार होके के चाहते हैं तो हमार नंबर हवे व्हाट्सएप नंबर हवे 9852782191। और ये कॉल के माध्यम से जुड़े के चाहते नहीं तो नंबर बा 7277166696। तो बिना देरी के लिए कार्यक्रम के शुरू कर जाऊँ और ये हमारे तरफ से पवन सिंह की आवाज़ में रवा सभी के एगो प्यारा सा गीत। तो चलिए बिना देरी के लिए गाना प्ले करते नहीं सुनत रहें सबके हूँ।

तब बिना देरी के लिए बढ़ल जाइए आगे की तरफ। और रुवा सभी हमके बताएं कि पवन सिंह के आवाज में तोहर गलिया के डिम्पल कैसे लागल है सॉन्ग। और एक साथ हमारे पास अगला मैसेज पहुँचल बावे जे कि मैसेज करत हैं धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत बा रहो। और ये लिखत हैं कि भारती जी नमस्कार, हम भोजपुरिया एक्सप्रेस में जुड़ गई बानी और ये गाना के लिंक भेजत हानी, एकरा के बजा देम, हमार प्यारी भतीजी के आज जन्मदिन है। तो बहुत बहुत स्वागत पा। और ये रउआ भतीजी के हमनी के तरफ से जन्मदिन के बधाई। और ये लिंक के माध्यम से गाना पहुँचल बा और लिखत हैं कि शुरुआत में तहलका मचा दनी भारती जी, तो खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और गाना के लिंक पहुँचल बा, जन्मदिन के बधाई पे सॉन्ग बा, तो चलिए गाना प्ले करते हैं और इन्जॉय कर सभी के साथ।

तो अभी हमने की सुननी आसान दिनेश मिश्रा जी की तरफ से जन्मदिन की बधाई पे बहुत ही खूबसूरत से सॉन्ग, और यही के साथ बढ़ल जाइए अगले मैसेज की तरफ। और हमने के पास अगला मैसेज पहुँचल बावे जे कि लिखत है कि भारती जी नमस्कार, रोवा कैसन बानी, टाइम पे भेजले बानी, सुना दी कृपा की करी। और ये मैसेज करे वाला बानी दिलीप राम दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत बा रोवो। और ये लिखत है कि समय से उपस्थिति लगा दी, ध्यान रखी गाना पे। तो चली रोवा गाना पे ध्यान रखल जाता, और बिना देरी कैले गाना के जन फरमाइश बा लिखत है गाना के बोल बा रेलिया रे चल सांवरिया के गांव। तो चलिए बिना देरी कैले राउत प्यारा से गाना प्ले करते नहीं और इन्जॉय करी सभी के साथ।

0: अब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
6: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
5: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: छोटे से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बा रउआ सबके भोजपुरिया एक्सप्रेस में, और रउआ सब सुनतनी रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तब रउआ सबे अगर हमसे जुड़े के चाहता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91, और कॉल के जरिए जुड़े के चाहते हैं तो हमारा नंबर बा 72 77 16 65 96। तो बिना देरी कैले आगे बढ़ल जाओ, और हमारा पास बहुत सारा मैसेज पहुँचल बा, एक साथ हमारे पास कॉल भी कॉल के माध्यम से फरमाइश आएल बा। तो चलिए ले तनी कॉल और सुन तनी का बा इनकर यहाँ के फरमाइश। हेलो जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: हम थाना से बोल रहे हैं, रामाज प्रसाद।
0: का हाल बा?
1: हाल चाल ठीक बा, दिनों आज ठीक भइल बा।
0: दिन भी ठीक भइल बा।
1: मंजारी बोल रहे हैं, तो सुपर और उस तारीख के नाम पता है रिमझिम बक्सा का, तो रोटी होता नाम

0: गाना कौन सा, गाना कौन सा सुने के बाद
1: बताओ था।
0: राव आवाज कट कट किया होता, सुनात नहीं थे। हेलो, समझ में नहीं आप का कहो, तनी आवाज रउर कटत हवे, तनी बेटा ड्राइवर बाप खलासी। और ये सुना हूँ के बाकी हो के
1: अपना मन करे अपना नाम लिख बजरंग सिंह डाल।

0: टिकट टिकट
1: खाली टिकट में काटिएगा कि बैठेबो करिएगा।
0: अरे बैठिए ना माता जी, आपको कुछ बोल रहे हैं।
1: हम माता जी दिख रहे हैं आपको।
0: अरे तो भाभी जी समझिए ना।
2: अरे बाबा हमरो टिकट बता दो ना।
0: अरे दे रहे हैं ना, काहे हबड़ा रहा है।
3: 2 रुपया कम है, रख लीजिए ना।
0: हाँ तो डीजलवा तोरा बाबूजी के पेट्रोल पंप से आएगा कहो।
1: आए बाबा काहे इतना ऐठो हूँ।
0: हाँ तो रेट लाओ ना भाई।
4: ए पप्पा ध्यान से भाड़ा वसूलिया, दिन भर के रोजी रोटी हो।
0: बाग बुड़ बग तू गाड़िया चलाओ ना, हम इधर असूल रहे रे।
3: देखिए सीट बहुत छोटा रखे हैं आप, कितना दिक्कत हो रहा है बैठने में।
0: अरे तो थोड़ा एडजस्ट करो।
1: कितना एडजस्ट करें?

0: कहीं और मत पहुंचा दीजिएगा।
1: अरे जहाँ का भाड़ा दिया है वहीं तक न पहुँचाएंगे, मारे साले लपड़।
2: हे बाबा इतना काहे फड़कत हुआ।
1: अरे तो भाड़ा कौच रहे हैं, साला बीपी बढ़ाता है।
3: ठीक से बैठिए जी, धकिया।

0: मन मत बोलो, चलाने दे रहा यार, डिस्टर्ब करती है।
1: अरे ड्राइवर साहब तो धीरे चलाइए, बड़ी डर।
2: तो अभी हमने के सुननी आसन बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग रामा जी के तरफ से, बेटा ड्राइवर बाप खलासी। तो यही के साथ बढ़ल जाऊँ आगे की तरफ, और ये हमनी के पास मैसेज पहुँचल बा। लिखत है नी कि भारती जी नमस्कार, बन्नू शाह और ये हम दुबई से रेडियो रिमझिम भोजपुरी एक्सप्रेस प्रोग्राम सुन रहल बानी, और हमके एक गाना सुने के बाद सुना देम। और लिखत है नी कि बोल बम के सॉन्ग बजा सकत हनी का, और हमसे गाना है बा हमसे भांग ना पिसाई। तो भारती जी हमरो मैसेज के ध्यान दी, तो बहुत बहुत स्वागत बा। और हम बता दे रहे कि बोल बम के गाना तो नहीं बजा सकत, दोसर गाना के फरमाइश करी तो जरूर बजा देम। और एक के साथ ही हमारे पास अगला मैसेज पहुँचल बा विपुल सिंह जी के, जो कि गोपालगंज के रहे वाला बानी, और ये लिखत हनी अंश अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी, और भारती जी सुना दी आज गाना दो दिन बाद हमारे मैसेज के शामिल कैले बानी। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी, और यही के साथ ही हमारे पास अगला फरमाइश पहुँचल बा, जैकि लिखत है नी कि हेलो मैम सरफलोर, सरफरोज अली टोला से गाना सुने के बाद धरती पे चांद उतरल बा पवन सिंह के आवाज़ में। तो चलिए बिना देरी के लिए पवन सिंह के आवाज़ में ही खूबसूरत सा सॉन्ग प्ले करते नहीं, तो एंजॉय करी सभी लोग।

0: था। अभी हमने के सुनी असन सरफरोज जी के तरफ से बहुत ही खूबसूरत से गाना पवन सिंह की आवाज में धरती पे चांद उतरल बा। तो एक ही साथ बढ़ल जी अगला मैसेज के तरफ। हमरा पास अगला मैसेज पहुंचल बा जे कि लिखत है कि हेलो भारती जी, कैसे हैं आप और मेरा गाना भी बजा दीजिएगा। और गाने के बोल हवे राइफल के नोक पर और कोटा राजस्थान से कपिल विश्वकर्मा जी जुड़ चुकल बा। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और एक के साथ हमारे पास एक और मैसेज पहुंचल बा जो कि लिखत है कि बहुत बढ़िया सॉन्ग पवन सिंह के। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और नाम जरूर हमरा के बताई लो कि रउआ के बोलते नहीं और कहाँ से बानी। और एक के साथ ही हमारे पास अगला मैसेज पहुँचल बा जो कि लिखत है गुड आफ्टरनून मैम, और हम दुर्गेश आजमगढ़ से। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचल बा जो कि लिखत है कि हम नैन अंसारी जमतारा से। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यही के साथ है बढ़ल जी अगला फरमाइश की तरफ। और ही हमरा पास अगला फरमाइश पहुंचल बा जे कि लिखत है कि भोजपुरिया प्रणाम सोनी मैम एंड भारती मैम, हम दिलीप कुमार ठाकुर मिर्जापुर से मोहल्ली पंजाब से आज हमरो गाना के फरमाइश बजा दे। और लिंक के माध्यम से गाना के फरमाइश पहुंचल बा। और लिखत है कि सब दोस्त लोग के डेडिकेट बा गाना। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और गाना के नाम है हरदम करे जे विपतिया में मददिया। तो चलिए बिना देरी कहले गाना के प्ले करते नहीं और एंजॉय कर जान सभी के साथ है।
1: जो हमारे सुख में तो सदैव हमारे पीछे चले, पर जब जीवन में दुख

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
7: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9939365923।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

0: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बरुआ सभी के भोजपुरिया एक्सप्रेस में और रुआ सब सुनत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तब बिना देरी के लिए आगे बढ़ल जाओ और हमारे पास यहाँ बहुत सारा मैसेज पहुँचल बा। तो हमारे पास मैसेज पहुँचल बा जेकि लिखत नहीं सॉन्ग आपसे आपसे पहले ना आपके बाद ना कोई ना आया। तो बहुत बहुत स्वागत बरुआ। और यहाँ हमारे पास अगला मैसेज पा जाके लिखत है नहीं कि धन्यवाद भारती मैम गाना बजावे खातिर तहे दिल से धन्यवाद प्रणाम। तो बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ यही के साथ हमारे पास अगला मैसेज पहुँचल बा जेकि लिखत है नहीं हाय नमस्ते मैडम जी। तो एक बार फिर से बता दें कि हम तो रुआ के नहीं खी जाना। तो अपन नाम यहाँ लिखल बा रंजीत कुमार लकड़ी दरगाह से जुड़ चुकल बानी। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यही के साथ बढ़ल जाइए अगले मैसेज के तरफ। और ये हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचल बा जेकि लिखत है नहीं मुन्ना खान जुड़ चुकल बानी गाना के साथ है। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और ये हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचल बा। तो चली लेता नहीं कॉल और सुना तनी कहाँ बा यहाँ के फरमाइश। हेलो
1: नमस्कार।
0: नमस्कार बहुत बहुत स्वागत बा रेडियो रंजिम 90.4 FM में।
1: हम मोहम्मद सिराजन बात करते हैं तुम को राज करा से रंजी।
0: हाँ जी बता दी कौन सा गाना सुने के बाद।
1: गाना सुने के बाद उनके रोज नया नया आशीर्वाद मिलेला देखे देखे लोग उनके घर मिलेला।
0: रोज नया नया
1: आशीर्वाद मिलेला
0: आशीर्वाद मिलेला
1: अभिवाद।
0: अच्छा और गाना क्यों के सुना हूँ के बा
1: आपके और जितना भी लोग सुनने वाला सबके
0: जी। तो चली रहा और गाना प्ले कर दे लेबानी सुनत रही सबके साथ
1: जी। धन्यवाद
0: रेडियो रंजन 90.4 FM में कॉल करे खातिर आप बहुत बहुत धन्यवाद।

तो अभी हमने के सुनी असन दफा सॉन्ग भोजपुरी में और एक साथ बढ़ल गई आगे की तरफ। और ये हमारा पास यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत आने कि मोतिहारी से पुट्टू भाई कल हमारा बेटी के शादी के सालगिरह बा, हमारा तरफ से मुबारक बोल दें। तो और गाना के फरमाइश पहुँचल बा तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और एक साथ हमारा साथ जुड़ल बानी लिखत नहीं राधे राधे जी, भोजपुरी गीत समझ नहीं आ रहा था पर फिर भी बढ़िया चल रहा था। बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और मैसेज करे वाला बानी गुरु नानक पूरा बठिंडा पंजाब से, किशोरी सबलिनिया, सवित्री सबलिनिया, सुमन सबलिनिया और बेटी अंशु के साथ जुड़ गई बानी। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यही के साथ हमारे पास अगला फरमाइश पहुँचल बा जे कि लिखत हैं कि अस्सलाम वालेकुम भारती जी, हम निजामुद्दीन सऊदी अरब से हम गाना के लिंक भेज दिले बानी, हम बहुत देर से ऊपर में पड़ल बा लेकिन हमार मैसेज के ध्यान ना देनी पापा जी हम बाहर जाते नहीं, पा जी हम बाहर जाते नहीं, तनी जल्दी गाना बजा दी। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और गाना रौरो बाजी लेकिन हमारे पास एक और एक पहले फरमाइश पहुँचल बा जे कि लिखत है कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, आज हमरो के गाना सुने के बा और सुना देम जी हम। और लिखत है का हाल बा और मैसेज करे वाला बानी सुहाना फ्रॉम सासा मूसा से। और ये कहत नहीं गाना के बोल बा कि दिल के केवाड़ी पवन थी खेसारी लाल के आवाज़ में गाना सुने के बाद। तो चलिए बिना देरी के लिए गाना के प्ले कर जाओ और सब लिसनर लोग के डेडिकेट बात गाना के प्ले करते नहीं एंजॉय कर जाओ सभी के साथ ही गाना के।

और यहाँ सुहाना जी की तरफ से शुक्रिया के मैसेज पहुँच गए बा और लिखा था नहीं कि आपकी आवाज दिव्या जी से मिला था और ये कहीं आप उन वहाँ के सिस्टर तो ना है तो ना ऐसा बात नहीं है। एंजॉय

अभी हमने के सुननी सन सुहाना जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत से सॉन्ग खेसारी लाल की आवाज़ में, और गाना के बोल रहला दिल के केवाड़ी केहू खटखटा होता। तो एक साथ बढ़ल जाओ अगला मैसेज के तरफ, और ये हमने के पास अगला मैसेज पहुँचल बा कि लिख रही हैं सुहाना जी की, अच्छा ऐसा लगता है कि कोई अगला जन्म का रिश्ता होगा, हो सकता है। और इसी के साथ हमरा पास अगला मैसेज पहुंचल बा, जाके लिखे तनी कि मुकेंद्र कुमार कुशवाहा बंजारी से अभी दुबई से गाना सुना तनी, और ये गाना के लिंक पहुंच गए बा, और लिखे तनी कि गुड सॉन्ग बा। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके, और एक साथ हमरा पास अगला फरमाइश पहुंचल बा जे कि लिखा था नहीं कि भारती जी नमस्कार, हमार गाना बजा दी। और मैसेज करे वाला बानी बन्नू सा, और गाना के बोल बावे कोको कोला सॉन्ग खेसारी लाल की आवाज़ में। तो चलिए बिना देरी के लिए गाना के प्ले करते नहीं और इंजॉय कर जाए सबके साथ है।

0: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042434।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
9: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
10: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाएं और बन जाएं कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12-1 के बीच 8029-94921 पे,
6: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
9: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमा जैक पर।

ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बा रउआ सभी के भोजपुरिया एक्सप्रेस में और रउआ सभी सुना तनी रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तब बिना देरी कैले बढ़ल जाऊँ आगे की तरफ और हमरा पास यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा तनी कि तनी जल्दी प्ले कर दी गाना। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और मैसेज करे वाले बानी मुकेंद्र कुमार कुशवाहा जी बंजारी से। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ बहुत ही खूबसूरत से लाइन पहुँचल बा जैकि लिखत है नी कि मैडम क्लास में जो बेवकूफ़ हो वो खड़ा हो जाए और पप्पू मासूमियत से खड़ा हो गया। और मैडम क्या तुम बेवकूफ़ हो? पप्पू नहीं मैडम, आप अकेली खड़ी थी इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। तो बहुत ही प्यारी सी लाइन है। और इसी के साथ बढ़ल जी आगे की तरफ और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचल बा जैकि लिखा थे नहीं कि नैन टेलर शिवरापुर से और हमारा भोजपुरी गाना सुने बा और गाना के लिंक के जब गाना के बोल पहुँच चुकल बा और लिखा था नहीं कि गाना के बोल बा तीन थान गहना फ्री बा। तो चलिए बिना देरी के लिए पवन सिंह के गाना प्ले कर जाऊँ और एंजॉय कर जाऊँ सबके साथ ही खूबसूरत से गाना।

0: चल।
1: तभी हमने के सुना त्रिनिया सन पवन जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत से गाना तीन थन गहना फ्रीवा और एक ही साथ ही बढ़ल जी आगे के मैसेज की तरफ। और ये हमारा पास यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत है कि नमस्कार भारती जी, पवन शाह ग्राम मरिया का गरिया बिहार गाना सुने के बाद तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके। और गाना के बोल बा तू मरद नहीं माथा के दर्द हुआ राजा जी। और एक साथ हमारा पास अगला मैसेज पहुँचल बा जी की लिखत है कि नमस्ते मैम, संजय यादव दुबई से गाना सुने के बा और ये गाना सुना दी तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और लिखत है कि अच्छा गाना बा मैम, अच्छा गाना चलता तो बहुत बहुत धन्यवाद। और गाना के लिंक पहुँचल बा तो गाना के लिंक बावे बिंदिया बुलावता तो बहुत ही खूबसूरत गाना के फरमाइश पर चली गाना के प्ले करते नहीं और इन्जॉय कर जाऊँ सभी के साथ है।

0: तो अभी हमने के सुनत रहनिया सब बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग बिंदिया बुलाओ था। तो एक साथे बढ़ल जाइए अगला फरमाइश के तरफ। तो हमरा पास यहाँ फरमाइश पहुँचल बा कॉल के माध्यम से, तो चली ले तनी कॉल और सुनत तनी का बा यहाँ के फरमाइश। हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत बरोबर रेडियो रमजिम 90.4 FM में।
1: सलाम अलैकुम मैम।
0: वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, हमारे तो ठीक बरोबर बताई।
1: ठीक बा, ठीक बानी।
0: हम ठीक बानी। बता दी कौन सा गाना सुने।
1: गाना सुनवा दी खेसारी काल के।
0: गाना के बोल बता दी।
1: तो पहले कोई आई नहीं, गाना नहीं के।

0: पहले और कोई दिल में हमारा
1: प्यार परसों के कल ना रहे,
0: तो से पहले कोई दिल में हमारा कल ना रहे।
1: और गाना क्यों के सुना हो के बा
0: और अगर सुन ले जितना लोग रखना तो सब कोई सुनी
1: तो चलिए राव गाना प्ले कर दे लवानी, एंजॉय करत रही रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
0: नमस्कार
1: नमस्कार।

0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बा रउआ सबके भोजपुरिया एक्सप्रेस में। और रउआ सब सुना तेन रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो बिना देरी के लिए अगला मैसेज के तरफ बढ़ल जाऊँ। और हमरा पास यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत नहीं दिनेश कुमार मिश्रा जी लिखत नहीं प्यार काल परसों के भइल ना रहे, बहुत बढ़िया सॉन्ग भारती जी अगर गुनगुना देती तो और ही मजा आ जाए। तो मैसेज के लिए मैसेज करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और एक के साथ ही हमारे पास अगला फरमाइश पहुँचल बा जे कि लिखत है नहीं कि नमस्कार प्रणाम, हम धर्मेंद्र सानी समस्तीपुर से तो जुड़ गई बानी और हमके आज गाना सुने के बा और गाना के बोल बा कि दिल देबू तोरा अचरा में लेके चली जाम ससुरा। और इस सिंगर के नाम बा बंसीधर चौहान। तो बिना देरी के लिए चली गाना के प्ले करते नहीं और इन्जॉय कर जाऊँ सभी के साथ है।

0: अभी हमने के सुना त्रिनियासन बहुत ही खूबसूरत से गाना दिल देव तुरा अचरा में लेके चल रही हन ससुरा में। तो यही के साथ है बढ़ल जाइए अगला फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ बहुत सारा फरमाइश पहुँचल बा। लिखा तनी गुड आफ्टरनून, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ एक और फरमाइश पहुँचल बा जे कि लिखा तनी कि अस्पताल अस्सलाम वालेकुम, हम नौशाद अली मोतिहारी जिला से भोजपुरी में हम कोनो फिल्म के कवाली सुना दी। और ये फिल्म भोजपुरी कवाली और तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यही के साथ ही हमारे पास अगला फरमाइश कॉल के माध्यम से पहुँचल बा। तो चलिए बिना देरी के लिए गाना के प्ले गाना के सुन जाओ का बा फरमाइश। हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत बराबर रेडियो रेमझिम 90.4 एफएम में।
1: हम कमरान रफी विलेज पुखरी सुल्तान फिलहाल दिल्ली में बनी।
0: हाल चाल तो ठीक बार रहो, बताए रहो कैसे बनी।
1: हम लोग ठीक बात समोल जाके कब से बॉल लगा होता।
0: अच्छा तो बता दी कौन गाने के फरमाइश बा आज। बता दी ना भुलाए नहीं की और गानों भी तो बजाए हुआ है, वो तो लिखे पड़ी।
1: और गुड़िया परवीन अभी हमीमा साजिया आयशा अफरीन अख्तारी अहमद अली सदीना सबा सिद्दीकी सिद्दीकी आयशा रामी हरकुआन भास्कर बज्जू दिनेंद्र उमा शंकर मुकेश उत्तम सोनी दिलीप राम और कितना लोग सुना था समीर आलम गुलाम हुसैन शाहजहाँ सबके साथ सुना दिया।
0: चलिए तब राव गाना प्ले कर दिलवानी, सुनत रही रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
1: ओके नमस्कार
0: नमस्कार।

तो अभी हमने के सुना त्रिनिया सिंह शिल्पी राज की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग नीली नीली अखियाँ में कई देलू जादू। तो इसी यही के साथ बढ़ल जाइए आगे की तरफ। और ये हमारे पास यहाँ बहुत सारा फरमाइश पहुँचल बा और लिखत है नहीं कि भारती जी पवन शाह बहुत बहुत स्वागत बा आपके। और लिखत है नहीं हम लोग गाना बजा दिया और गाना के बोल बावे तू मरद नहीं माथा के दर्द हुआ राजा जी। तो चलिए बिना देरी कर ले गाना के प्ले कर जाओ और इन्जॉय कर जाओ सभी के साथ।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए

0: हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
7: छोटा से ब्रेक के बाद रुवा सभी के फिर से स्वागत भाई और भोजपुरिया एक्सप्रेस में। और रुवा सब सुना तनी रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तब बिना देरी के लिए बढ़ल जाओ आगे की तरफ। और ये हमारे पास यहाँ बहुत सारा मैसेज पहुँचल बा जो कि लिखा तनी कि हेलो, हाय भारती जी, भोजपुरी में प्रणाम, और बा हमार गाना सुनवा दी, कहें कि सब केहू गाने के बोल बा, कहे के तो सबके हुआ अपन अपन कहाए वाला के बा। और ये बहुत ही बढ़िया गाने के साथ जुड़ल वानी, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके। तो चलिए बिना देरी के लिए और वह गाना के प्ले करते नहीं और एंजॉय करी सभी के साथ।

तो अभी हमने के सुनत रहनी असन बहुत ही खूबसूरत से सॉन्ग कहे के तो सबके हुआ अपन आपन कहाए वाला के बात है। एक साथ बढ़ल जाइए आगे और ये हमरा पास यहाँ बहुत सारा फरमाइश पहुँचल बा और ये देखा था नहीं कि हेलो मैडम जी भजपुरिया प्रणाम, हम आशा चौहान विलेज सरफरा परसौनी से गाना सुने के बाद तनी गाना के बोल है तनी देखल करी हमरा के कम जी ना तो हो जाई प्यार ए बलम जी सुने के बा और ये आपके अपन पूरा परिवार के और से रेडियो सुनने वाला सभी दोस्त के तनी हम रोपे ध्यान दी मैडम जी अपन टाइम से है अपना टाइम से आ गए बन तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और चलिए बिना देरी के लिए रुआ गाना के प्ले करता नहीं और गाना बहुत ही खूबसूरत बा तनी देखल करी कम जी ना तो हो जाई प्यारे बुलम जी। तो चलिए गाना के बिना देरी के लिए प्ले करता नहीं और इन्जॉय करी सब रुआ सभी।

0: अभी हमने के सुनत रहनी असन बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, तनी देखल करी हमरा के कम जी ना तो हो जाए प्यारे बलम जी। तो एक साथ बढ़ल जाऊँ आगे की तरफ, और हमरा पास यहाँ बहुत सारा मैसेज पहुँचल बा, लेकिन और यहाँ एक और मैसेज पहुँचल बा जी की लिखा था कि उमा शंकर मिश्रा दिल्ली से एगो गाना बजा दी, और हमरा के हमरा बेटी प्रिया के बर्थडे पार्टी अपना पसंद के कोनो बर्थडे सॉन्ग सुना दी। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी, और बेटी के जन्मदिन के हार्दिक बधाई। और एक साथ है, चलिए बिना देरी के लिए रुआ गाना के प्ले करते नहीं और एंजॉय कर लिया सभी के साथ है।
1: बाजेगा बाजेगा संजय कौन सी बाजेगा।

0: भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9939365923।

0: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बा रउआ सभी के भोजपुरिया एक्सप्रेस में। और रउआ सभी सुनत हनी रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यदि हमरा से हम जुड़े के चाहत हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9852788191। और कॉल के माध्यम से जुड़े के चाहत हैं तो नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी कैले कार्यक्रम के शुरू कर जाओ। और हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचल बा, तो चली लिया जाओ कॉल और सुनल जाओ का भाई यहाँ के फरमाइश। हेलो
1: हेलो
0: जी, रेडियो रिमझिम
1: प्रणाम
0: प्रणाम।
1: बहुत रोवा के फोन कोई नहीं है तो अबरा उठ फोन उठो लवे।
0: अच्छा
1: हम गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से बोलते नहीं, बथुआ बाजार से। लाइक स्टार स्पोर्ट्स बथुआ बाजार।
0: हाँ जी,
1: माने ए तरह के मत पर लो कि हो एगो फोन उठा लियल पर लो 20 गो फोन पर एगो फोन उठाता है।
0: ना ना ऐसे कोनो बात नहीं है, दोनों तरफ देखे के बावे और ई दोनों बजावे के बावे।
1: तब और सब बताई कैसन बनी रहुआ?
0: हम तो ठीक बनी रहुआ, बताई
1: हम और ठीक बनी।
0: तो कौन सा एगो,
1: एगो अपन दुकान बावे लाइक स्टार स्पोर्ट्स के नाम से बथुआ बाजार में। ट्राउजर टी शर्ट हाफ पैंट ट्रैक सूट जैकेट वगैरह बनेला। गाना हमरा सुने के बारे की आटा सने गयलू तो गिल कोई देहलू, पवन सिंह के गाना हवे। तो ये गाना कितना देर में बाज जाई?
0: अभी बाज जाई। और गाना क्यों के सुनाहू के बा?
1: ए रोबा के सुनाओ के बा, जे के भी रेडियो रिमिल से जुड़ल बनू सब केहू के सुनाओ के बा। तब तनी कॉल उठा लियल करी, हमारी ये एक रिक्वेस्ट बावे, ये हमारे एक ये रिक्वेस्ट बावे। आप पूरी से इतना प्यार बनो कि हम का कहीं।
0: तो चलिए और गाना प्ले कर देल बनी, एंजॉय करी सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: ठीक बा, गाना प्ले करे खातिर थैंक यू।
0: जी जी, धन्यवाद।

तो अभी हमने के सुनत रही सन बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग पवन सिंह के आवाज़ में आटा साने गई नहीं तो गिल कही दिखलू और एक साथ बढ़ल जाइए आगे और ये हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचल बा कि लिखत नहीं कि नमस्ते नमस्कार डियर भारती जी का हाल बा गर्मी में मिजाज निमन बानो और ये हम मस्त बिंदास और ये झकास रही ले आज हमारा गाना सुने के बाद लिंक नीचे शेयर कर दे ले बानी और ये सुना दे सुनाएक बा निशा भारती उज्वलिया रुखसार खातून आयशा खातून सगुफ्ता फिर दोस शिल्पी सुधा भारती हजार हजरा खातून और अनिल भाई को थोड़ा बहुत आपको भी भारती जी और मेरे रेडियो फैन मोहम्मद इरफान फ्रॉम शाहजहाँ सिटी यूएई दुबई से तो बहुत बहुत स्वागत है आप रउआ भी और यहाँ लिंक के माध्यम से फरमाइश पहुँचल बा तो चलिए बिना देरी के लिए रउआ गाना के प्ले करता नहीं और गाना बावे पटना के पानी तो गाना प्ले कर दे ले बनी इंजॉय करी सभी के साथ अपना गाना के

और यहाँ एक और मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है नहीं कि यहाँ ये गोपालगंज जिला के बबनी बाड़ी त और एक साथ है हमारे पास अगला मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है नहीं कि भारती जी गुड आफ्टरनून, मनीष रजाक फाजिलगंज से कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, हमहूँ भोजपुरिया एक्सप्रेस में जुड़ चुकल बानी, अभी टाइम मिलल है तो भोजपुरिया एक्सप्रेस में जुड़नी है और हमारे एगो गाना सुना देम और लिंक के माध्यम से यहाँ के गाना पहुँच चुकल बा। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है नमस्कार मैडम जी, नरकटिया बाजार से रहीम आलम जुड़ चुकल बानी फैशन टेलर और लाल बाबू कुमार पठान टोला से जुड़ चुकल बानी, हमरा भी टिकट कन्फर्म कर दी मोतिहारी जिला बिहार से। और गाना सुने के बाद शिल्पी राज की आवाज़ में बर्बादी सॉन्ग, तो चली बिना देरी के लिए रहुआ गाना के प्ले करते नहीं और इन्जॉय कर जाए सभी के साथ रहुआ गाना के।

0: मूला एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
6: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
7: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
5: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमज।

ब्रेक के बाद रउवा सब के फिर से स्वागत बा भोजपुरी एक्सप्रेस में। और रउवा सब सुनतनी रेडियो रंजीम 90.4 FM। तो बिना देरी के लिए बढ़ल जाऊँ आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ बहुत सारा मैसेज पहुँचल बा और लिखतनी कि गाना बजा दी हमरो। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखतनी कि भारती जी अगर रउवा पास टाइम होके तो गाना बजा दी, हम डिलीट कर दिले रही हाँ और बाहर चल गए रही हाँ। वही से निजामुद्दीन सऊदी अरब से जुड़ चुकल बानी, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचल बा लिखत है नहीं कि चली धीरे से ही हमरो टिकट कन्फर्म हो गए है, तो इन्जॉय करिए अपना गाने के जरूर बताएं। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचल बा जो कि लिखत है नहीं कि आजाद कमाल घर बिहार जिला बेतिया जौ कटिया 5 नंबर वार्ड से, और बहुत अच्छा गाना बाजता, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ के तरफ से गाना के लिंक पहुँचल बा। चलिए बिना देरी के लिए अगला फरमाइश की तरफ बढ़ल जाऊँ। और हमारा पास अगला फरमाइश पहुँचल बा जे कि लिखत हैं कि भारती जी नमस्कार, कैसन बानी और भोजपुरिया एक्सप्रेस में जुड़ गए बानी रोहित देहरादून से, और गाना बावे कि ये धनी धन लूट जाए द। तो चलिए बिना देरी के लिए और गाना प्ले करतनी और इन्जॉय करी सभी के साथ अपना गाना के।

था। अभी हमने सुनी आसान बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग पवन सिंह की आवाज़ में, और गाना रहला ये धनी धन लूट जाएगा, और यही गाना के साथ बढ़ल जाऊँ अगला फरमाइश की तरफ। और हमारा पास फरमाइश पहुँचल बा, जैसे लिखा था भारती जी, गुड आफ्टरनून मनीष रजाक जी, और गाना के लिंक यहाँ के तरफ से पहुँचल बा। और भारती जी लिखा था कि भारती जी हमारा गाना बजा दी प्लीज़, और चलिए बिना देरी कैले रहा और गाना के प्ले करतनी, और गाना के बोल हवे नहिया के फुलवा। तो चलिए बिना देरी कैले गाना के प्ले कर जाऊँ और इन्जॉय कर जाऊँ सबके साथ।

0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9956-97-644।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बार रहुआ सभी के भोजपुरिया एक्सप्रेस में और रहुआ सब सुना तनी रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो बिना देरी के लिए चला जाऊँ अगला मैसेज की तरफ और हमारे पास यहाँ बहुत सारा मैसेज पहुँचल बा और लिखा तनी कि गाना बजाए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथ है अगला फरमाइश हमारा पास पहुँचल बा जो कि लिखा था नहीं कि ओमान से नियाज अंसारी। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचल बा जो कि लिखा था नहीं कि हेलो मैम नमस्ते, हम मिस सुकांत राय पच फेरा से। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ गाना के लिंक पहुँचल बा और लिखा था नहीं कि हमार गनवा ना बाजी गया था। बिल्कुल रो रो गाना बाजी, थोड़ा वेट करी। और यहाँ हमारे पास अगला फरमाइश पहुँचल बा जो कि लिखा था नहीं कि हेलो भारती मैम नमस्ते, हम अभिषेक सिंह बोलते नहीं और शशांक पुस्तक सदन तीन फेरिया बाजार कुशीनगर से। और गाना के बोल बा चूल्हा अलगे जरी प्लीज सॉन्ग बजा देम। और लिखा था नहीं कि प्लीज़ गानवा बजा दी। तो चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाना के प्ले कर जाओ और एंजॉय कर जाओ सभी के साथ।

0: और यहाँ अभिषेक जी की तरफ से मैसेज पहुँच गई बा लिखत है कि थैंक यू हमारे गाना बजाए खातिर, तो बहुत बहुत शुक्रिया और इंजॉय कीजिए अपने गाने को।
1: जो गलती तोरा सो गलती मोरा।

0: अच्छा चलो ठीक बात, माफ करनी।
1: अभी हमने के सुनिया सन बहुत ही खूबसूरत से संग पवन सिंह के आवाज़ में चूल्हा अलगे जरी, और एक ही साथ बढ़ल जाओ अगला फरमाइश की तरफ। और हमारा पास यहाँ फरमाइश पहुँचल बा जे के लिखत यानी कि दुर्गेश आजमगढ़ से, और गाने के बोल बा दिल के दवा बनाए पड़ी राम देवे बाबा से कह के खेसारी लाल की आवाज़ में। तो चलिए बिना देरी किए गाना को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सबके साथ।

अभी हमने ये सुना त्रिनी हसन दुर्गेश जी की तरफ से बहुत ही प्यारा सा गाना खेसारी लाल की आवाज़ में। तो एक साथ बढ़ल जाऊँ आगे की तरफ और ये हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखते नहीं कि नौशाद अली जी और गाने के बोल पहुँच लिंक के माध्यम से पहुँचल बा और लिखते नहीं कि कहाँ से हुनर लाइलू दिलवा तोड़े के। तो चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाने के प्ले कर जाऊँ और इन्जॉय कर जाऊँ सबके साथ।

तो अभी हमने सुना दुनिया सन बहुत ही खूबसूरत से सॉन्ग, कहाँ से हुनर ले लो दिलवा तोड़े के। और यही के साथ ही बढ़ल जाओ अगला फरमाइश की तरफ। और हमारे पास अगला फरमाइश पहुँचल बा जे कि लिखा तनी हम गणेश कुमार पिपर नारायण से बोलते नहीं। और गाना बावे पागले बना दिल, और प्लीज़ बजा दी भारती मैम गाना। और चलिए बिना देरी के लिए रहुआ गाना के प्ले करते नहीं और इन्जॉय कर जाओ सभी के साथ।

तो श्रोतागण समय हो गए बा शो के समाप्त करे के, तो बिना देरी के लिए शो के समाप्त करे से पहले हम रोवा सबके बता दें कि अगर भोजपुरिया एक्सप्रेस में जुड़े के चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788191 और ये कॉल के माध्यम से जुड़ो तो नहीं तो हमारा नंबर बा 7277165696। तो बिना देरी के लिए जाए दी आज हमके जाए की इजाज़त, तो फिर मिले नहीं अगला संडे के, तब तक रखिए अपन ख्याल और ये अपना के भी एंजॉय करी गाने के।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710-3992 या 97-65-65-750।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
10: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 80029-94-21 पर। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन, जिसमें से होगा 1 सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों, आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो। साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता ना लें और इंटरनेट पर जवाब सर्च ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
11: हेलो
12: हेलो
11: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
11: रंजन बोल रहे हैं, तो
12: जी कैसे हैं रंजन जी?
11: ठीक है।
12: तो क्या कर रहे थे अभी?
11: कुछ नहीं, इधर पढ़ाई हो रहा था, बैठे हुए।
12: जी, पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी?
11: BA कम्प्लीट हो गया।
12: चलिए, उसके आगे अभी कुछ तैयारी नहीं चल रही है?
11: करते हैं एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए।
12: अच्छा चलिए बढ़िया है। मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपने।
11: मम्मी का नाम है लाल।
12: लिया जाए आज का पहला प्रश्न आपसे।

0: आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, मगध प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? मगध प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए गया, बी औरंगाबाद, सी नवादा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: गया को पिछ के दिएगा।
0: चोर है?
1: चोर तो नहीं है।
0: तो लॉक करो।
1: हाँ कर दीजिए।
0: चलिए तो रंजन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए गया को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आज से आपका दूसरा प्रश्न ये है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका समय शुरू है अब।
1: ऑप्शन सी को
0: स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए चोर है, लॉक कर दें।
1: हाँ कर दीजिए।
0: तो रंजन जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए? आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए स्टीफन हॉकिंग, बी जॉन व्हीलर और सी एडविन हबल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बी को कंफर्म नहीं है।
0: जॉन व्हीलर कंफर्म नहीं है लेकिन लॉक करो। चलिए रंजन जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी जॉन व्हीलर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए? आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए बी एन राव, ऑप्शन बी के एम मुंशी और ऑप्शन सी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी क्या है?
0: ऑप्शन
1: सी क्या है? ये
0: ऑप्शन ए की बी
1: मुझे ऑप्शन सी क्या है, नाम क्या है उनका,
0: ऑप्शन का नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया है बी एन राव, बी है के एम मुंशी और सी है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर।
1: इन्हीं को फिक्स कीजिएगा।
0: ऑप्शन सी।
1: हाँ
0: श्योर है? लॉक कर दो। आपकी आवाज काफी धीरे आ रही है,
1: कर दीजिए इसी को, ऑप्शन सी को।
0: चलिए तो रंजन जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा
1: बी एन राव।
0: हाँ जी
1: ठीक है।
0: ओके हेलो, क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।
2: हाँ अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी मैम।
0: जी नाम बता दीजिए अपना।
2: नाम मेरा गुलाबता खातून है।
0: जी कहाँ से बात कर रही है गुलाबता जी?
2: गोपालगंज से।
0: गोपालगंज में कहाँ से?
2: सदुल्लापुर से।
0: सदुल्लापुर से।
2: हाँ
0: जी, क्या करती हैं आप?
2: घर पर आते हैं, सिलाई करते हैं।
0: चलिए सिर्फ अपना या फिर कस्टमर का भी?
2: अपना भी करते हैं, कस्टमर का भी करते हैं।
0: तो ये बढ़िया है। पढ़ाई कहाँ तक हुआ है आपका?
2: मेरा इंटर फाइनल था, उसके बाद पढ़ाई ही हम नहीं किए।
0: अच्छा, इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी है।
2: जी,
0: तो आप लोग क्विज कॉन्टेस्ट में इससे पहले कॉल किए हैं?
2: नहीं, पहले भी किए थे।
0: अच्छा, तो आज के पहले प्रश्न के लिए तैयार हैं आप?
2: जी, मैं पूछिए।
0: ओके, अम्मी अबू का नाम बता दीजिए अपने।
2: अबू का नाम है शर्मिल हुसैन और अम्मी का नाम है नूरजहां।
0: चलिए, लिया जाए पहला प्रश्न।
2: जी मैम।
0: जी,

0: आपसे पहला प्रश्न ये है, रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: विटामिन ए मैम।
0: श्योर है?
1: लॉक के सहारे।
0: लॉक के सहारे तो लॉक कर दो।
1: जी कीजिए।
0: चलिए तो चलिए गुलासा जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर विटामिन ए लॉक कर दिए। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर सही है।
1: सही है
0: जी।
1: मैं पहले ही डरवा रही
0: हूँ। नहीं कहीं ना। चलिए जाए आपसे दूसरा प्रश्न।
1: जी मैम।
0: जी और आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद। आपका समय शुरू होता है अब।
1: सुभाष चंद्र बोस।
0: श्योर है?
1: जी मैम।
0: लॉक करूं?
1: जी मैम।
0: तो गुलासा जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर सुभाष चंद्र बोस को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री।
1: जी मैम।
0: जी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक है।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिक्स, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94921 8029-94921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
6: हेलो
7: जी, नमस्ते मैम।
6: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
7: जी
6: जी, नाम बता दीजिए अपना।
7: निरंजन कुमार बोल रहे हैं
6: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं निरंजन जी?
7: बतरदे से
6: जी। क्या करते हैं आप?
7: जी बाहर आते हैं। सूरत में
6: पढ़ाई कहाँ तक हुई है?
7: बिल्डिंग काम करते हैं।
6: पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी?
7: इंटर तक हुई है।
6: इंटर तक हुई है। तो आज चलो कुछ कॉन्टेस्ट में कॉल किया, तैयार है आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
7: जी तैयार है
6: जी। तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
7: हमारा माता जी का नाम है श्रीमती चन्मती देवी और पिताजी का श्री सुमन माझी।
6: जी, लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
7: जी
6: जी,

0: आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जनगण मन, बी वंदे मातरम, सी विजयी विश्व तिरंगा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: राष्ट्रीय गीत की गान,
0: राष्ट्रीय गीत
1: वंदे मातरम।
0: श्योर है?
1: जी
0: जी। तो चलिए दिनेश रंजन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी?
1: विटामिन ए।
0: विटामिन
1: जी करण
0: विटामिन ए।
1: जी।
0: श्योर है?
1: जी श्योर है।
0: लॉक कर दूं?
1: जी
0: जी। तो चलिए निरंजन जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर विटामिन ए को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: और आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, हड्डियों का कमजोर होना किस पोषक तत्व की निशानी है? हड्डियों का कमजोर होना किस पोषक तत्व की निशानी है? ऑप्शन ए आयोडीन, बी कैल्शियम, सी लौह अयस्क। आपका समय शुरू होता है अब।
1: कैल्शियम।
0: श्योर है?
1: जी
0: जी। तो लॉक कर दें?
1: जी
0: जी। तो चलिए निरंजन जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी कैल्शियम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, मगध प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए गया, बी औरंगाबाद, सी नवादा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मगध का
0: जी
1: ऑप्शन
0: ऑप्शन ए गया, बी औरंगाबाद, सी नवादा।
1: गया होगा।
0: प्योर है?
1: प्योर तो नहीं है लेकिन लग रहा है।
0: लॉक कर दें?
1: जी
0: जी। तो चलिए निरंजन जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए गया को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप पांचवें प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है?
1: 28 फरवरी।
0: श्योर है?
1: जी श्योर है।
0: लॉक कर दूं?
1: जी
0: जी। ऑप्शन सुनिएगा कि लॉक कर दें?
1: तो राष्ट्रीय है कि अंतर्राष्ट्रीय?
0: नहीं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस।
1: ऑप्शन 28 फरवरी होगा।
0: चलिए तो लॉक करो।
1: लॉक कीजिए। जी
0: जी। तो निरंजन जी, आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर 28 फरवरी। लॉक करते हैं?
1: जी।
0: और आपको बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। छठा प्रश्न लिया जाए आपसे?
1: जी
0: जी। आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन ए लेक नासेर, बी लेक करीबा, सी लेक वोल्टा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन ऑप्शन लिएगा?
0: ऑप्शन ए लेक नासेर, बी लेक करीबा, सी लेक वोल्टा।
1: बी को लॉक कीजिए, कंफर्म नहीं है।
0: बी को
1: जी।
0: ओके, तो चलिए निरंजन जी आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी लेक करीबा को लॉक करते हैं। ऑप्शन बी। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा लेक वोल्टा, 8500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से ये बड़ा है। हेलो, क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
2: नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार, नाम बता दीजिए।
2: रुपेश कुमार।
0: रुपेश कहाँ से बात कर रहे हैं रुपेश जी?
2: जादवपुर से।
0: जादवपुर से, क्या करते हैं आप?
2: पढ़ाई पढ़ते हैं।
0: किस क्लास में पढ़ते हैं आप?
2: 12th में।
0: 12th में पढ़ते हैं। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
2: ठीक चल रहा है।
0: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में इससे पहले भी कॉल किए हैं आप?
2: हाँ
0: जी। तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: हाँ
0: ओके,

0: अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
1: मेरे माता जी का नाम श्रीमती सुनीता देवी और पिताजी का नाम श्री संजय प्रसाद चौरसिया है।
0: जी तो रूपेश जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, हड्डियों का कमजोर होना किस पोषक तत्व की निशानी है? हड्डियों का कमजोर होना किस पोषक तत्व की निशानी है? ऑप्शन ए आयोडीन, बी कैल्शियम, सी विटामिन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: कैल्शियम।
0: श्योर है? लॉक कर दूं?
1: ओके।
0: तो चलिए रुपेश जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी कैल्शियम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए? ओके। आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, मगध प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? मगध प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए गया, सी औरंगाबाद, सी नवादा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: नवादा को चेक कीजिए।
0: योर है?
1: क्वेश्चन क्या बोले? मगध
0: प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है?
1: नवादा को चेक कीजिए।
0: ओके, लॉक कर दूं?
1: हाँ
0: जी। तो चलिए रुपेश जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी नवादा को लॉक करते हैं। आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा गया। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
4: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
7: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
6: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
10: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे,
10: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रिमझिम 90.4 AM पर।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80-029-94-921 80-029-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो जी, बहुत बहुत आपका रेडियो इंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: क्या हाल है?
0: बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मेरे भी बढ़िया है।
0: आप अपना नाम बता दीजिए।
1: मेरा नाम गणेश कुमार।
0: गणेश कुमार, कहाँ से बात कर रहे हैं गणेश जी?
1: उत्तरा नारायण से।
0: पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
1: पढ़ाई तो 7th क्लास तक हुआ है।
0: तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए, तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपने।
1: पापा का नाम श्री सुदर्शन पंडित, मम्मी का नाम श्री परमिला देवी।
0: जी, तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
1: जी
0: जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है,

0: भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जनगण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी विजय विश्व तिरंगा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: तीसरा का लॉक करिए।
0: विजय विश्व तिरंगा
1: जी।
0: चोर है?
1: चोर तो नहीं है।
0: ओके, तो चलिए गणेश जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विजय विश्व तिरंगा लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा वंदे मातरम। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो
0: जी, बहुत बहुत आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना।
2: रोहित कुमार।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं रोहित जी?
2: जी मैम गौसियाता से।
0: गौसियाता
2: जी।
0: जी क्या करते हैं आप?
2: मैम पढ़ते हैं।
0: किस क्लास की पढ़ाई करते हैं आप?
2: बीए में।
0: बीए फर्स्ट ईयर चल रहा है कि लास्ट ईयर?
2: मैम सेकंड ईयर में।
0: सेकंड ईयर में है। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी?
2: ठीक चल रही है मैम।
0: चलिए बढ़िया है। तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं इससे पहले?
2: एक बार किए थे मैम।
0: अच्छा, तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: जी मैम।
0: जी मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपने।
2: जी पिताजी का नाम श्री राम रतन शाह
0: जी
2: और माताजी का नाम श्रीमती सीमा देवी
0: जी। पापा जी क्या करते हैं आपके?
2: मैम अभी तो कुछ नहीं करते थे, मतलब पहले फॉरेन कंट्री में रहते थे, अभी कर रही हैं।
0: ओके, और आपका क्या लक्ष्य है, आगे क्या करने का इरादा है?
2: अभी तो मैम सिविल एआई सर्विस का तैयारी करते हैं।
0: चलिए बढ़िया है। तो लिया जाए पहला प्रश्न?
2: जी मैम।
0: जी

0: आपसे आपका पहला प्रश्न ये है।
1: यस मैम।
0: भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है?
1: जी मैम।
0: ऑप्शन ए जन गण मन, बी वंदे मातरम, सी विजयी विश्व तिरंगा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बी मैम।
0: बी वंदे मातरम।
1: जी मैम।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दो?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी वंदे मातरम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाई जाती है? विश्व रेडियो दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 11 फरवरी, बी 12 फरवरी, सी 13 फरवरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बी नंबर।
0: 12 फरवरी।
1: जी।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है।
0: तो लॉक करो?
1: लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए रोहित जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 12 फरवरी को लॉक करते हैं।
1: जी,
0: और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा 13 फरवरी।
1: अच्छा
0: जी।
1: जी मैम।
0: हेलो फ्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
4: बोलबम, हर हर महादेव।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-921 8029-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
8: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
8: जी नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
8: निरंजन कुमार बोल रहे हैं, बता दीजिए।
0: ठीक, कैसे हैं निरंजन जी।
8: ठीक, आप सुनाइए।
0: हम भी बढ़िया है।
8: ठीक
0: जी, पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी निरंजन जी।
8: इंटर तक हुई है।
0: उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी है।
8: पढ़ाई छोड़ दी है।
0: चलिए, मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
8: माता जी का नाम है श्रीमती चंद्रमती देवी और पिताजी का श्री सुमन माझी।
0: जी, तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, तैयार है आप आज के पहले प्रश्न के लिए।
8: जी तैयार है।
0: जी

0: तो निरंजन जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? ऑप्शन ए सिरियस, बी सूर्य, सी प्रोक्सिमा सेंटोरी। आपका समय शुरू है अब।
1: ऑप्शन और से बोलिएगा।
0: ऑप्शन ए सिरियस, बी सूर्य, सी प्रोक्सिमा सेंटोरी।
1: सी होगा
0: प्रोक्सिमा सेंटोरी।
1: कंफर्म तो नहीं है
0: तो लॉक करूं?
1: बी को कीजिए, सूर्य।
0: सूर्य को करें? हेलो,
1: सूर्य को करिए। जी
0: जी, पक्का श्योर है ना? सूर्य को करें?
1: हाँ करिए, कंफर्म तो नहीं लग रहा है।
0: चलिए तो निरंजन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सूर्य को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है,
1: जी
0: ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन, बी क्रांति, सी सिंचाई परियोजना। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन ए होगा,
0: दुग्ध उत्पादन।
1: जी।
0: श्योर है?
1: जी श्योर है।
0: चलिए तो लॉक कर दें?
1: जी।
0: ओके तो चलिए निरंजन जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? आपका ऑप्शन ए है 73वां संशोधन, बी है 74वां संशोधन।
1: 73वां होगा।
0: श्योर है?
1: जी श्योर।
0: लॉक कर दें?
1: जी लॉक कर दें।
0: ओके तो चलिए निरंजन जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 73वां संशोधन लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु?
1: हीलियम।
0: हीलियम
1: जी।
0: ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन में तो हीलियम है ही नहीं।
1: ऑप्शन में हीलियम नहीं है, बोलिए तो।
0: सोडियम ऑप्शन ए, बी है लिथियम, सी है मैग्नीशियम। बस समय चौथा है।
1: लिथियम होगा।
0: लिथियम होगा
1: जी।
0: चोर है?
1: जी चोर है।
0: चलो करें।
1: हीलियम हम पढ़े थे। हीलियम।
0: हीलियम
1: जी।
0: तो लिथियम को लॉक करें?
1: जी।
0: चलिए तो निरंजन जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी लिथियम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार है आप पांचवें प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। तो आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रिक्टेस, बी एस्कर्वी, सी बेरीबेरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: विटामिन डी की कमी से?
0: जी
1: बेरीबेरी हो।
0: श्योर है?
1: जी श्योर है।
0: लॉक करें?
1: जी
0: जी। तो निरंजन जी आपके पांचों प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बेरी बेरी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रिक्टर। ठीक, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: नाम सालू कुमारी सिरसी टोला से।
0: जी कैसे हैं सालू जी?
2: अच्छे, आप बताइए।
0: हम भी बढ़िया है। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है सालू जी आपकी?
2: अभी नाइन्थ क्लास में आप पढ़ रहे हैं।
0: अभी नाइन्थ में आई है?
2: हाँ
0: जी। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
2: अच्छी चल रही है।
0: चलिए अच्छी बात है, कैसी चल रही है। तो कुछ सोचा है आपने आगे क्या करना है आपको?
2: हाँ सिविल सर्विस में जाना है।
0: सिविल सर्विस में जाना है जी। तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए सालू जी आप।
2: मम्मी का नाम श्रीमती निर्मला देवी, पापा का नाम बलिंद्र कुमार प्रसाद
0: जी। तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए, तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: यस मैम।
0: ओके

0: तो आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जल, सी क्लोरोफिल। आपका समय स्रोत है अब।
1: हम ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड।
0: श्योर है?
1: श्योर, लेकिन लॉक कीजिए।
0: ओके, तो चलिए शालू जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर है जल।
1: जल
0: जी। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके मैम, थैंक यू,
0: वेलकम।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
9: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
10: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
11: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
12: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
13: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
13: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
13: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
0: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029994121।
2: 8029 94 921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।

0: पापा जी का नाम सुपेश अग्रवाल है और मम्मी का नाम है।
1: और पापा जी क्या करते हैं आपके?
0: वो विदेश में रहते हैं दुबई।
1: अच्छा अच्छा, और आपको क्या करना है आगे, कुछ सोचा आपने? अच्छा अच्छा, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है, क्यों नेटवर्क वाले एरिया में जाइए।
0: बोलिए
1: जी। तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं तो तैयार हैं आप पहले प्रश्न के लिए? इससे पहले आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं?
0: एक बार किए थे।
1: अच्छा अच्छा, चलिए तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न। चलिए,

0: प्रियांशु जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? ऑप्शन ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम। आपका समय शुरू होता है अब। अरुणाचल प्रदेश। श्योर है? लॉक कर दें? चलिए, तो प्रियांशु जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए? ओके। आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल, बी 22 जून, सी 22 मार्च। आपका समय शुरू होता है अब।
1: 22 अप्रैल।
0: श्योर है? लॉक कर। चलिए, तो प्रियांशु जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 22 अप्रैल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए? आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? ऑप्शन ए 2 और ऑप्शन सी 4। आपका समय शुरू होता है अब।
1: 1000 क्वेश्चन बोलिएगा।
0: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय का उल्लेख है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4। सी। ऑप्शन 4, मतलब ऑप्शन सी 4।
1: नहीं,
0: 3 आंसर होगा।
1: ऑप्शन बी 3।
0: श्योर है? आप कहीं सर्च कर रहे हैं?
1: नहीं।
0: हाँ, तो मुझे अगर थोड़ा सा भी अगर ऐसे भनक लगता है तो मैं कॉल कट कर दूंगी कि आप कहीं सर्च कर रहे हैं। जी, चलिए, तो आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी यानी 3 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए? चलिए, आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोमती, बी घाघरा, सी यमुना। आपका समय शुरू होता है अब।
1: यमुना।
0: श्योर है? लॉक करो। लॉक कर दो।
1: हाँ, लॉक कर दीजिए।
0: कोई है आपके पास में?
1: नहीं।
0: तो चलिए, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी यमुना को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। और तैयार है आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: हाँ, तैयार है।
0: और आपसे आपका पांच

0: प्रश्न ये है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए स्टेप, बी फीमर, सी रेडियस। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बोलिएगा।
0: स्टेप, बी फीमर, सी रेडियस।
1: स्टेप ऑप्शन ए।
0: ऑप्शन ए श्योर है? लॉक कर दूं? चलिए तो चलिए प्रियांशु जी, आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार हैं आप छठे प्रश्न के लिए? आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सी सुब्रमण्यम, बी वर्गीज कुरियन और सी एम एस स्वामीनाथ। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी
0: क्यों है? ओके, ऑप्शन सी बोले हैं, एम एस स्वामीनाथन। ओके तो चलिए प्रियांशु जी, आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप सातवें प्रश्न के लिए? आज से आपका सातवां प्रश्न ये है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? आपका ऑप्शन ए है प्रकाश की कमी के कारण, बी है मध्यम के अभाव के कारण और सी है गुरुत्वाकर्षण के कारण।
1: ऑप्शन बी
0: माध्यम के अभाव के कारण। श्योर है? प्रकाश की कमी या गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं हो सकता है?
1: नहीं।
0: चलिए तो आपके सातवें प्रश्न का उत्तर माध्यम के अभाव के कारण लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके सातवें प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप आठवें प्रश्न के लिए? आपसे आपका आठवां प्रश्न ये है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1945, बी 1947, सी 1950। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए 1945, बी 1947, सी 1950।
1: ऑप्शन ए 1945।
0: श्योर है? लॉक कर दूं?
1: कर दीजिए।
0: ओके तो प्रियांशु जी, आपके आठवें प्रश्न का उत्तर 1945 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके आठवें प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप नौवें प्रश्न के लिए? चलिए तो कैसा लग रहा है आपको नौवें प्रश्न तक आके?
1: बहुत अच्छा।
0: चलिए तो प्रियांशु जी, आपसे आपका नौवां प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में हार्मोन की तरह भी कार्य करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी और ऑप्शन सी विटामिन के। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन ए ऑर्डर बोलिएगा।
0: ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी और ऑप्शन सी है विटामिन के।
1: अच्छा क्वेश्चन यही ना था, ये कौन सा विटामिन हार्मोन?
0: हाँ, हार्मोन की तरह शरीर में कार्य करता है। हेलो,
1: विटामिन बी, ऑप्शन बी।
0: आप कहीं सर्च कर रहे हैं? किट किट की आवाज आ रही है?
1: नहीं तो हम अकेले हैं रूम में, पंखा चल रहा है।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
3: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
4: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हीरो क्विज कॉन्टेस्ट में।
5: जी नमस्ते मैम।
4: जी नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
5: बिमल कुमारी, लाइन बजाते
4: हैं। जी कैसे हैं बिमल जी?
5: ठीक है।
4: तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी बता दीजिए?
5: ग्रेजुएशन फाइनल है।
4: चलिए, अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
5: मम्मी का नाम श्रीमती प्रभाती देवी है, पापा जी का नाम रामाजी प्रसाद है।
4: जी तो तैयार है आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
5: जी मैम।
4: तो आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जल और सी क्लोरोफिल। आपका समय स्रोत है अब।
1: जल।
0: श्योर है?
1: जी मैम।
0: लॉक कर दूं?
1: जी।
0: चलिए तो विमल जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी जल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 और ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन ए मैम।
0: अनुच्छेद 352।
1: 352
0: जी। श्योर है?
1: जी मैम।
0: लॉक करो?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए विमल जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: ओके, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, रक्त का थक्का बनने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? रक्त का थक्का बनने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन ए लाल रक्त कणिका, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स और ऑप्शन सी प्लाज्मा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: प्लेटलेट्स होना चाहिए मैम।
0: होना चाहिए, तो लॉक किसे करूं?
1: प्लेटलेट्स कीजिए।
0: यही करें, प्लेटलेट्स।
1: जी
0: जी। तो चलिए विमल जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी प्लेटलेट्स को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? ऑप्शन ए सिरियस, बी सूर्य, सी प्रोक्सिमा सिटारी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: एक बार और मैं बोलिएगा।
0: क्वेश्चन या ऑप्शन?
1: क्वेश्चन।
0: पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? ऑप्शन ए सिरियस, बी सूर्य, सी
1: बी ऑप्शन बी सूर्य।
0: श्योर है?
1: जी।
0: ओके, लॉक कर दूं?
1: जी मैम।
0: तो चलिए विमल जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सूर्य को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप पांचवें प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: आज से आपका पांचवा प्रश्न ये है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी कजिंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान।
1: ऑप्शन ए मैम।
0: कान्हा राष्ट्रीय उद्यान।
1: जी।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है, लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए विमल जी, आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान।
1: कोई बात नहीं
0: जी। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके मैम, बाय
0: बाय।
2: दोस्तों ये रहा हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के विनर। और हमें दीजिए अब जाने की इजाज़त और रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 9435456 या 9707065।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
5: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
10: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
5: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
11: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
12: मैं बनूंगा।
11: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
13: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: All right.

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87-894-18744।
5: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी।
6: इस कार्यक्रम को हम स्मार्ट संस्था नई दिल्ली और रेडियो रिमझिम के सहयोग से आप सभी तक पहुंचा रहे हैं।
5: आज की कड़ी बहुत खास है, क्योंकि आज 28 मई है, एक ऐसा दिन जब हम दो बहुत ही जरूरी विषयों पर बात करते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, यानी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, और दूसरा है विश्व पोषण दिवस, यानी हमारे खाने पीने और सेहत से जुड़ा दिन। पहली नज़र में ये दोनों विषय अलग लग सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, खासकर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए।
6: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी श्रोताओं को। आपने बिल्कुल सही कहा, मासिक धर्म और पोषण, ये दोनों ही विषय ऐसे हैं जिन पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ सही पोषण उस प्रक्रिया की स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे समाज में आज भी इन दोनों विषयों को लेकर बहुत सी गलतफहमियां और झिझक मौजूद हैं।
5: सच कहूं से अतिया भैया, आज भी कई घरों में पीरियड शब्द बोलना भी आसान नहीं होता। लड़कियां चुपचाप सब सहती हैं और कई बार तो उन्हें सही जानकारी भी नहीं मिलती। आखिर ऐसा क्यों है?
6: देखिए, ये एक सामाजिक सोच का मसला है। सालों से मासिक धर्म को एक छुपाने वाली चीज बना दिया गया है, जैसे ये कोई गंदगी हो या शर्म की बात हो, जबकि सच्चाई ये है कि यह हर लड़की और महिला के जीवन का एक सामान्य और जरूरी हिस्सा है। अगर हम इसे समझेंगे नहीं, इसके बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे, तो हमारे समाज की लड़कियां सही जानकारी से वंचित रह जाएंगी और उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा।
5: मतलब ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है।
6: बिल्कुल, माँ, पिता, भाई, पति, शिक्षक, सभी की भूमिका होती है। जब परिवार समर्थन देता है तो लड़की आत्मविश्वास के साथ अपनी सेहत का ध्यान रख पाती है, उसे साफ सफाई, सही सामग्री और सुरक्षित जगह मिलती है।
5: तो सेहतिया भैया, अगर हम सीधे तौर पर समझे तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब क्या है?
6: मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब है साफ और सुरक्षित तरीके से पीरियड को संभालना, जैसे कि साफ सैनिटरी पैड, कपड़ा या अन्य सुरक्षित साधन का इस्तेमाल करना, उसे समय समय पर बदलना, हाथ

0: धोना, शरीर की सफाई रखना और इस्तेमाल किए गए सामग्री का सुरक्षित निपटान करना। इसके साथ ही जरूरी है कि लड़की या महिला के पास एक निजी और सुरक्षित जगह हो जहां वो आराम से खुद का ख्याल रख सके।
1: लेकिन सेहतिया भैया, गांव में या कम साधनों वाले इलाकों में ये सब सुविधाएं हर किसी को मिल पाती है क्या?
0: यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। कई जगहों पर आज भी लड़कियां पुराने गंदे कपड़े इस्तेमाल करती हैं या फिर समय पर बदल नहीं पाते क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है या संसाधन नहीं मिल पाते। इससे संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस विषय पर जागरूकता बढ़ाएं और सरकार व समुदाय से मिलकर सुविधा सुनिश्चित करें।
1: और यहीं पर विश्व पोषण दिवस की बात भी जुड़ जाती है। क्यों, अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो इसका असर मासिक धर्म पर भी पड़ेगा, है ना?
0: बिल्कुल सही समझा आपने। अगर लड़की या महिला को सही पोषण नहीं मिलेगा, जैसे कि आयरन, प्रोटीन, विटामिन, तो उसे कमजोरी, चक्कर, ज्यादा दर्द या अनियमित पीरियड्स जैसी समस्या हो सकती है। इसीलिए पोषण और मासिक धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं।
1: तो एक संतुलित आहार कैसा होना चाहिए? हमारे श्रोता क्या क्या चीजें अपने रोज के खाने में शामिल कर सकते हैं?
0: देखिए, संतुलित आहार का मतलब है थाली में विविधता। आधी थाली में सब्जियां हो, साथ में दाल या अन्य प्रोटीन हो, अनाज जैसे कि रोटी या चावल हो, और अगर संभव हो तो दूध या दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, फल, मेवे, ये सब बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, जंक फूड, ज्यादा तला भुना और ज्यादा नमक चीनी से बचना चाहिए और पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए।
1: मतलब अच्छा खाना सिर्फ महंगा खाना नहीं होता बल्कि सही और संतुलित खाना होता है।
0: बिल्कुल, हमारे गांव में जो स्थानीय और मौसमी खाना मिलता है ना, वही सबसे अच्छा है। बस हमें उसे सही तरीके से अपनाना है।
1: सेहतिया भैया, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक वे किसी असली कहानी से न जुड़े। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये समझा सके कि सही जानकारी और पोषण कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं?
0: हाँ हाँ, बिल्कुल है। देखिए सोनी जी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हमारे ही गाँव की एक लड़की रीना की ये कहानी है। रीना करीब 14 साल की थी। पढ़ने में तेज लेकिन बहुत चुपचाप रहने वाली लड़की थी। जब उसे पहली बार पीरियड्स हुआ तो घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर में इस बारे में कभी भी खुलकर बात नहीं हुई थी। उसकी माँ ने उसे बस एक पुराना कपड़ा दे दिया था और कहा था कि किसी को बताना मत, बस चुपचाप संभाल लेना। रीना को ना तो ये पता था कि कपड़ा साफ होना चाहिए, ना ये कि उसे कितनी बार बदलना चाहिए। वो उसी कपड़े को कई कई घंटों तक इस्तेमाल करती रही। धीरे धीरे उसे खुजली होने लगा, जलन होने लगा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसे लगता था कि शायद यह नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों, रीना के साथ एक और समस्या थी। रीना का खान पान, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और खाने में अक्सर सिर्फ रोटी और नमक या कभी कभी दाल मिलती थी। हरी सब्जियां, फल, ये सब बहुत कम मिलते थे। धीरे धीरे रीना को कमजोरी महसूस होने लगी। पीरियड्स के समय उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, चक्कर आते थे उसे, और कई बार वह स्कूल भी नहीं जा पाती थी। एक दिन की बात है, स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगा था। वहाँ आशा दीदी और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी आए थे। उन्होंने लड़कियों से खुले में बात की, पीरियड्स क्या होते हैं, कैसे संभालना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। रीना पहली बार किसी को इतनी खुलकर बात करते हुए सुनी थी। दोस्तों, शिविर के बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी परेशानियां बताई। फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने रीना को समझाया कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। इसके अलावा रीना को सैनिटरी पैड दिए और ये भी बताया कि उसे आयरन की कमी है। उसे आयरन की गोलियां भी दी और खाने में हरी सब्जियां, दाल, गुड़ और फल शामिल करने की सलाह दी। साथियों, रीना घर आ गई। धीरे धीरे रीना ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए। साफ सफाई का ध्यान रखना शुरू कर दिया, समय पर पैर बदलना शुरू कर दिया और अपने खाने पीने में सुधार कर लिया। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। अब उसे पहले जैसी कमजोरी नहीं होती थी और वह नियमित रूप से स्कूल जाने लगी। साथियों, आज रीना अपने गांव की दूसरी लड़कियों को भी जागरूक करती है तो उन्हें बताती है कि पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है और सही जानकारी और पोषण से हम इसे आसानी से संभाल सकते हैं।
1: सच में सेहतिया भैया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख है। अगर सही समय पर जानकारी और मदद मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है।
0: बिल्कुल, और यही स्मार्ट संस्था नई दिल्ली और रेडियो रिमझिम का प्रयास है और हमारे इस कार्यक्रम का यही मकसद है कि हर रीना तक सही जानकारी पहुंचे ताकि कोई भी लड़की अज्ञानता या झिझक के कारण अपनी सेहत से समझौता ना करे।
1: सेहतिया भैया, रीना की कहानी ने सच में दिल को छू लिया, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है पोषण। आपने बताया कि सही खाना मिलने के बाद ही रीना की सेहत सुधरी, तो क्या ये समस्या सिर्फ लड़कियों और महिलाओं तक सीमित है या पुरुषों में भी पोषण की कमी एक बड़ी चुनौती है?
0: ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सोनी जी। अक्सर हम पोषण की बात सिर्फ महिलाओं और बच्चों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पुरुषों को भी पोषण की कभी कभी एक गंभीर समस्या हो जाती है। हमारे देश में बहुत से पुरुष दिन भर मेहनत करते हैं, खेतों में या निर्माण कार्य में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन उनका खान पान संतुलित नहीं होता। कई बार वे सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, शरीर को सही पोषण देने के लिए नहीं, और इसके वजह से इसका सीधा असर उनकी ताकत, काम करने की क्षमता और लंबी अवधि में उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है।
1: मतलब कमजोरी और थकान जो हम आम समझ लेते हैं, उसके पीछे भी पोषण की कमी हो सकती है।
0: बिल्कुल, और यही बात हमें विश्व पोषण दिवस के संदेशों से जोड़ती है। इस दिन का मकसद सिर्फ अच्छा खाना बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सही पोषण हर उम्र, हर लिंग और हर वर्ग के लिए बहुत जरूरी है। और आज जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मना रहे हैं, जिसका इस साल का संदेश है टुगेदर फॉर ए पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, इसका मतलब यही है कि हम मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां लड़कियां और महिलाएं बिना डर और झिझक के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके, और इसमें पोषण एक मजबूत कड़ी है जो दोनों विषयों को जोड़ती है।
1: सेहतिया भैया, आपने एनीमिया यानी खून की कमी का जिक्र किया था, ये समस्या हमारे देश में कितनी बड़ी है और क्या ये सिर्फ महिलाओं में ज्यादा होती है?
0: देखिए, एनीमिया भारत में एक बहुत ही बड़ी समस्या है, खासकर किशोर लड़कियों और महिलाओं में इसकी दर काफी ज्यादा है, लेकिन पुरुष भी इससे अछूते नहीं है। खून की कमी का मतलब है शरीर में हीमोग्लोबिन का कम होना, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसके कारण व्यक्ति को जल्दी थकान, चक्कर, सांस फूलना और कमजोरी महसूस होता है। महिलाओं में ये समस्या ज्यादा है, इसलिए है क्योंकि उन्हें हर महीने मासिक धर्म के दौरान खून की कमी होती है, और अगर उनका खान पान सही ना हो तो यह कमी और बढ़ जाती है।
1: तो इसका सीधा मतलब है कि अगर हम पोषण पर ध्यान नहीं देंगे तो इसका असर सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ेगा।
0: बिल्कुल सही समझा आपने। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने रोज के खाने में कुछ खास चीजों को शामिल करें, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि पालक, मेथी, दालें और चने, गुड़, मूंगफली, तिल, अगर संभव हो तो दूध, दही, अंडा या अन्य प्रोटीन के स्रोत जैसे कि फल, केला, अमरूद, संतरा, ये बहुत फायदेमंद होते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि खाने में विविधता होनी चाहिए। एक ही चीज रोज खाने से शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते।
1: मतलब थाली जितनी रंग बिरंगी होगी सेहत उतनी मजबूत होगी।
0: बिल्कुल सोनी जी, यही सबसे आसान तरीका है समझने का।

0: सभी कार्यक्रम अच्छा लगता है।
1: ये बढ़िया है,
0: ठीक है
1: जी। रेडियो रिमझिम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कैलाश से धुआं धुआं है।
3: अरे का हो, काहे मन मार के बैठल बड़ू, कोनो प्रॉब्लम बा?
4: ए जी, एगो बात कही।
3: कहा?
4: बड़ा मन करता देवघर जाए के जी।
3: तब
4: देखी न बाबा, कई दिन से सपना में आओ तनी, अपना नगरी में बुलावा तनी।
3: सपना तो हम देखते, लेकिन क्या करी, पैसे नहीं खेरे।
5: ए साल रहेगा, पर साल चल जाये, ठीक बा? गाड़ियों खाली नहीं खिसा
4: तो हम अब की बार ना मानो, हम तो जेबे करोगे।

0: शिकायतों को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो 8029494111 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

हाँ भाई भैया कि तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जाने कुतो मनुष्यः। इतना कुछ तिरिया छछंद सुने के बाद आजकल के कुछ पति काव कहते सुने।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: लीजिए,
1: अब लगा भी लीजिए।
2: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: पाकिस्तान को वो गले लगा रहा है, वो उसकी पीठ में खंजर।
1: संभावना है राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों, पूर्वी चंपारण, सारण एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के किशनगंज, सुपौल एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
2: इधर बांका में बारिश के दौरान बिजली गिरने से अलग अलग स्थानों पर 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 7 अन्य घायल हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की शुरुआत की। पटना सहित राज्य के सभी जिलों में जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल। भाजपा राजद और जनसुराज में मुख्य मुकाबला। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन। विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और खेल मंत्री समेत अन्य गणमान्य लोगों ने खिलाड़ियों को दी बधाई। और मौसम विभाग का अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज और सिवान जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: रेडियो रिमझिम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा यानी रेडियो दोस्त सोनू के तरफ से नमस्कार प्रणाम। समय हो चुका है आपका संदेश मिला कार्यक्रम का, तो ठीक सही समय पे आप सभी के द्वारा संचार के विभिन्न माध्यमों से भेजे गए संदेशों को लेकर हाजिर हो चुका हूँ आप सभी के बीच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। तो सर, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यदि आप भी इस कार्यक्रम में शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपना विचार भेजना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28। व्हाट्सएप नंबर है 98527 88291 और ईमेल आईडी है radiorimjhim@gmail.com। आप संचार के जिस माध्यम से चाहे उस माध्यम से अपना शिकायत, सुझाव या प्रशंसा, अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल अपनी बातों को रोकते हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं।
1: आदरणीय श्रोता बंधु, आप सभी को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से नमन है, प्रणाम है। आप लोगों का स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद से रेडियो रिमझिम नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। रेडियो रिमझिम का यह कार्यक्रम आपका संदेश मिला पूरे सप्ताह भर के कार्यक्रमों का विश्लेषण करता है। अपने जिले के तमाम क्षेत्रों से, देश विदेश से और दूसरे प्रदेशों से भी बहुत सारे सुझाव आते हैं, जिसको हम लोग अंगीकृत करते हैं और उन विश्लेषणों का समीक्षा किया जाता है। रेडियो रिमझिम का यह लोकप्रिय कार्यक्रम आपका संदेश मिला में हमारे जितने भी आदरणीय श्रोता हैं।

ये अपनी बातों को हम तक पहुंचाते हैं, उन्हें मैं बार बार धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं। आज के युग में जहां किसी के पास समय नहीं है खड़ा होने का, चाय पीने का, बातचीत करने का, उस दौर में भी रेडियो रिमझिम का बेहतरी के लिए अपना मूल्यवान सुझाव देकर हमें एक नए रास्ते के तरफ ले जाते हैं। हम केवल प्रसारण करता हैं, बहुत बड़े ज्ञानी, विद्वान और कोई खास व्यक्तित्व के व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन जो हमारे श्रोता हैं, जो समाज के प्रत्येक वर्ग से आते हैं, प्रत्येक उम्र वर्ग के लोग जो है अपना सुझाव देते हैं, हमारे बुजुर्ग साथी, हमारे युवा, हमारी माताएं बहने, उन सब का सुझाव पाकर मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली महसूस करता हूं कि जो हमारे श्रोता हैं अपने बातों को रेडियो रिमझिम तक पहुंचाते हैं। आज जो है सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक के इनबॉक्स में या पत्र के माध्यम से या टेलीफोन करके हमारे जो सहयोगी हैं उनको अपने बातों को लिखवाते हैं। मेरा मानना है कि हम जिसके लिए प्रसारण करते हैं, जिसके लिए सुबह 5 बजे से रात को 11-10 तक रेडियो पर लगातार ऑपरेटिंग करते हैं, वह व्यक्ति यदि कुछ कहता है तो उसकी बातें हमारे समझ में आती है, क्योंकि हमारे श्रोता जो है हवा हवाई नहीं है, वह जमीन से जुड़े हुए हैं। गांव, देहात, नगर परिषद क्षेत्र, नगर पंचायत क्षेत्र के निवासी हैं, जो सुबह शाम रेडियो रिमझिम को अपना एक साथी समझकर सुनते हैं और अपनी बातों को हम तक पहुंचाते हैं। हमारे हम उम्र के कई लोग जो है अपने नाती, पोता, बेटा से भी लिखवा लिखवा कर संदेश भेजते हैं। हम इसी क्रम में बताते चले कि अभी हाल में ही भारत सरकार का एक सर्वे टीम आया था जो सेहत सही लाभ कई स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में जन जन तक इंटरव्यू लिया, जहां रेडियो रिमझिम का प्रसारण होता है उस जगह से 15 किलोमीटर आवृत्ति में रेडियस में वे लोग गए, लोगों से बातचीत करें। हमारी कई बहनें, बेटियां, माताएं, हमारे उम्र के लोग अपने बातों को बताए, वे उनका तस्वीर भी लिए, फोटो भी खींचे, वीडियो भी बनाए, उसमें से कुछ वीडियो और फोटो हमें भी मिला है। यह जानकर काफ़ी अच्छा लगा कि गांव देहात में जो छोटे छोटे व्यापार कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, गांव में खेती कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं या बागवानी या सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, सब लोग अपना काम छोड़कर 10 मिनट आधा घंटा सर्वेकर्ता से बातचीत किया, अपना फीडबैक दिया, अपना सुझाव दिया, आगे हमें कैसे क्या करना है उस टीम को बताया। वह केवल रेडियो रिमझिम का ही नहीं, बिहार के 3 रेडियो स्टेशन और भारत वर्ष के 40 रेडियो स्टेशन में यह सर्वे का काम हुआ। अब इसका रिजल्ट जो है बहुत जल्द 2 महीने के अंदर हम लोगों को भी प्राप्त हो जाएगा कि हमारे क्षेत्र के लोगों ने कैसा जवाब दिया। आदरणीय श्रोता बंधु, सुबह से शाम तक अलग अलग कार्यक्रमों का हम प्रसारण करते हैं। सुबह में भजन के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, भोलेनाथ का महीना माना जाता है। हर घर में घंटा, फूल, आवाज, अगरबत्ती की सुगंध आ रही है और उस बीच में
हमने भी सुबह 6 बजे से महा शिव जी का एक एपिसोड चालू किया है, भजन भी हो रहा है और शाम को 4:30 बजे से सावन का सबसे लोकप्रिय गीत कजरी का भी हम प्रसारण शुरू कर दिए हैं आप लोगों के सुझाव से। और हमें लगता है कि यदि कभी हम भूल जाते हैं कोई कार्यक्रम प्रसारण करते समय या कभी कोई चूक हो जाता है तो हमारे आदरणीय श्रोता हमें हमेशा अवगत कराते रहते हैं। हम कोई बहुत जानकार विद्वान और बहुत अच्छे रेडियो प्रसारण करता नहीं है, लेकिन हमारे श्रोता बेहतर हैं। वे हमें हमेशा हर कमियों के तरफ इशारा करते हैं और रेडियो रिमझिम 90.4 को कैसे बेहतर बनाया जाए वे अपना सुझाव देते हैं। हमें काफी अच्छा लगा। जीवन का अपना मूल्यवान समय 20 वर्ष लगभग कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। रेडियो रिमझिम गोपालगंज की जनता की रेडियो के माध्यम से और ऐप के माध्यम से पूरे संसार में अपनी आवाज पहुंचा रही है। हमें पता है कि हमारे यहाँ के युवा देश विदेश और दूसरे प्रदेशों में रोजी रोजगार हेतु गए हैं। वे वहाँ से अपनी बातों को कार्यक्रम में भेजते हैं, गीत सुनते हैं, अपने बातों को रखते हैं। वह चाहे सांसा मूसा बाजार हो या बरौली, मीरगंज हो या बड़हरिया, सिवान और गोपालगंज कोई बटा हुआ नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ जिला है। और हमें लगता है कि गोपालगंज जिला मुख्यालय और सिवान जिला मुख्यालय जितना नज़दीक है

0: भावनाओं से जुड़े हैं, उनसे हम प्रेम करते हैं और उनका आशीर्वाद सदैव लेने का प्रयास करते हैं। रेडियो रिमझिम में जो भी कमियां होती है, जो बेहतर कार्य होता है, उस पर वे लोग अपना विचार और सुझाव देते रहते हैं। आपका संदेश मिला कार्यक्रम एक खुला मंच है, इसमें आप अपने बातों को बेधड़क निसंकोच होकर लिख सकते हैं, बता सकते हैं, फोन कर सकते हैं। आज के जमाने में हर हाथ में स्मार्ट मोबाइल आ गया। जितने हमारे युवा साथी हैं 6 घंटा से 8 घंटा तक लगातार मोबाइल देख रहे हैं, उसमें रेडियो रिमझिम का फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, वे लोग देखते रहते हैं, उसके इनबॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहते हैं। अच्छा लगता है, समय के साथ रेडियो रिमझिम अपने को अप टू डेट करते रहता है कि समय के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चले। तो बातें तो अभी बहुत है, लेकिन मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर सोनू जी, जो आपके संदेशों को पढ़ेंगे और हम पूरी ईमानदारी से इसका जवाब देंगे। धन्यवाद, नमस्कार
1: जी। सर, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी संचार के विभिन्न माध्यमों से बहुत सारे संदेश पहुंचे हुए हैं। सबसे पहला संदेश मेरे पास है रतन कुमार चौहान जी का, कमालपुर से लिखे हुए हैं। रेडियो रिमझिम को ऐप के माध्यम से सुनते हैं, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं। सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम कब चलता है, कृपया बताए। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे।
0: आदरणीय चौहान जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं। आपके ग्रामवासी, पंचायतवासी और प्रखंडवासियों को भी नमन करते हैं। मेरा मानना है कि जो रेडियो रिमझिम को सुनता है, वही कार्यक्रम का नाम जानता है, कार्यक्रम में अधिक जानकारी लेने की उत्सुकता रहती है। यह बात सही है, सेहत सही लाभ कई स्वास्थ्य कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को नाटक के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से और हमारे जो आरजे हैं, चाहे वह SMS फरमाइश हो, चाहे ऑनलाइन कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस हो, उसमें बीच बीच में आपको जानकारी देते रहते हैं। जैसे बरसात का समय आ गया, डेंगू मलेरिया कालाजार का प्रकोप बढ़ने लगता है, स्वास्थ्य विभाग भी सजग हो जाता है और अपने जिले के 6 प्रखंडों में बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके लिए जिला प्रशासन सजग सतर्क हो जाता है। हमारे आदरणीय जिला पदाधिकारी दियारा क्षेत्र का कई बार भ्रमण किए, आप लोग रेडियो के माध्यम से इसकी सूचना पाते ही होंगे। सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम चलाने का एकमात्र उद्देश्य है कि जिस समाज में सभी लोग सेहतमंद रहे, स्वस्थ रहे, वह समाज जो है राष्ट्र के लिए, प्रांत के लिए बहुत कुछ कर सकता है। जब हमारे क्षेत्र के युवा साथी आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, पुलिस में या होम गार्ड के बहाली में जाते हैं, तो उनकी पूरी जांच होती है, मेडिकल होता है, फिटनेस देखा जाता है। तो इसकी तैयारी यदि हम अपने बच्चों को बचपन से ही करें, तो वह बच्चे जो है देश के लिए, राष्ट्र के लिए गौरव बन जाएंगे। इसलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो माताएं अपने बच्चों का देखभाल कर रही है, बचपन से ही हम उसे पौष्टिक पूर्ण आहार दें, तो वह बच्चा जो है स्वस्थ और निरोग होगा। इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम बचपन से बच्चों को, चाहे बालक हो या बालिका, उसे स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक पूर्ण आहार दें। यह केवल सेव, अनार और महंगे फल खाने से नहीं मिलता है, पौष्टिक जो है हर चीज में होता है। हम लोग साग खा सकते हैं, कई तरह के जो

0: फल मूल हैं जो सस्ते मिलते हैं उसे भी खाकर हम पौष्टिक पूर्ण जीवन बिता सकते हैं या अपने बच्चों को देकर उसे मजबूत बना सकते हैं। इसी तरह की बातें इस कार्यक्रम में बताया जाता है और जो समय समय से बच्चों का टीकाकरण है वह एकदम अनिवार्य है, क्योंकि पहले जैसा न हवा रहा न पानी रहा, सब कुछ बदल गया है और बदलते मौसम में बदलते वातावरण में हमें अपने आप को एडजस्ट करना है। उसके लिए सरकार द्वारा बताए गए विभिन्न बातों को हमें अपनाना चाहिए। विशेष करके स्वास्थ्य विभाग जब भी अपना प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है, कोई सूचना देता है, तो हमें गंभीरता से लेना है। रेडियो रिमझिम पर इसका प्रसारण शुक्रवार को, शनिवार को और रविवार को होता है। 3 दिन हम लोग इसका प्रसारण करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ऑनलाइन हमारे आरजे बैठते हैं वह कार्यक्रम के बीच बीच में 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक स्वास्थ्य संबंधी बातों को बताते हैं। यदि हमारा समाज स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, तभी वह खुशी का आनंद ले सकता है। किसी बीमार व्यक्ति को कहिए कि उसे जो है बाजा अच्छा लगेगा तो नहीं लगेगा। बाजा या संगीत उसी को अच्छा लगता है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। इसलिए रेडियो रिमझिम परिवार इस पर फोकस करता है और चाहता है यह कार्यक्रम प्रत्येक श्रोता सुने और अपना फीडबैक दें, ताकि हम और बेहतर से बेहतर कार्यक्रम बनाकर इसका प्रसारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है। नजमा खातू दरगाह रोड गोपालगंज से भेजी है, लिखी है, रेडियो रिमझिम टीम को सलाम। ऑनलाइन शो में हम देखते हैं कि कॉल, एसएमएस और वॉइस द्वारा भी गाना सुनाया जाता है और बीच में लगभग 30 मिनट आरजे नहीं रहते हैं, क्यों? इसमें सुधार किया जाए। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय नजमा जी, आपके पूरे परिवार को, दरगाह रोड में रहने वाले सभी निवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप रेडियो रिमझिम की एक अच्छी श्रोता हैं जो हमारे कमियों के तरफ इशारा कर रही हैं। चूंकि ऑनलाइन कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का जब प्रसारण दोपहर 12 बजे से शुरू होता है सोमवार से शनिवार तक, तो 2:15 पर राष्ट्रीय समाचार का प्रसारण होता है और जो हमारे आरजे हैं उनका लंच का टाइम भी हो जाता है। तो 15 मिनट समाचार, 15 मिनट लंच का टाइम, यानी 30 मिनट उन्हें मिल जाता है। उसके बाद 2:45 पर यह कार्यक्रम शुरू हो जाता है। यही वजह है कि 30 मिनट तक कार्यक्रम बाधित रहता है। आपको पता ही है कि सुबह 8 बजे राष्ट्रीय समाचार, दोपहर 2:15 पर राष्ट्रीय समाचार, रात को 8:45 पर राष्ट्रीय समाचार और रात को 11 बजे हिंदी और अंग्रेजी में राष्ट्रीय समाचार का हम प्रसारण करते हैं। चूंकि वह समाचार दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से रिले होता है, जिसे हम स्वीकार करके अपने क्षेत्र में इसका प्रसारण करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि नजमा जी, आप मेरे उत्तर से संतुष्ट होंगी। आगे कार्यक्रमों के बारे में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है वृंदावन से उमेश बैठा जी का, लिखे हुए हैं, रेडियो रिमझिम परिवार को नमस्कार। मुझे आपका संदेश मिला कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हवा महल कार्यक्रम साफ सुनाई नहीं देता है जो शनिवार को बजता है। सुबह में राष्ट्रीय समाचार लेट से चलता है, इसे सुधार किया जाए। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय बैठा जी, आपके पूरे परिवार को, आपके ग्रामवासियों को, पंचायतवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप बड़े ही ध्यान से और शांत स्वभाव होकर रेडियो रिमझिम 90.4 को सुनते हैं। मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से कई बार कहा है कि जो रेडियो रिमझिम को लगातार और नियमित सुन पाता है वही हर बात के बारे में हमें बता सकता है। आपकी बात सही है, हवा महल कार्यक्रम आकाशवाणी का बड़ा ही लोकप्रिय कार्यक्रम आज से 30 साल 40 साल पहले हुआ करता था। जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग साथी हैं, उन्हें याद होगा कि हवा महल रात को 8:30 से प्रसारित होता था आकाशवाणी पटना से भी और गोरखपुर से भी, और उस समय वे लोग सुनते थे। तो मेरे मन में यह ध्यान आया कि क्यों न जो पुराने कुछ कार्यक्रम हैं उसे जो है नई पीढ़ी को सुनाया जाए, उनकी प्रतिक्रिया ली जाए। तो कई लोग बहुत अच्छे प्रतिक्रिया दे रहे हैं और आपकी बात सही है, उसकी आवाज़ का लेवल जो है बड़ा ही डाउन है। तो जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, जो युवा साथी हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि उसका लेवल ठीक करें और हवा महल को साफ और स्पष्ट शब्दों में सुनाएं। दूसरी बात आपने रखा है कि सुबह 8 बजे का समाचार जो है जो आकाशवाणी नई दिल्ली से आता है उसके प्रसारण में लेट होता है। तो मेरे ध्यान में अभी तक आया है कि ऐसी घटनाएं बहुत कम होती है, अगर कभी हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। चूंकि हमें पता है कई लोग जो है काम पर निकलने वाले होते हैं और 15 मिनट का यह समाचार जो है पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय या प्रांतीय स्तर का होता है जो आकाशवाणी दिल्ली देता है, और उसमें हर बात की जानकारी मात्र 15 मिनट में मिल जाती है। तो हमारा यह प्रयास होगा कि पूरा का पूरा समाचार आपको सुनाया जाए और भविष्य में रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से ऐसी चूक ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है अतुल कुमार पांडे जी का विक्रमपुर से। सर नमस्कार, मुझे रेडियो रिमझिम के सभी कार्यक्रम बेहद अच्छे लगते हैं। सुबह शाम जो प्रादेशिक समाचार चलता है उसका आवाज बहुत कम आता है, उसे सुधार किया जाए तथा समय के साथ कार्यक्रम में भी बदलाव किया जाए। तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय पांडे जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से पिछला आपका संदेश मिला में हमने बताया था कि दूसरे से लेकर तीसरे को हम देते हैं और हम मीडिएटर है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी पटना से रिले किया जाता है और हमारा भी प्रयास होता है कि वह साफ और स्पष्ट आप लोगों तक पहुंचे, और इसकी शिकायत मैं समाचार निदेशालय को भी किया हूं। फिर भी मैं अपने तरफ से प्रयास करूंगा कि प्रादेशिक समाचार का लेवल हम लोग थोड़ा बढ़ाएं और आवाज़ आप तक स्पष्ट पहुंचे। चूंकि रेडियो रिमझिम का कार्यालय का नंबर, रेडियो रिमझिम के फेसबुक पर भी हम लोग एक पोस्टर बनाकर डाल दिए हैं कि यदि कहीं कोई बात हो तो उसी समय आप फोन कर सकते हैं और यह इस तरह की बातों को बता सकते हैं। इसी क्रम में मुझे एक बात याद आया कि जब ऑनलाइन प्रोग्राम, चाहे वो SMS हो, प्योर वॉइस योर चॉइस हो, इन कार्यक्रमों के बीच बीच में रेडियो रिमझिम के कार्यालय पर कई हमारे आदरणीय श्रोता फोन करने लगते हैं कि हमारा नंबर जल्दी आए, चूंकि वह कार्यालय का नंबर है, उस नंबर पर अधिकतर ऑफिशियल काम हम लोग करते हैं। और गाने के लिए जो है अलग से रेडियो रिमझिम के फेसबुक पर हम लोगों ने नंबर अंकित करके पोस्टर लगा दिया है, उस पर कौन सा कार्यक्रम कब चलता है, कितने बजे चलता है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, वह सब लिख कर डाल दिया गया है। फिर भी कई श्रोता कार्यालय के नंबर पर फोन करके अपनी फरमाइश को पूरा कराना चाहते हैं, जो हमारे लिए असंभव है। तो इस पर विशेष ध्यान रखें कि आप किस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, उस कार्यक्रम का नंबर यदि आपके पास नहीं है तो रेडियो रिमझिम के फेसबुक देखकर नंबर नोट कर लें। वैसे जो रेडियो रिमझिम के बेहतरीन आरजे हैं, वह हर 15 मिनट 10 मिनट 30 मिनट के बीच में नंबर बताते रहते हैं, कार्यक्रम शुरू करने से पहले बताते हैं। फिर कई श्रोता जो है बाद में रेडियो चालू किए हैं तो उनके लिए आधा कार्यक्रम बीतने के बाद भी बताते हैं, और जो 4 घंटा का कार्यक्रम है हमें लगता है कि 3-4 बार आरजे द्वारा बताया जाता है। और कई हमारे श्रोता हैं, जैसे ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है उसमें वीडियो कॉलिंग कर देते हैं, नेट कॉलिंग कर देते हैं, तो कहा जाता है कि जिसके पास धैर्य नहीं है उसे किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है। इसलिए मेरा यह आदर पूर्वक निवेदन आग्रह है कि जो ऑनलाइन हमारे आरजे बैठते हैं, हमने कई बार बताया, उनके पास डबल कंप्यूटर होता है, फिर मिक्सचर होता है, फिर जो है मैसेज या ऑडियो को सुनना पड़ता है, पहले चलाने से पहले मैसेज को पढ़ना पड़ता है, वह जो है घबरा जाते हैं जब वीडियो कॉलिंग नेट कॉलिंग या फोन आने लगता है उस नंबर पर। इसलिए आपसे आदर पूर्वक आग्रह है कि इस तरह का कार्य न करें, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम बेहतर कार्यक्रम की प्रस्तुति नहीं कर पाएंगे। और हमारे कई ऐसे शानदार जानदार और अच्छे व्यक्तित्व के श्रोता हैं जो अपनी फरमाइश को सही ढंग से पेश करते हैं। जैसे SMS फरमाइश है तो वह अपना मैसेज भेज दिए, चुप लगा गए। फिर हमारे आरजे कहते हैं कि यह जो है थोड़ा पीछे चला गया है, इसका रिपीट कीजिए, तो हमारे आदरणीय श्रोता उसे रिपीट कर देते हैं। उसी तरह ऑनलाइन कार्यक्रम जो रेडियो रिमझिम में काम कर रही बच्चियां हैं, बेटियां हैं, वे भी चाहती हैं कि आप लोग वीडियो कॉलिंग या नेट कॉलिंग या डायरेक्ट कॉलिंग नहीं करें, ऑडियो मांगा जा रहा है, SMS मांगा जा रहा है, तो उसी के माध्यम से आए। तो आप लोगों का एक छोटा सा सहयोग जो है बेहतर कार्यक्रम प्रस्तुत करने में बड़ा ही सहायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है सिसवनिया लाइन बाजार से मंकेश्वर प्रसाद जी का। सर नमस्कार, गोपालगंज हालचाल यूट्यूब और ऐप पर सुनता हूं, जो काफी पॉजिटिव न्यूज देता है। मेरा सुझाव है कि हालचाल में कुछ और विषय को जोड़ा जाए, तो सर इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
0: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे परिवार को, आपके ग्रामवासियों को, आपके क्षेत्रवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। रेडियो रिमझिम का YouTube पर हालचाल गोपालगंज जो आता है उसे प्रतिदिन कई हजार लोग सुनते हैं। रेडियो पर जब आता है तो गोपालगंज जिले के पूरी जनसंख्या का 25-50% लोग बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। हमें भी अच्छा लगता है। आप देखे होंगे लगातार सौ समय पर हालचाल गोपालगंज का प्रसारण होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे कई ऐसे श्रोता हैं जो गाना कम सुनते हैं लेकिन न्यूज उन्हें चाहिए। उसी तरह कई ऐसे श्रोता हैं जिन्हें न्यूज से कम मतलब है लेकिन गाना सुनना चाहते हैं। तो सबका साथ लेकर, सबकी पसंद लेकर रेडियो रिमझिम प्रसारित करता है। दूसरी बात आपने रखा कि रेडियो रिमझिम हमेशा पॉजिटिव न्यूज देता है, तो यह मेरा मानना है कि जीवन में सकारात्मक होना बहुत अच्छी बात है। जीवन में जब आप सच्चा रहिएगा तो आपको कष्ट झेलना होगा। बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा है कि झूठ बोलने वाले के बहुत सारे साथी होते हैं, बहुत सारे मित्र हो जाएंगे, लेकिन आप सत्य के साथ रहिएगा तो अकेला पड़ जाइएगा। और वही स्थिति हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी महसूस किए हैं। तो शुरू से ही हालचाल हमेशा पॉजिटिव न्यूज, सकारात्मक न्यूज देता है और नेगेटिव न्यूज से भागता है। जो सूचना देने से हमारे श्रोताओं के जीवन में बदलाव आए, जिस सूचना को पाने से उन्हें कुछ जानकारी प्राप्त हो, उस तरह की सूचना देने में हम लोग दो कदम आगे रहते हैं। तीसरी बात आपने रखा कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए, तो हम लोग बदलाव के लिए विचार कर रहे हैं। यदि आपके भी मन में कोई नया चीज है कि हालचाल में यह छूट रहा है, इसे जोड़ना चाहिए, तो अगले आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप जरूर बताइएगा, क्योंकि हम जो है आप सबके विचारों पर अपना प्रसारण करते हैं और आपकी पसंद जो है रेडियो रिमझिम परिवार की पसंद है। यह मानकर चला जाता है कि रेडियो रिमझिम के जो श्रोता हैं वह हमसे बेहतर है, हमसे ज्यादा सोचते हैं और हमें जो है अच्छी अच्छी सुझाव देते हैं, जिसके बदौलत रेडियो रिमझिम को राष्ट्रीय, प्रांतीय और जिला स्तर के कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। और इसका सारा क्रेडिट, सारा श्रेय जो है आप सबका है। तो हालचाल गोपालगंज में यदि कुछ बदलाव चाहते हैं या नया कुछ जुड़वाना चाहते हैं तो आप जरूर बताइएगा, हम इसका खैर मकदम करेंगे, स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है, आरती कुमारी बघौच मतिया से भेजी है। सर नमस्कार, मैं रेडियो रिमझिम की बहुत पुरानी श्रोता हूँ। मुझे रेडियो रिमझिम के लगभग सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, यहाँ तक कि विज्ञापन भी और रेडियो से अलग है, तथा 15 अगस्त भी आने वाला है तो राष्ट्रीय गीत भी बजाया जाए। और मेरा सुझाव है कि गोपालगंज जिले की महिलाओं की सफलता की कहानी को सुनाया जाए। तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें। साथ ही देखें तो मेरे पास अभी कई संदेश हैं, लेकिन समय का इशारा है कि कार्यक्रम को समापन करना चाहिए, तो प्रतिक्रिया देते हुए कार्यक्रम को समापन करें और विदा लें।
0: आदरणीय आरती जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। काफी अच्छा लगा कि आप लंबे समय से रेडियो रिमझिम को सुनती हैं। हमें लगता है कि आपका पूरा परिवार रेडियो रिमझिम को सुनता है, क्योंकि जो गहराई से आपने बात को रखा है वह लगातार और नियमित सुनने वाला व्यक्ति ही बता सकता है। आपने हमारी काफी प्रशंसा की कि रेडियो रिमझिम के गीत संगीत के अलावा आपको रेडियो रिमझिम का विज्ञापन भी अच्छा लगता है। तो आपको बताते चलूं कि विज्ञापन जो बनाने की हमारी टीम है वह बड़े ही कौशलपूर्ण है, और समय के साथ विज्ञापन बनाने की कला में काफी दक्ष है। कई रेडियो स्टेशन हम लोगों से आग्रह करते हैं कि मेरा यह विज्ञापन बनाकर कृपया दीजिए, चाहे वह उत्तर प्रदेश का रेडियो स्टेशन हो या बिहार का, तो हमारे जो सहयोगी हैं वह बना देते हैं, सहयोग कर देते हैं। आपने सही कहा, गीत संगीत के अलावा भी रेडियो रिमझिम का विज्ञापन जो है काफी अच्छा लगता है। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छी याद दिलाई कि हम लोग का राष्ट्रीय त्योहार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका त्योहार 15 अगस्त जो है आने वाला है, उसके लिए हम लोग जरूर राष्ट्रीय गीत प्रतिदिन कुछ न कुछ बजाएंगे। यह जानकर हमें भी अच्छा लगा कि जब मैं कुछ बातों को विस्मित हो जाता हूँ तो हमारे आदरणीय श्रोता हमें याद दिलाते हैं। और तीसरी बात आपने रखा कि गोपालगंज जिले की महिलाओं की सफलता की कहानी सुनाया जाए, तो हम लोग इस पर कभी विचार ही नहीं किए। आपने सही दिशा में हमें दिशा निर्देशित किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे गांव या शहर में रहने वाली कई महिलाएं जो है शून्य से शिखर के तरफ गई है और अपने परिवार का तकदीर बदल दी है। पुरुष तो है ही, लेकिन महिलाओं ने भी शून्य से शिखर के तरफ जाते समय अपने पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति बदली है। इस तरह के दो चार महिलाओं को हम तो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, लेकिन आपने जब ध्यान आकर्षित किया तो इस तरह के महिलाओं की बातचीत, इंटरव्यू और कहानी के माध्यम से या इंटरव्यू के माध्यम से जरूर सुनाएंगे। कहा जाता है कि पूरे संसार की आधी आबादी जो है महिलाएं हैं, और जिस घर में परिवार में महिलाओं का आदर होता है वहां लक्ष्मी जी मुस्कुराते रहती है, उस घर में जो है सुख और शांति बना रहता है। और जहां घर में कलह होता है, छोटे छोटे बातों पर क्लेश हो जाता है, बड़े बुजुर्ग का आदर नहीं होता है, वहाँ जो है बड़ा ही माहौल जो है अलग हो जाता है। इसलिए मेरा यह आग्रह रहता है कि रेडियो रिमझिम को सुनने वाले सभी लोग अपने जीवन की कहानी यदि हम लोगों के साथ साझा करते हैं तो हम अपने रेडियो से इसका प्रसारण करेंगे। हमने कई लोगों को अपने जीवन में देखा है कि अपनी जीवन की शुरुआत एक मजदूर के रूप में किया और आज जो है बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिए। कई लोगों को ऐसे देखे हैं कि जो एक प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक के रूप में कार्य किए, लेकिन अपने बच्चों को इतना योग्य बना दिए कि वे बच्चे जो है आज देश में और विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह देखकर सुनकर काफी अच्छा लगा। जीवन का 6 दशक पूरा करने के बाद हम ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि जीवन के हर पहलू को समझने संवरने का मौका मिला। यदि कोई धान का रोपनी खेत में नहीं किया है तो वह अलग खड़ा होकर केवल फोटो खींच सकता है या फोटो खिंचवा सकता है और फेसबुक में लगा सकता है, लेकिन जिसका धान के रोपनी के समय पैर सड़ा है, वह जो है मरहम लगा लगा के कपड़ा बांध बांध के प्लास्टिक से और रोपनी किया है, तो वह जो है सही दर्द को पहचानता है। हमारे जमाने में लोग जो है अलता लगा लेते थे पैरों में, तब पानी में घुसते थे। आज के दौर में खेत में धान रोपनी से पहले इतना खाद दिया जाता है कि कई हमारे साथी जो है प्लास्टिक बांध कर खेतों में उतर जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो जीवन के शून्य से शिखर के तरफ चढ़ा है वह जीवन के हर पहलू से गुजरा है। और मेरा यह अनुभव रहा है कि परिश्रम के अलावा जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है, चाहे वह पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वह श्रम का क्षेत्र हो। जिसने लतरी दहनी किया है उसका वंश भी आज लतरी दहनी करेगा, और जो परिश्रम के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। वह जितना में था उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा, लेकिन जीवन जो है सुख शांति से बीत रहा है। कई लोग कहते हैं कि उसके बाप दादा सरकारी सेवा में रहे, बहुत सारा धन कमाए, लेकिन वह धन जो है किस काम का है जहां उनके बच्चे जोगे नहीं हो पाए। सही पिता और माता वही है कि अपने जीवन को संवारते हुए बच्चों का जीवन सुधारे और उन्हें संस्कार के साथ जीवन में जीने का अधिकार बताए। जीवन जो है एक खूबसूरत चीज है जो बार बार मिलने वाला नहीं है, और जब एक बार मिला है तो इसके खूबसूरती को पहचाने। कई बार ऐसी घटनाएं घटती है जिसे देखकर हृदय जो है दर्पित हो जाता है, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, दूसरों के साथ रहना है, दूसरों का सहयोग करना है। और जीवन में जब हम दूसरे का सहयोग करेंगे तो आत्मा और परमात्मा का आशीष हमको मिलेगा। इसलिए सत्य के साथ चलिए, चाहे कितना भी परेशानी हो, और छोटी छोटी बातों में मत उलझिए। जीवन मूल्यवान है, अनमोल है, और किसी को दबाने से कोई दबता नहीं है। पानी जब बोरिंग का आने लगता है तो अंगूठा से दबाया जाता है ताकि प्रेशर बने, और जब प्रेशर बन जाता है तो अंगूठा को हटा दिया जाता है ताकि हथेली फट नहीं जाए। तो जिसके पास विद्वता है, योग्यता है, मेहनत करने की क्षमता है, वह जो है जीवन के शिखर तक जाएगा। और जो दहिने बाएं कर रहे हैं कुछ समय के लिए चमकेंगे, फिर टूटते हुए तारे के तरह आकाश में विलीन हो जाएंगे। तो इस अनमोल जीवन को बेहतर ढंग से जिए, तनाव मुक्त होकर जिए, और हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देते रहे कि हमारे भाग्य से अधिक आपने हमें सुख समृद्धि दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आदरणीय श्रोता बंधु, आपका संदेश मिला कार्यक्रम का समय अब समाप्त होने वाला है। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: तो श्रोताओं, ये रहा आज का संदेश मिला कार्यक्रम। यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं तो आप भी भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28, तथा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291, और ईमेल आईडी है radiorimjhim@gmail.com। आप जिस माध्यम से अपने शिकायत, सुझाव या प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं उस माध्यम का उपयोग करके हम तक पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें भी दीजिए जाने की इजाजत। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।
2: आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द,
3: या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434668 पे।
9: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3092 या 9765-6675।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
7: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
9: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
10: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
9: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर अपने घर के साथ। मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार। केरल में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
6: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
6: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
5: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
6: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
5: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
7: आवाम की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करे, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत का भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
5: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जन भागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
8: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
5: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
9: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई यह योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में एआई दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
10: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
11: पेडागॉजी देयर एंटायर वे ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन।
5: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
12: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितंबर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
5: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत की जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
13: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का

0: ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षक क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
1: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो एरिना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी वांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो कमलाराय कॉलेज रोड गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 9656 59।

0: 36 या 9056 57902। कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करे 86034-48652 पे।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
10: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देह व्यापार का हुआ भंडाफोड़, 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। सरकारी भूमि विवाद में BDC सहित 3 लोगों पर जानलेवा हमला। कोर्ट के आदेश पर अलग अलग जगहों से कई अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। माझा थाना की पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतापपुर चार मुहानी के बगल में पेड़ के पास अवैध हथियार के साथ कोई व्यक्ति खड़ा है। पुलिस वहां पहुंची तो आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पकड़ा गया आरोपी आशिफ अली, पिता जमालुद्दीन, साकिन सुरवनिया, थाना माझागढ़ का निवासी है। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने पास की ही झाड़ी में अवैध हथियार को छुपा रखा है। उसके निशानदेही पर झाड़ी में रखे लाल रंग के झोले से एक अवैध देशी कट्टा को बरामद किया गया, जिसके बाद हथियार और मोबाइल को जब्त करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आज इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। साथ ही अवैध हथियार के नेटवर्क और इसमें संलिप्त अन्य अभियुक्तों के संबंध में भी मानवीय और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर अनुसंधान की जा रही है। इधर गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मीरगंज थाना क्षेत्र में मरछिया देवी चौक के पास स्थित वन बाइट रेस्टोरेंट के बेसमेंट से अनैतिक देह व्यापार के एक बड़े धंधे को उजागर किया है। बताया जा रहा है कि इसमें केबिन बनाकर देह व्यापार का धंधा संचालित किया जा रहा था। पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हथुआ और थानाध्यक्ष मीरगंज के साथ एक विशेष टीम बनाते हुए यहां रेस्टोरेंट में विधिवत छापेमारी की। इस दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आरोपी अमित सिंह पिता विजय सिंह साकिन डुमरी छपरा थाना डोरीगंज का निवासी है और दूसरा मनीष कुमार राय पिता परमा राय साकिन धमौरा थाना बाबू बरही जिला मधुबनी का निवासी है। दोनों को अभिरक्षा में लेकर पुलिस ने पूछताछ किया। पूछताछ के दौरान रेस्टोरेंट के स्टाफ अमित सिंह और मनीष कुमार ने बताया कि वन बाइट रेस्टोरेंट के संचालक दिव्यांशु सोनी उर्फ बिट्टू के निर्देशानुसार रेस्टोरेंट के बेसमेंट में अनैतिक देह व्यापार का संचालन किया जाता है। इस कार्रवाई में पाए गए 3 पुरुष एवं 3 महिलाओं को बंध पत्र पर मुक्त किया गया एवं रेस्टोरेंट में कार्यरत दोनों कर्मचारियों अमित सिंह एवं मनीष कुमार राय को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इसमें मीरगंज थाना कांड संख्या 400/2026 दर्ज करते हुए अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और पकड़े गए आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। माझा थाना क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कब्जा करने का विरोध करने पर एक बीडीसी सदस्य सहित 3 लोगों पर जानलेवा हमला किया गया। मामला डुमरिया महुआ टोला का बताया जा रहा है। इस हमले में गौसिया पंचायत के बीडीसी सदस्य सुनीता देवी, उनके पति ज्योतिष शर्मा और ससुर सत्यदेव शर्मा गंभीर रूप से घायल है। पीड़ितों पर लाठी डंडे और चाकू से हमला की बात बताई जा रही है। सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर देखते हुए कुछ को सदर अस्पताल रेफर किया गया। पीड़ित पक्ष के अनुसार गांव में वर्षों से एक सरकारी जमीन पर आम रास्ता था। आरोप है कि गांव के ही कुछ लोग उस पर अवैध निर्माण कर रहे थे। जब बीडीसी सदस्य उनके परिवार के लोग तथा ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। फिलहाल बीडीसी सदस्य के बयान पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। न्यायालय के आदेश पर आज कई अलग अलग थाना क्षेत्रों से अलग अलग मामलों में अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। नगर थाना की पुलिस ने चोरी कांड में एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। इसका नाम विशाल कुमार पिता छोटन रावत साकिन हरखुआ थाना नगर बताया जा रहा है। इस पर पहले से मामला दर्ज था और यह फरार चल रहा था। आज पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साथ ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध नियंत्रण को लेकर लगातार कार्रवाई करते हुए नगर थाना की पुलिस ने एक और हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त रंजीत कुमार पिता हरेंद्र महतो साकिन हरपुर थाना नगर जिला गोपालगंज को भी इसके घर से विधिवत गिरफ्तार करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कुचायकोट थाना की पुलिस ने भी 34 लीटर देशी शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच के दौरान एक स्कूटी से 25 लीटर देशी शराब बरामद किया और इसमें रोहित कुमार को गिरफ्तार किया गया। यह ओलीपुर थाना नगर के हरकेश यादव का पुत्र है। दूसरा अवैध शराब के साथ अभियुक्त सुरेश शाह को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह रामलाल शाह का पुत्र है और सासामुसा का रहने वाला है। इनकी गाड़ी और शराब को जब्त कर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर भोरे थाना की पुलिस ने 15 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 2 आरोपियों को शराब के साथ गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपी घनश्याम सिंह पिता स्वर्गीय राजवंशी सिंह साकिन हरदिया, दूसरा सुनील शुक्ला पिता स्वर्गीय अर्जुन शुक्ला साकिन जोरावर छापर, तीसरा गोविंद कुमार कुशवाहा पिता भीरगुन भगत साकिन भोरे को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी आरोपी भोरे थाना क्षेत्र के ही निवासी बताए जा रहे हैं। इनकी गाड़ी और शराब को जब्त करते हुए तीनों को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कटिहार थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त हरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। यह पंचदेवरी के शिव बच्चन शर्मा का पुत्र बताया जा रहा है और इस पर पहले से हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था। पुलिस इसे ढूंढ रही थी, अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस तरह से पुलिस ने आज कई मामलों में गिरफ्तार अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साथ ही सभी थानों पर चौकीदारी परेड का भी आयोजन किया गया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी थाना अध्यक्षों के नेतृत्व में चौकीदारी परेड करते हुए सभी महाल चौकीदारों को थाने पर आवश्यक निर्देश दिए गए। थाना अध्यक्षों ने कहा कि सभी महाल चौकीदार अपने अपने क्षेत्र में सतर्क और सक्रिय रहकर संदिग्ध गतिविधियों, असामाजिक तत्वों और जेल से छूटे हुए पेशेवर अपराधियों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखें। साथ ही स्थानीय आसूचना तंत्र को और अधिक मजबूत करने तथा इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश का पालन करने का भी निर्देश दिया गया। आज गोपालगंज के कमला राय महाविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्तुत नशा मुक्ति युवा और विकसित भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र और भारत स्काउट गाइड कैडेट के छात्र भी इसमें उपस्थित रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी तथा मध्य निषेध पदाधिकारी और कमला राय महाविद्यालय के प्राचार्य भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने युवाओं को जागरूक किया, नशा से दूर रहने की सलाह दी और साथ ही इस योजना के संदर्भ में आवश्यक जानकारी दी गई। मीरगंज बाईपास पर आज सुबह बिजली के खंभे से एक ट्रक जाकर टकरा गया और पलट गया। यह हादसा इतना भीषण हुआ कि खंभा क्षतिग्रस्त होकर गिर गया, जिसमें 11,000 वोल्ट की तार प्रवाहित हो रही थी। गनीमत रहा कि किसी की जान नहीं गई, परंतु तार टूटने की वजह से लछवार फीडर लाइन ठप हो गया। कई घंटों तक विद्युत आपूर्ति बाधित रही। बिजली विभाग की टीम नया खंभा लगाकर देर शाम तक आपूर्ति बहाल करने में जुटी हुई थी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देह व्यापार का हुआ भंडाफोड़, दो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। सरकारी भूमि विवाद में BDC सहित 3 लोगों पर जानलेवा हमला। कोर्ट के आदेश पर अलग अलग जगहों से कई अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।
12: सुनिए सुनिए सुनिए,
13: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
12: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
13: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
12: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
14: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, और एक बार फिर से बॉलीवुड के कुछ सितारों की अनकही अनसुनी कहानियां और खूबसूरत गाने लेकर के आई हूं मैं आपके लिए। आज हम जिन मोहतरमा के बारे में बात करने वाले हैं, वो अपने को स्टार्स से लेकर अपने फैंस तक हर किसी की ड्रीम गर्ल रही हैं। समझ ही गए होंगे आप कि मैं किन की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल, द एपिटोम ऑफ ब्यूटी, हेमा मालिनी जी के बारे में। जितनी तारीफ करूँ मैं इनके खूबसूरती की उतनी कम है, तो उसे यहीं छोड़ते हैं और इनके काम के बारे में बात करते हैं। क्या आप जानते हैं अपने फिल्मी करियर में हेमा मालिनी जी ने 150 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। तभी तो उन्होंने सिनेमा की हिस्ट्री में अपना एक अलग ही मार्क सेट किया है। जॉनी मेरा नाम, अंदाज, लाल पत्थर, सीता और गीता जैसी फिल्मों के चैलेंजिंग रोल्स को इन्होंने एक्सेप्ट किया था। ड्रीम गर्ल का टाइटल इनके लिए परफेक्ट है, ये हेमा मालिनी जी ने टाइम एंड अगेन प्रूव किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि उनका फिल्मी करियर शुरू होने से पहले ही ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। ऐसा आखिर हुआ क्या था बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले लता जी की आवाज में अगला गाना सुनाने वाली हूँ आपको, सुनिए जरा।

रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, और आज लेकर आई हूँ मैं ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ। 70s का वो समय था जब हेमा मालिनी जी वन ऑफ द टॉप हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में मानी जाती थी। अगर टॉप 5 की गिनती करें तो तीसरे चौथे नंबर पर इनका नाम हमेशा आया करता था। हो भी क्यों ना, एक्टिंग, डांसिंग, फैशन सभी में ये ट्रेंड सेटर थी। लेकिन क्या आपको पता है, अपना करियर शुरू करते समय 1963 का वो समय था जब हेमा मालिनी जी ने 2 तमिल फिल्मों में एज अ बैकग्राउंड डांसर काम किया था, और बस उसके बाद में उन्हें उनका पहला ऑफर मिला था। तमिल फिल्म डायरेक्टर सीवी श्रीधर जी उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन कास्ट करने के समय पर उन्होंने हेमा जी को वापस घर भेज दिया था, ये कह के कि हेमा जी बहुत पतली हैं और इतनी पतली हैं कि स्क्रीन पे उन्हें कोई हीरोइन जैसे देख ही नहीं पाएगा। लेकिन ये सुनने के बावजूद भी हेमा जी ने गिव अप नहीं किया था। उन्होंने अपना हाथ बॉलीवुड में आजमाने की कोशिश की, और वहां पर शी मेड इट रियली रियली बिग, और ये तो हम सब लोग जानते ही हैं। 1968 में इन्होंने अपना डेब्यू किया राज कपूर जी की सपनों के सौदागर के साथ। वैसे डिड यू नो, हेमा जी वो एक अकेली ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने बॉलीवुड में सभी राज कपूर के क्लैन के जो एक्टर्स थे उनके साथ में काम किया। सभी कपूर खानदान के जितने उस समय एक्टर्स थे, जैसे राज कपूर जी के साथ सपनों का सौदागर में, अंदाज में शम्मी कपूर जी के साथ, त्रिशूल में शशि कपूर के साथ, हाथ की सफाई में रणधीर कपूर के साथ, एक चादर मैली सी में ऋषि कपूर के साथ, तो सभी कपूर भाइयों के साथ में इन्होंने काम तो किया है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि धर्मपाल जी, हेमा मालिनी जी, इनकी लव स्टोरी चाहे कितनी भी फेमस क्यों ना हो, पर धर्म जी के हेमा जी की जिंदगी में आने से पहले 2 और सुपर हिट एक्टर्स थे जिन्होंने की हेमा जी को प्रपोज किया था। कौन थे वो बताऊंगी आपको, लेकिन उसके पहले हमारी रजिया सुल्तान का ये गाना ए दिले नादान, लता जी की आवाज में सुनिए जरा।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710-3092 या 9765-65750।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। धर्म जी और हेमा जी की क्या खूब कहानी थी, कितनी मुश्किलें इन्होंने भी फेस की। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट लव स्टोरीज, रियल लाइफ लव स्टोरीज दैट बॉलीवुड हैज एवर सीन, ये कैसे मुकम्मल हुआ ये मैं आपको बताऊं। उसके पहले आपको बताती हूँ कि जितेंद्र जी और संजीव कुमार जी, ये दोनों भी हेमा जी की अदाओं के कायल हुआ करते थे। जी हाँ, इनफैक्ट शादी के लिए दोनों ने, जितेंद्र जी और संजीव कुमार जी दोनों ने हेमा जी को प्रपोज भी किया था, लेकिन हेमा जी ने दोनों को मना कर दिया था। जितेंद्र जी के बारे में हेमा जी ने इनफैक्ट सोचा भी था, थोड़ा सा थॉट दिया था, लेकिन फिर इनके बीच में कुछ परेशानियां ऐसी हुई कि जितेंद्र जी की दी हुई अंगूठी को सीधा समुद्र में फेंक करके आ गई थी हेमा जी, ऐसा गुस्सा था उनका। शोले फिल्म के दौरान संजीव कुमार जी ने अपने प्यार का इजहार किया था हेमा जी की तरफ, लेकिन हेमा जी ने रिजेक्ट कर दिया था। और ये बात संजीव जी को इतनी बुरी लगी थी कि उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी जी को कह दिया था कि वो हेमा जी के साथ में एक फ्रेम में भी नहीं आना चाहेंगे। इसलिए आप देखेंगे ऑलमोस्ट सब जगह पर ये दोनों साथ में दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन अंदाज तो हमारे पंजाबी धर्मेंद्र जी का था, जो कि निराला था, जिस पर हमारी तमिलियन लड़की हेमा जी, हमारी ड्रीम गर्ल, फिदा हो गई थी। पहली बार वो धर्मेंद्र जी से मिली थी तुम हसी मैं जवां के सेट्स पर। उन दोनों ने 40 से भी ज्यादा फिल्मों में साथ में काम किया है। 1970 में पहली फिल्म साथ में की थी शराफत, और 1979 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन ये शादी आसान नहीं थी। धर्मेंद्र जी को प्यार तो हो गया था हेमा जी से, लेकिन धर्मेंद्र जी उस समय शादीशुदा थे। तो आखिर कैसे इन दोनों ने अपनी शादी की, कैसे अपनी लव स्टोरी को पूरा किया, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले प्रतिज्ञा फिल्म से रफी साहब की आवाज में मैं जट यमला पगला दीवाना, धर्म जी की तरफ से हेमा जी के नाम। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

0: बाजार होलसेल मार्ट, यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का।
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, हेमा जी और धर्मेंद्र जी की लव स्टोरी, बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लव स्टोरीज रही है। आज हम हेमा जी की जिंदगी के ही कुछ पन्ने पलट रहे हैं और आपको बताओ, शोले में एक्चुअली ठाकुर बलदेव सिंह का रोल धर्मेंद्र जी करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला है कि फिर संजीव कुमार जी के हाथ में वीरू का रोल आ जाएगा और उन्हें हेमा जी के साथ में रोमांस करने का मौका मिलेगा, तो उन्होंने तुरंत अपना माइंड बदल दिया। रमेश जी से बात की, रमेश सिप्पी जो कि फिल्म बना रहे थे उनसे बात की और खुद वीरू का रोल ले लिया। इनफैक्ट शूट के दौरान धर्म जी ने खुद बताया है कि वो टेक्नीशियंस को पैसे देते थे जिससे कि वो कुछ ना कुछ गलतियां करें, 100-100 रुपए सबको बांट देते थे, तो टेक्नीशियंस कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते थे और धर्मेंद्र जी को बार बार हेमा जी को हग करने का मौका मिलता रहता था। वही इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं वीरू और बसंती का प्यार। पर ये प्यार हमारी हेमा जी और धर्म जी के बीच में ऐसा था कि कोई धर्म भी इनके बीच में नहीं आया। धर्मेंद्र जी शादीशुदा थे, उनकी उनकी बीवी के साथ में बच्चे भी थे, बॉबी देओल, सनी देओल, ये दोनों उनकी पहली पत्नी के साथ में बच्चे हैं, लेकिन उनका तो दिल आ गया था हेमा जी पर, तो अब क्या किया जाए। आई थिंक ये बात वैसे छुपी नहीं है, लेकिन मैं फिर से बताना चाहूँगी कि धर्मेंद्र जी और हेमा जी ने अपना रिलीजन बदल लिया था, अपना धर्म बदल करके इस्लाम को कबूल किया था जिससे कि वो एक दूसरे से शादी कर सकें। आई थिंक प्यार में सभी कुछ जायज़ है, तो चलिए इन्हीं दोनों के प्यार के नाम, धर्मेंद्र जी और हेमा जी के प्यार के नाम अगला गाना सुनाऊंगी मैं आपको, लता जी और किशोर दा की आवाज में, साथ में यशुदास की भी आवाज है वैसे, मोहब्बत बड़े काम की चीज है। सुनिए ये गाना त्रिशूल फिल्म से और कुछ ही देर के बाद आपको बताऊंगी कि कौन हमारी हेमा जी की इतनी खास दोस्त है कि हेमा जी ने उनके बाल भी संवारे हैं, उनको बॉलीवुड में लेकर के भी वो आई थी, कैसे रहन सहन, कैसे हाव भाव होने चाहिए, ये भी हेमा जी ने सिखाया था। इंतजार कीजिए थोड़ा सा जानने के लिए कि क्या है उनका नाम। सुनते रहिए वीकेंड क्लास।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, और आज बॉलीवुड की द मोस्ट गॉर्जियस ड्रीम गर्ल हेमा जी की जिंदगी के बारे में हम कर रहे हैं बात। आपको पता है हेमा जी को पार्टीज में जाना पसंद नहीं था, इनफैक्ट रिवीलिंग कपड़े पहनना उन्हें कभी पसंद नहीं आया। वैसे इसके पीछे तो कारण यह है कि उन्होंने एक फिल्म में एक छोटी ड्रेस पहन ली थी और उसे देख करके उनकी मम्मी बड़ी नाराज हो गई थी कि ये कैसे कपड़े पहन के रखे। उन्हें इतनी बुरी लग गई थी अपनी माँ की कही हुई बात कि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो कभी भी छोटे कपड़े, स्विम सूट, बिकिनी, ये कभी भी स्क्रीन पर नहीं पहनेंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि उनकी माँ को फिर से उन पर उंगली उठानी पड़े। क्या आपको पता है हेमा जी इतनी अच्छी दोस्त हैं कि कोई इनकी दोस्ती पर भी कभी उंगली नहीं उठा सकता है। स्टारडम, फैन फॉलोइंग या जलन, ईर्ष्या, ये कभी भी इनकी और इनके दोस्तों के बीच में नहीं आ सकती थी। कई सारे दोस्त रहे हैं हेमा मालिनी जी के इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री के बाहर भी, लेकिन एक ऐसी दोस्त थी हेमा जी की जिनका नंबर आज तक भी हेमा जी कहती हैं कि उनके स्पीड डायल में नंबर वन पर होता है, और वो हैं रेखा जी। रेखा जी जब साउथ से आई थी बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए, तो हेमा जी ही वो थी जिन्होंने पूरी तरह से ग्रूम किया था रेखा जी को, और अपनी दोस्ती की खातिर वो, रेखा जी के बाल बड़े ही फ्रिजी और बहुत ही कर्ली हुआ करते थे, तो वो खुद से रेखा जी की चोटी बनाती थी, हेयर स्टाइल्स ट्राई करती थी, और रेखा जी को इस तरह से प्रेजेंटेबल बनाती थी कि वो जा करके ऑडिशंस दे करके आ सके। आई थिंक हेमा जी का दिल अगर किसी इंसान के साथ लग जाए या किसी चीज के साथ लग जाए तो वो पूरे जोश, पूरे दमखम के साथ, पूरे पैशन के साथ दोस्ती निभाती थी या अपना काम करती थी या अपना जो हॉबीज हैं वो भी पूरी तरह से निभाती थी और उन्हें फुलफिल करती थी, जैसे कि डांस। आज तक भी वो अपनी बेटियां यानी कि ईशा और आना के साथ में स्टेज परफॉर्मेंसेस करती हैं। नाट्य विहार कला केंद्र है जिसकी ये फाउंडर हैं और काफी सक्सेसफुल हैं ये। तो हेमा जी के पैशन के नाम चलिए बजाते हैं अगला गाना आपके लिए, मेरे नैना सावन भादो। इस मौसम पे भी परफेक्टली सूट करता है। सुनिए ये

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे, मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे, हम तुम मिलेंगे तो, हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जल स्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुवाई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के

0: विभाग ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिसमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपें। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BMZ कैमी बांस और सैंडी थाम के साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत में रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
2: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो, यही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country participated in the event, including My Bharat and National Service Schemes volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. India's economy is likely to grow around 7% in the first quarter of current fiscal, higher than earlier expectations, supported by stronger economic indicators, improved industrial activity, and a recovery in exports. According to an SBI Research Pre-Monetary Policy Committee report released yesterday, the growth estimate marks an improvement from the Reserve Bank of India's earlier projections, which were lowered because of geopolitical uncertainties. The Delhi government has notified a scheme to provide compensation to the next of kin or legal heirs of prisoners who die an unnatural death while in custody within the prisons of the National Capital Region. Under this scheme, compensation of up to 7.5 lakh rupees will be awarded depending on the specific circumstances. Compensation of 5 lakh rupees has been fixed for cases involving negligence in the discharge of duties by prison officials or staff, negligence by medical or paramedical personnel, and cases of prisoner suicide. All arrangements are in place for the counting of votes for the by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh tomorrow. Polling for the Bankipur constituency in Bihar, Manjalpur in Gujarat and Datia in Madhya Pradesh were held on the 30th of last month. Counting of votes will begin at 8 a.m. tomorrow. The self-enumeration facility for Census 2027 has commenced in Assam from today. Citizens can now submit their household and individual details online through the dedicated portal se.census.gov.in. The self-enumeration facility will remain available until August 16, ahead of the house listing operation and housing census scheduled to begin on August 17. Over 88,06,000 enumeration forms across the national capital have been digitized as of today, according to the Office of Chief Electoral Officer of Delhi. About 1,45,00,000 forms have been distributed as part of special intensive revision of electoral rolls in Delhi. The house-to-house distribution of electoral enumeration forms is currently underway in Delhi. Electors can fill the enumeration form online at www.voters.eci.gov.in. In Odisha, the flood situation is improving as Mahanadi River recedes. However, the situation remains challenging in the worst affected districts. Shortages of drinking water, extensive crop damage and destruction of houses have added to the hardships of flood affected families. The 2026 Commonwealth Games will come to a close with a spectacular closing ceremony at the iconic Hydro Arena in Glasgow tonight. On the occasion, Ahmedabad will receive the Commonwealth Games flag and the host baton in a ceremonial handover during the closing ceremony, marking India as the host for the centenary 2030 edition. And that is the end of this news bulletin.
3: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से। सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल कहे सुनो दिल से।

दामाद जी कुछ कहलन हा का? मनोज बाबू के साथ ही रिश्ता से खुश तो बाड़ू ना।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: रोती हुई आंखों में भी इंतजार होता है, रोती हुई आंखों में भी इंतजार होता है, न चाहते हुए भी किसी से प्यार होता है। क्यों देखते हैं हम बहुत सपने जिनके टूटने पर भी उनके सच होने का इंतजार हो।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम और समय हो गया है हेलो माय चॉइस का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी फरमाइश। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
2: कौन बोल रहा है?
1: जी मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
2: मैं, आप कैसे हो?
1: जी मैं बढ़िया हूँ, आप अपना बताइए।
2: मैं भी बढ़िया हूँ। मैं एक गाना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ।
1: जी सारी
2: गाना रिक्वेस्ट है जीना सिर्फ मेरे लिए टाइटल सॉन्ग।
1: ओके,
2: तो मैंने पूछना था ये रिकॉर्डिंग कब होती है, ये रिकॉर्डिंग कब मैं सुन सकता?
1: ये आपका कल बजेगा।
2: कल सुन सकता हूँ, क्या टाइम?
1: आज भी बज सकता है।
2: आज 5 से 7 बजे ये प्रोग्राम लगता है? कितने दिन लगते हैं?
1: 5 से 7 बजे।
2: ठीक है, एक दफा रिपीट लगा या एक और भी रिपीट?
1: हाँ
2: ठीक है, तो प्लीज मेरे वो गाना लगा लेना।
1: जी वैसे आपका नाम?
2: मेरा नाम है मोहम्मद वकार।
1: और कहाँ से?
2: क्या
1: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: गाना बोला है जीना सिर्फ मेरे लिए।
1: ठीक है, और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मेरा नाम है मोहम्मद वकार।
1: जी, और मतलब किस जगह से बोल रहे हैं आप?
2: मैं किधर से बोल रहा हूँ? स्कॉटलैंड ग्लासगो सिटी से बोल रहा हूँ।
1: ओके,
2: तो मैं आपका प्रोग्राम बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, तो प्लीज गाना लगा लेना मेरे लिए। ठीक है
1: जी।
2: ओके, नमस्ते
1: नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: आप कौन बोल रही? भारती हो का कौन बोल रही?
0: जी मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
1: मनोरमा
0: जी
1: बढ़िया है, कैसी हो आप?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। नाम बता दीजिए अपना।
1: मेरा नाम है गोपाल ओझा, ग्राम ककवासा, जिला गुना से।
0: कहाँ से?
1: जिला गुना ककवासा।
0: ये कहाँ पड़ता है?
1: जी अपने गुना पड़ता है भोपाल के पास में। और आपसे पहली बार बात हो रही?
0: जी जी।
1: और
0: वैसे अपना नाम क्या बताया है?
1: नाम बताया गोपाल ओझा। जी हमारा गाना नहीं आता है, हमने कई बार फोन लगा लिया, सोमवार को लगाया था, बुधवार को लगाया, गाना नहीं आता है हमारा।
0: नहीं नहीं, जब आप इसमें हेलो मैच वैस में जब कॉल रिकॉर्ड कराते हैं तो जरूर बजता होगा।
1: पता नहीं, हमने तो सुन लिया, आता नहीं है 5 बजे से 7 बजे तक क्या
0: थे। अच्छा तो क्या ना, बहुत सारे कॉल्स रहते हैं तो मतलब पहले उसे बजाया जाता है, कहीं आपका आज बजे?
1: पता नहीं है, अरे जी ऐसा कर दीजिए आप तो, मतलब उस दिन कॉल लगती है तो उस दिन शाम को 5 बजे आता है कॉल, वो वाली रहता पहला।
0: अच्छा तो भारती जी रिकॉर्डिंग कर रही थी उस टाइम?
1: भारती जी बुधवार को थी, भारती जी जब लगाया था मैंने।
0: अच्छा तो मतलब बज चुका होगा जब आप फरमाइश किए होंगे।
1: नहीं आया, हमारे दोस्तों को आया था, मेरा नहीं आया।
0: अच्छा
1: कल आना होती, कल तो सुना था, कल नहीं निकला।
0: अच्छा तो कहीं आज बजेगा, बहुत सारे कॉल्स रहते हैं तो दिक्कत होता है, एक साथ तो सब नहीं बज सकता।
1: तो इसीलिए लगाया गाने सुनने के लिए, नहीं गाने सुनने के लिए तो मैं सोमवार को लगा दूंगा, बुधवार को लगाया था, सोमवार को लगाया और आज शुक्रवार को लगा दिया।
0: तो मतलब दोनों दिन नहीं बजा आपका?
1: नहीं आया दोनों दिन। नहीं
0: उन्हीं से मिस्टेकिंग हुई होगी, मतलब फरमाइश बता दीजिए, हम प्ले कर देंगे।
1: फरमाइश वो राजा फिल्म को सुनवा दीजिए, फूल मांगू ना बाहर मांगू मैं तो सनम तेरा प्यार।
0: और गाना डेडिकेट भी है?
1: डेडिकेट है ना गाना, हमारे सुनील साहू जी है, ज्योति साहू जी है, जीतेंद्र धाकर जी है, और आपके लिए भी है डेडिकेट गाना।
0: ओके तो गाना प्ले करते हैं आपका।
1: कर दीजिए,
0: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो मैम
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
2: हम स्कूटर बोल रहे हैं सिकंदरपुर से।
3: जी, क्या हालचाल है आपका?
2: अच्छा है मैम, आपने सुनाइए कैसे हैं?
3: जी मेरा भी बढ़िया। अब क्या हो रहा है?
2: यही सब, दुकान अपन चलाते हैं।
3: किस चीज का दुकान है आपका?
2: छोटा मोटा किराना है।
3: चलिए बढ़िया।
2: मैम गाना सुना है हमको?
3: जी बता दीजिए।
2: मेरे साथी जीवन साथी, वही गाना सुना दीजिए।
3: किस मूवी का सॉन्ग है ये?
2: ये पुराना गाना है, मेरे साथी मेरे जीवन साथी मेरे साथ निभाना, ऐसा ही है।
3: ओके, और गाना डेडिकेट भी है?
2: जी मैम, सबसे पहले आपको और जितने रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं सभी।
3: वालेकुम अस्सलाम। रेडियो रिमझिम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार भारतीय।
1: नमस्कार,
0: कैसे हैं
1: जी? बढ़िया है, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। कौन बोल रहा हूँ समझ गए ना?
1: नहीं
0: जी, मैं सुरेश बोल रहा हूँ, झारखंड से। कहाँ से?
1: झारखंड से।
0: झारखंड
1: से, अच्छा। और वैसे अपना नाम
0: जी? आज सुना दीजिए मैम, राम तेरी गंगा मैली फिल्म का गाना।
1: कोई भी
0: नहीं? कोई भी नहीं, जिसके बोल मैं बता रहा हूँ, उसने पहाड़ों का और साहिबा लता मंगेशकर और सुरेश भाटकर की आवाज में।
1: और गाना किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: सबसे पहले मैम आपको, आपके रेडियो रिमझिम को, पूरे टीम को और जितने भी रेडियो रिमझिम के लिसनर हैं सबको और हमारे साथी सर को भी सुनाना चाहता हूँ। उसमें मदन कौल, पूरन कौल, किष्णु कौल, जुगल कौल, कमली कौल, राजकुमारी, रोहित कुमार सिंह, राजीव रोशन, विष्णु प्रसाद यादव, सुष्किधर प्रसाद यादव, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
1: ओके, वैसे क्या करते हैं आप?
0: जी मैं टीचिंग का काम करता हूँ। मैं
1: टीचिंग का
0: पढ़ाता हूँ, मैं टीचिंग का काम करता
1: हूँ। अभी जहाँ आप है वहीं पे?
0: जी जी, ठीक है मैम, सब गाना सुना दीजिएगा।
1: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं?
0: जी मैम।
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: ओके मैम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.

0: Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello.
1: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो।
2: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: हेलो
4: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
3: हाँ जी, भारती जी।
4: नहीं, मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
3: अच्छा मनोरमा जी, हम राकेश भारती बोल रहे हैं।
4: कहाँ से?
3: बक्सर।
4: अच्छा, और अपना नाम क्या बताएं?
3: राकेश भारती।
4: ओके, अब क्या हाल चाल है आपका?
3: सब बढ़िया है, हमारा तो 14 साल हो गया ना रेडियो रिमझिम में, 14 साल हो गया सुनते हुए।
4: अच्छा जी, बढ़िया।
3: सब स्टाफ पहचानते हैं, उनको नाम नहीं बताना पड़ता।
4: अरे मैं ना मतलब बहुत दिनों बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ तो उतना लोगों को नहीं पहचान रही हूँ मैं।
3: हाँ, सोनी जी भी पहचान गई है, नया आई है वो भी पहचान गई है, भाभी जी का सोनी जी का आना ही नहीं है।
4: सोनी जी आएंगी अभी छुट्टी पे हैं वो।
3: दिव्या जी भी थी तो भी पहचानते थे। और तो बताइए अपना।
4: सब बढ़िया।
3: चलिए आप भी देर देर सीख जाइएगा।
4: जी जी,
3: ऐसे की व्हाट्सएप मैसेज वाला में रखे है, आप भी एक आध दिन से कर रहे हैं थोड़ा बहुत।
4: कोशिश तो
3: हाँ, नहीं कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा, तो नहीं होगा। पर सोनी जी का तो वही हाल था, ठीक हो गई है।
4: तो सोनी जी बहुत दिन से रह रही है ना, तो उनको सुनियन से इन सब के बारे में
3: उनको सिखाई दिव्या जी। अब सोनी जी सिखा रही है भारती जी को और आपको ना। हाँ, जो आएगा भाई वही ना सिखाएगा।
4: हाँ, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे लोग।
3: तो आप लोग का तो नाश्ता पानी हो गया होगा?
4: जी जी, और आपका?
3: हमको भी हो गया अभी 10 मिनट पहले, अभी नाश्ता किया, फोन लगा रहे थे।
4: अच्छा,
3: फोन एक आध बार नहीं लगा लेकिन अभी लग गया।
4: वो क्या है ना, बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं तो।
3: हाँ हाँ, वही मैंने लिस्टनर कुछ ज्यादा हो गया है ना।
4: हाँ,
3: इसीलिए नहीं आई ना। आज भोजपुरी एक्सप्रेस कौन चलाएगा? भारती जी गया,
4: भारती चलाएगा।
3: तो हमको गाना सुना दीजिएगा, दिल का रिश्ता का। दिल का रिश्ता का गाना है ना, जो दैया दैया दैया रे, वही।
4: ओके, और ये गाना किसी को सुनाना भी है?
3: जी हाँ, मैं हरिंदर जी है, आप है, पूरा रेडियो रिमझिम खास फैमिली है। हाँ वही, तो अभी जो पुराना वाला फुल रिकॉर्डिंग चल रहा है। रिपीट?
4: हाँ, अभी तो वही चल रहा है।
3: आज 5 बजे बजेगा ना कॉल?
4: आज भी बजेगा और कॉल भी बजेगा। वो क्या ना, बहुत सारे कॉल्स हैं तो
3: एक दिन में तो पूरा होगा नहीं,
4: तो इसीलिए कल भी और बजेगा।
3: मैं कॉल का है
4: नहीं, अभी तो जो हो रहा है वो पूरा कोशिश रहेगा कि और आज ही चले।
3: ठीक,
4: तो गाना प्ले करते हैं।
3: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
4: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो रेंजी 90.4 FM कॉल करने के लिए।

0: नमस्कार
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी आज हमको गाना सुनना है, ये दुनिया महफिल मेरे काम के नहीं। मैं मन्नान बोल रहा हूँ कपूरा से।
1: अच्छा, क्या हाल चाल है आपका?
0: हाल चाल तो ठीक ठाक है, थोड़ा टेंशन है।
1: क्या हो गया है?
0: हो गया, इसीलिए मैं गाना सुनना चाहता हूँ, ये दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं।
1: अच्छा,
0: इसीलिए गाना सुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए गाना का रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके। 11:30 बजे तक तो आपका कॉल जो है नहीं लग रहा था, इतने कॉलर थे कि हमारा मोबाइल का नंबर घुस ही नहीं रहा था।
1: अब क्या करिए, था मतलब कॉल अभी बात ही होता है, जैसे करते वैसे आ जाता है।
0: तो अब सोचते हैं कि तो अभी थोड़ा ट्राई करें, तो अभी 2 बार ट्राई किए हैं, पटक लग गया।
1: चलिए लग गया ना,
0: 15 मिनट बाद लग गया है। तो मैडम यही गाना सुना दीजिएगा।
1: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: अरे जितने रेडियो सुनने वाले हैं रिमझिम के लिए खासकर, अब आरते जी को सुनवाएंगे, सोनी जी को भी सुनवाएंगे, सोनू जी को भी सुनवाएंगे, सोनू जी इतने लोग हैं सुनने वाले, किसी को सुनाइए मैडम। और सब खैरियत है ना आपका?
1: जी जी सब बढ़िया,
0: घर में परिवार और सब ठीक है ना? चलिए ऊपर वाला का लाख लाख शुक्र है, सब बढ़िया तो हो रहा है। तो ये सुनवा दीजिएगा मैडम, ये दुनिया है महफिल मेरे काम के नहीं गाना।
1: ओके, तो गाना प्ले करते हैं।
0: जी जी मैडम,
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
0: जी थैंक यू।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: नमस्ते मैम।
3: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: जी मैडम, कैसी है मैम?
3: जी बढ़िया है, आप अपना बताइए, आप कैसी हैं?
2: हम लोग भी ठीक है
3: जी। तब क्या हो रहा है?
2: कॉल लगा रहे हैं, केवल लगभग नहीं करेगा।
3: अच्छा जी, अब लग गया ना?
2: लग गया।
3: नाम बता दीजिए अपना।
2: सोहिला देवी।
3: कहाँ से बोल रही हैं?
2: सात नवादा से।
3: कहाँ से?
2: सात नवादा से।
3: अच्छा, तो बताइए क्या हो रहा है?
2: आपकी को तो नंबर दया रहा है, कभी से लग रहा है, लगभग नहीं करेगा, लग गया।
3: अच्छा, चलिए लग गया, बढ़िया। तो बता दीजिए फरमाइश।
2: फरमाइश सावन आया, बादल छाए, नहीं गाना है। हमको दबा दीजिए।
3: बिल्कुल।
2: खाना उन्हें खाए कि नहीं खाए?
3: जी जी खा लिए हैं। और आप?
2: हम लोग तो खा ही लिए हैं, बैठे हैं आपको फोन के इंतजार में।
3: अच्छा जी, चलिए आपका फोन लग गया ना, और क्या चाहिए?
2: जी मैडम लग गया।
3: तब मौसम कैसा है उधर का?
2: मौसम इधर का ठीक है, बड़ा गाजू पूजा हुआ है, कभी दिखता है कभी बदल जाता है, सावन का मौसम है इसलिए। चलिए ठीक है।
3: ठीक है, और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहती हैं?
2: ब्यादिन है दीभा, लड़की है संजना।
3: अच्छा
2: ठीक है,
3: चलिए बढ़िया। तो आपका गाना प्ले करें?
2: जी सर।
3: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: जी नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। नमस्ते। जी बढ़िया है, आप अपना बताइए, आप कैसी हैं?
0: मैं अच्छा भी लग रहा है।
1: चलिए अब लग गया ना।
0: आप कौन बोल रहे हैं? मैं दरबू।
1: जी मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
0: आपका समाचार बताइए कैसा है?
1: सब बढ़िया है, आप अपना बताइए, आप कैसी हैं?
0: अच्छा है मेरा भी।
1: अच्छा चलिए बढ़िया, अच्छे की बात है। वैसे आपका नाम?
0: जी
1: आपका नाम?
0: मेरा नाम नेहा भोरे से बोल रहे हैं।
1: कहाँ से बोल रही हैं?
0: भोरे से।
1: भोरे?
0: जी
1: अच्छा, तब क्या हो रहा है?
0: आपका फोन लगा रहा है, इंतजार करते करते 12 बजे
1: हो गया ना, बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं तो मुश्किल हो जाता है।
0: गोलगप्पे के जाना चलेगा?
1: बिल्कुल।
0: बजा दीजिए, चल देता हूँ। मेरी अच्छी कर रहा है।
1: ओके, और गाना किसी को सुनाना भी चाहती हैं?
0: गाना सबसे पहले आप जितना रेडियो रेडियो में आप सब सुनता है, जितना सोता दोस्त सुनता है सुनता।
1: ओके, वैसे खाना वाना हो गया?
0: जी मैडम जी, नाश्ता हो गया, खाना हुआ।
1: तो मौसम कैसा उधर का?
0: मौसम नहीं है, धूप है, कभी छाव है, छावा बढ़ता है।
1: बारिश वरिश तो नहीं हो रहा है ना?
0: नहीं, बारिश फुहारा कभी पगवाता है कभी जाता है, पूरा जम के बारिश नहीं होता।
1: अब सावन आ गया है, कहीं शायद होगा।
0: हाँ सावन होगा। तीन आने मैडम जी ज्वाइन करे, सोनी मैडम तो कभी आती है कभी नहीं आती है।
1: सोनी मैम अभी छुट्टी पे है ना,
0: इसीलिए आप दोनों में चला रहे हैं? ठीक है, चलाइए लोग, हम लोग गाना सुनना है। देखा था
1: आप लोग के दुआ प्यार से हम लोग भी करते हैं लोग।
0: नहीं, एक अंदर रहता है तो कल बंद हो जाता है ना, कितना कितना दिन बंद हो जाता है, तो नहीं चलता है।
1: नहीं अब तो बंद नहीं होता है क्योंकि अब
0: नहीं बंद हो, एक महीना पहले 15-20 दिन बंद हो गया।
1: अच्छा जी।
0: दूसरा शो खाली चलता है,
1: अच्छा
0: 12 बजे से शो चलता है, वही भी बंद हो गया, वो नहीं चलता है।
1: कौन सा?
0: जो 12 बजे से चलता है
1: वो भी चल रहा है अभी।
0: अभी तो चलता है, तो गाना हम लोग सुनते हैं 5 बजे भोर से लेकर 10 बजे रात तक मेरा चलता है, हम सुनते रहते हैं।
1: अच्छा, रेडियो रिन्यू कैसे सुनती हैं आप?
0: रेडियो से।
1: अच्छा रेडियो से सुनती हैं?
0: जी।
1: अच्छा चलिए बढ़िया,
0: सारा प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो।
1: कैसा लगता है आपको?
0: अच्छा लगता है,
1: चलिए बढ़िया।
0: बहुत ही ढेर दिन से सुनते हैं।
1: फिर भी मतलब कितना दिन से?
0: पहले सुनती मैडम रही तब से सुनती।
1: अच्छा जी।
0: तो रिकॉर्डिंग नहीं उतना करते हैं, दिव्या मैडम आए तब से रिकॉर्डिंग करूंगा।
1: अच्छा चलिए, आप शो से जुड़ती हैं ना आप?
0: जी अब शो से बराबर जुड़ती
1: हूँ। चलिए बढ़िया, ठीक है तो गाना प्ले करते हैं।
0: जी मैडम जी नमस्ते।
1: नमस्ते। रेडियो रिमझिम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009494911। जी हाँ, 8009494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: जी नमस्कार।
3: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजर 90.4 FM।
2: जी सर, मास्टर ग्राम धनाव से।
3: जी
2: सर, मास्टर ग्राम धनाव से।
3: ओके,
2: मनोरमा जी बोल रहे हैं।
3: जी जी,
2: और सब बताइए।
3: और सब बढ़िया, क्या हो रहा है?
2: अरे क्या होगा, हम लोग का सिलाई है ना, टेलर का काम है, रोशन टेलर में। आप रोज सुन नहीं करती है, मैसेज आता है।
3: जी जी,
2: और खेती बाड़ी का काम हो रहा है इधर भी। बारिश हो रहा है कि नहीं आपके तरफ?
3: बारिश तो नहीं हो रहा है,
2: धूप निकला हुआ है।
3: नहीं, सुहाना मौसम है।
2: और चलिए गाना सुना दीजिएगा। तो मूवी का नाम है आई मिलन की रात। गाने मूवी का नाम है आई मिलन की रात। गाने का बोल, सावन का महीना।
3: एक बार और गाने के बोल।
2: सावन का महीना आया है घटा से, बरसा है पानी, ओए माहिया बुझा दे आगे जिया से हो। समझ में आ गया ना?
3: जी जी, आप तो बहुत अच्छा गा लेते हैं
2: जी। और सुनने वाले सभी हमारे पोता है आजम अंसारी, अयान अंसारी, मुल्तान अंसारी और अलीशान अंसारी, सब हमारे घर ही के लोग हैं। और हम लोग जितने रेडियो और जितने रेडियो सुनने वाले हैं सभी श्रोताओं के लिए सुनवाना चाहता हूँ। कब बजेगा मैडम?
3: नहीं, आज ही बजेगा।
2: आज तो नौ बजे, हम तो रोज सुनते हैं ना कार्यक्रम।
3: जी तो आज ही, मतलब कोशिश रहेगा कि आज ही बजे।
2: जी, और सोनी जी आएंगे कि नहीं?
3: आएंगी, अभी तो छुट्टी पे है। तो
2: अभी छुट्टी पे है, भारती जी से कल एयर बस में जुड़े थे।
3: जब तक सोनी जी नहीं आ जाएंगे तब तक भारती जी शो करेंगे।
2: जी जी जी,
3: तो गाना प्ले करते हैं।
2: जी
3: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजिन 90.4 FM।
2: जी।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: सलाम अलैकुम मैम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: रेशमा बोल रहे हैं पठानपुर।
0: क्या हाल है रेशमा जी?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: जी मेरा भी बढ़िया है।
1: नाश्ता तो हो गया मैम?
0: हो गया। और आपका?
1: हमारा भी हो गया। कॉल लगा रहे थे तो लग रहे थे अब नहीं लगेगा।
0: नहीं,
1: लास्ट कॉल लग गया।
0: जी जी, लग गया ना?
1: हाँ लग गया। हम तो सोचे कि अब बात नहीं होगा।
0: नहीं, बात तो हो गया ना। देखिए,
1: हाँ बात हो गया। आप नहीं मैम?
0: सब बढ़िया है।
1: सबको मैम?
0: हाँ सब कोई ठीक है।
1: मैम नहीं आई है? सुनी मैम
0: नहीं, अभी तो नहीं आई है, छुट्टी पे है।
1: ठीक है, आज गाना सुनवा दीजिए।
0: बता दीजिए।
1: बहुत दर्द दर्द प्यारे ने हो दिलवा टोले पे जननी।
0: ओके, और किसी को सुनवाना भी है ये सॉन्ग?
1: हाँ सुन लीजिएगा, और मैम सुनेगी, भारती मैम, सोनी मैम, और जितना लोग सुनते हैं रेडियो सब कोई सुनेगा।
0: ओके, गाना प्ले करें?
1: जी मैम कर दीजिए।
0: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: जी मैम नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है क्या रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: प्रणाम।
3: प्रणाम,
2: क्या हाल है?
3: जी बढ़िया बा, नाम बता दिया अपन और कहाँ से?
2: गणेश कुमार मिश्रा, दिल्ली।
3: ओके,
2: आप कौन हो?
3: जी मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
2: अरे मनोरमा जी, आज पहली बार आपसे बात हो रही है।
3: इसीलिए ना, नहीं
2: आज आपसे पहली बार बात हो रही है। और बात जी कहाँ है? और सब सुनाइए।
3: और सब बढ़िया, आप अपना बताइए।
2: सर फोन लगाते लंच हो गया, नहीं बोला कि आज भी हाजिर लगाइए दे। करना भी नहीं था, आज किए तो आज मिल गए आप, नहीं करते तो आप मिलते नहीं। पूरे रिकॉर्डिंग आती का है
3: जी? जी।
2: अरे जी, तो मुझे एक गाना सुना दीजिए। खेसारी लाल का है, सही और मूवी का है। तुहरा बिना खाना पीना सब बेकार बा, जान तीनों तुहार बा। हाँ यही सुना दीजिएगा।
3: और गाना किसी को सुनाना भी है?
2: भारती जी को, मनोरमा मैम को, सोनी जी को और जितने हमारे नाम से जानने वाले हैं सबको।
3: तो बताइए मौसम कैसा है उधर का?
2: बस मौसम में जो तो 2 दिन पहले बारिश हुआ है बहुत में है, जैसे वहाँ है वैसे ही यहाँ है, वहाँ भी तो बारिश नहीं हो रही है।
3: नहीं नहीं, लेकिन ऐसा मतलब लग रहा है जैसे कि बारिश होगा।
2: हाँ वैसे यहाँ भी कभी बादल हो जा रहा है, कभी धूप निकल जा रहा है। अब हम भी तो वहीं के है ना, राजापति स्टेशन के पास, तो हमें भी पता है कि कैसे मौसम हो रहा है उधर। भारती जी को, सोनी जी को पता है, आपसे पहली बार हो रही है बात।
3: रेडियो रिजिंग आप कितने समय से सुन रहे हैं?
2: जी हम तो 4-5 साल से सुन रहे हैं, लेकिन जुड़ते नहीं थे। जुड़ रहे हैं, ये सोनी जी आई है, जब से जुड़ रहा हूँ 1.5 साल हो गया, 2 साल करीब हो गया। मैं जुड़ा नहीं हूँ लगातार, पहले मैं लिसनर हूँ ऐसा कि 4 घंटे शो चलता है तो 4 घंटे इधर उधर कुछ नहीं, पूरे रेगुलर रहा हूँ। चलिए आपका गाँव कहाँ पड़ेगा? वही प्रॉपर गोपालगंज से। चलिए ठीक है,
3: ठीक है। तो
2: हो ही जाएगा, बात विचार बढ़ेगा तो सोनी जी से, भारती जी से तो सब बात होती है, सब जानकारी है हमारे बारे में।
3: वो क्या है रिकॉर्डिंग?
2: हाँ एक दिन आप किए हैं, उस दिन हम इंतजार किए, सुने तो हम सोचे कि मनोरमा जी कब चढ़ी है, हमारे से मिली नहीं है, मैं बराबर फोन करता हूँ, लेकिन आज मिले गए। चलिए बात करके बहुत अच्छा लगा
3: जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो मैम, नमस्ते।
1: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: धन्यवाद मैम। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैहर।
1: क्या हाल चाल है सुनील जी?
0: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए मैम।
1: अच्छा
0: जी जी जी मैम
1: जी।
0: अब मैम वहाँ का मौसम की क्या हाल चाल है मैम?
1: मौसम सुहाना हुआ है, कभी धूप हो रहा है।
0: जी जी,
1: हवा चल रहा है।
0: जी जी जी मैम, बारिश नहीं है मैम?
1: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है।
0: हमारे यहाँ तो बारिश चालू मैम, हल्का फुल्का बारिश चालू, बहुत अच्छा है यहाँ का मौसम है मैम।
1: अभी भी बारिश हो रही है?
0: जी जी, अभी बारिश चालू। जी जी जी मैम, आज एक फरमाइश है गाने की, बोले पार्की में होके आवाज और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों। ठीक है मैम, गाना भजवाइए। धन्यवाद मैम, थैंक यू।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: नमस्कार मैडम।
3: नमस्कार।
2: हम गाना सुनना चाहते हैं मैडम।
3: जी गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए आप अपना।
2: धर्मा से बोल रहा हूँ, मेरा नाम श्यामदेव माझी हुआ।
3: अच्छा,
2: गाना सुना है? गाना है भोजपुरी में है मैडम।
3: बताइए।
2: मारो

0: भर थरिया धान ए सखी मांग ले भर थरिया धान ए सखी।
1: ओके, और गाना किसी को सुनवाना भी
0: है? साथी लोग सुन रहे हैं, सबको सुनवाना है मैडम।
1: वैसे क्या हो रहा है अभी?
0: हाँ, पेशे से मैं शिक्षक हूँ, छुट्टी पर हूँ आज, और मैं आपका रिमझिम रोज सुनता हूँ, बराबर सुनता हूँ मोबाइल से।
1: अच्छा,
0: है कि थोड़ा आज सोचे थे कि आज गाना कॉल करेंगे या सुनेंगे गाना।
1: आप रेडियो रिमझिम कितने समय से सुनते हैं?
0: जब से शुरू है तब से सुनते हैं मैडम।
1: अच्छा जी, तो मतलब पूछ रहे थे कि रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम आपको कैसा लगता है?
0: बहुत अच्छा लगता है मैडम, बहुत मशहूर सुनता है, सुनते हैं। आपके रेडियो रिमझिम के मालिक हैं शंकर बाबू, उनका जो है भाषण ऐसी ऐसी देते हैं, सब बताते हैं, बहुत मुझे अच्छा लगता है जी।
1: अच्छा, रेडियो रिमझिम को कैसे सुनते हैं आप?
0: जब से मैंने हुआ है, चालू हुआ, तब से मैं सुनता हूँ। मेरा घर बिचर में हुआ, इसी पंचायत में मेरा रेडियो रिमझिम है।
1: अच्छा,
0: हमारी पंचायत में है।
1: अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रेडियो रिमझिम मतलब कैसे सुनते हैं? मोबाइल
0: से मैडम, मोबाइल से।
1: अच्छा, ऐप के माध्यम से?
0: जी जी, ऐप के माध्यम से।
1: अच्छा, चलिए बढ़िया,
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: अच्छा, अब आप लोग का दुआ प्यार से लगा है?
0: बिल्कुल एकदम, बिल्कुल। देखिए, भगवान से दुआ करते हैं और पूरे रेडियो को रिमझिम परिवार को मैं दुआ करते हैं कि सभी लोग खुश रहें और रेडियो रिमझिम चलाते रहें, सबको मनोरंजन कराते रहें।
1: अब आप लोग का आशीर्वाद चाहिए।
0: भगवान की कृपा है सर। जी जी
1: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं?
0: जी मैडम, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम।

0: हेलो
1: नमस्ते
0: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 एफएम में।
1: हम खादर राजन मार्केट से बोलते हैं, रामा जी प्रसाद।
0: पहले कॉल आ गई
1: बाने बोल बम के हाथी न घोड़ा पैदल सवारी हम बाबा तुहरे दुआरी।
0: और गाना के लिए सुनवावे के भी बात
1: जितना लोग सुन दो सब कुछ सुने और कौन ना होता जनवा साहब सुनाई लो
0: एक बार फिर से बता दी।
1: हाथी ना घोड़ा पैदल सवारी बाबा हम चलिए तुहरे दुआरी जितना रेडियो रिंगजिम सुन दो सब कोई हम रहुआ जितना लोग बाबा धाम जा फिर से उस नत होई।
0: ठीक बताओ
1: हाथी जी बोल
0: गाना प्ले करी।
1: नमस्ते
0: नमस्ते सुनत रही सबके साथ रेडियो रिंगजिम 90.4 एफएम।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान,
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone din din bajte hai to kehte hai hello,
5: Break ke baad aap sabhi ka fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नमस्कार मैडम जी, कौन बोल रहे? भारती जी बोल रहे हैं, सोनी जी बोल रही हैं?
5: मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
6: अच्छा, आज मेरी पहली बार बात हो रही है मैडम जी आज।
5: जी,
6: खाना हो गया आपका?
5: और आपका?
6: मेरा भी हो गया।
5: चलिए बढ़िया, नाम बता दीजिए अपना।
6: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू, मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
5: ओके, तब क्या हाल चाल है आपका?
6: बस रेडियो सुन रहे हैं आपका, और क्या है।
5: चलिए बढ़िया, तो बता दीजिए फरमाइश।
6: फरमाइश है, पिक्चर का नाम है बड़े घर की बेटी और गाने के बोल है समझी तेरी घोड़ी चने के तेत में।
5: एक बार फिर से बता दीजिए।
6: पिक्चर का नाम है बड़े घर की बेटी और गाने के बोल है समझी तेरी घोड़ी चने के तेत में।
5: ठीक है, और ये गाना किसी को सुनवाना भी है?
6: जी, ये सोनी जी मैम को है, भारती मैम को है, और आपको है, और अपने गोपाल ओझा जी है, गजराज सिंह लोधी है, और जीतन धाकड़ जी है।
5: तो
6: और जितने सभी रेडियो और रिमझिम सुन रहे हैं उनको सबके लिए गाना डेडिकेट रहेगा।
5: ओके
6: जी
5: जी, तो आपका गाना प्ले करें।
6: कब बजेगा ये?
5: ये गाना आपका कल बजेगा।
6: ठीक है
5: जी, तो गाना प्ले करते हैं।
6: ठीक है मैडम, धन्यवाद।
5: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
0: मधुसरिया से बोल रहे हैं, राजकुमार।
1: अच्छा,
0: संग सुनना है?
1: जी बता दीजिए।
0: बोलबम के खेसारी लाल के आवाज में कोई भी अच्छा संग बजा दीजिएगा।
1: अच्छा, और सुनवाना भी है किसी को?
0: रिमझिम सुनने वाले सभी श्रोताओं को।
1: तब क्या हो रहा है, खाना वाना हो गया?
0: हाँ, आज काम पर नहीं गए हैं, छुट्टी में है।
1: वैसे क्या करते हैं आप?
0: गाड़ी उड़ी चलाते हैं खेत पर।
1: अच्छा, और रेडियो रिमझिम कैसे सुनते हैं?
0: यही मोबाइल में।
1: इंटरनेट के माध्यम से?
0: नहीं नहीं, रेडियो हेडफोन के माध्यम।
1: अच्छा अच्छा, ये बढ़िया। और ये रेडियो रिमझिम कितने समय से सुन रहे हैं आप?
0: हम तो बहुत दिन से सुन रहे हैं, कभी कभी सुनते हैं, कभी कभी नहीं सुनते हैं।
1: अच्छा, तो कैसा लगता है आपको रेडियो रिमझिम?
0: अच्छा लगता है, सभी कार्यक्रम अच्छा लगता है।
1: ये बढ़िया,
0: ठीक है
1: जी। रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कैलाश से धुआं धुआं है।
3: अरे का हो, काहे मन मार के बैठल बड़ू, कोनो प्रॉब्लम बा?
4: ए जी, एगो बात कही।
3: कहा?
4: बड़ा मन करता देवघर जाए के जी।
3: तब
4: देखी न बाबा, कई दिन से सपना में आओ तनी, अपना नगरी में बुलावा तनी।
3: सपना तो हमहू देखते, लेकिन क्या करी, पैसे नहीं खेरे।
5: ए साल रहे दा, पर साल चले जाए, ठीक बा? गाड़ियों खाली नहीं खिसा
4: तो हम अब की बार ना मानो, हम तो जेबे करब।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: Your phone.
3: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो 8009294911 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

कहा वाय भैया कि तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जाने कुतो मनुष्यः। इतना कुछ तिरिया छछंद सुने के बाद आजकल के कुछ पति काव कहा थे सुने।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिंजन 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

मशवरा ये सुनो इसलिए साहिबो मशवरा ये सुनो भाग

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: शहर का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।